आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं नवीन तिवारी जी से। पिता के अचानक निधन के बाद जब परिवार के 14 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके सर पर आ पड़ी, तो उसने परिवार चलाने के लिए एक किराने की और पीसीओ की दुकान खोली। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कभी कि एक दिन ये युवा 15 करोड़ की कंपनी का मालिक बन जाएगा और दूसरों को तरह तरह की कंपनियों में रोजगार दिलवाएगा। ये उद्यमी हैं नवीन तिवारी, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर महज साधारण सी शुरुआत करके साझेदारी में स्क्रैम्बल नाम की कंपनी खोल दी। वैचारिक दृढ़ता और शानदार सोच का अटूट समर्पण की शक्ति के साथ खड़ा स्क्रैम्बल आज लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है। एक छोटे से किराना स्टोर से एक संपन्न उद्यमी तक नवीन की यात्रा महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने कई तरह के अनुभव हासिल किए, जिनमें एक सख्त बॉस से निपटने से लेकर कई नौकरियों में पदोन्नति पाने के उतार चढ़ाव वाले दौर शामिल हैं। बाद में नवीन ने अपने करियर के रुख में थोड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने माइकल पेज और नेटिव नामक एक HR कंपनी में काम किया। इस दौरान उनके व्यक्तिगत जीवन में भी काफी उथल पुथल रही। पहली पत्नी से तलाक हो जाने के बाद उन्होंने नेटिव की सहकर्मी से दूसरा विवाह किया। वर्ष 2021 में जब उन्होंने स्क्रैम्बल की शुरुआत की, तो निवेशकों की रुचि कम होने के कारण उनकी पत्नी के घर वालों ने शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराई और पहले ही वर्ष में कंपनी ने 4.25 करोड़ का कारोबार कर डाला, जो दूसरे साल में दोगुना हो गया और तीसरे साल तक पहुंचते पहुंचते तो वो 15 करोड़ का पहुंच चुका था। फिलहाल उनकी टीम में 56 कर्मचारी हैं। कंपनी ने अब तक 1000 से ज्यादा ग्राहक कंपनियों के साथ काम किया है। स्क्रैम्बल ने मात्र 3 साल में ही 15 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। ये व्यावसायिक विकास उनके व्यवसाय मॉडल की प्रभावशीलता और उनकी टीम के समर्पण को रेखांकित करता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहक कंपनियों के साथ मजबूत संबंध बनाकर स्क्रैम्बल ने खुद को रोजगार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, मिलवाते हैं पश्ताना दुर्रानी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीते हुए कुछ दिनों पहले कातार की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के भविष्य पर एक सम्मेलन हुआ था। इस जलसे को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने काबुल के निजाम से जब ये कहा कि अपने देश में लड़कियों की तालीम और महिलाओं की नौकरी करने पर उसने जो अपमानजनक पाबंदी लगा रखी है उसे वो फौरन वापस ले और स्कूल की कक्षाओं से लेकर उन तमाम ओहदों पर औरतों की भागीदारी सुनिश्चित करें जहां से निर्णायक फैसले होते हैं, तो पश्ताना दुर्रानी की मुहिम की याद हो आई। अपनी जान पर खेलकर वो अफगान लड़कियों तक ज्ञान की रोशनी बिखेर रही हैं। अफगानिस्तान के कांधार इलाके के जलमई दुर्रानी एक तरक्की पसंद कबायली नेता थे जो लड़कियों की तालीम की बढ़ चढ़कर हिमायत करते थे। जाहिर है कट्टर पंथियों को उनकी ये बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें कई बार खामोश रहने को कहा गया, लेकिन जलमई दुर्रानी लगातार मुखर रहे, बोलते रहे। ऐसे में जब मुल्क गृह युद्ध में चल रहा हो और लंबा खींचा ही जा रहा हो और कांधार इलाके पर तालिबान का पूरा नियंत्रण हो गया हो, तो दुर्रानी परिवार के सदस्यों के पास देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वो भागकर पाकिस्तान जा पहुंचे, जहां क्वेटा में उन सबको शरण मिली। करीब 27 साल पहले क्वेटा के ही एक शरणार्थी शिविर में पश्ताना का जन्म हुआ। उनके पिता अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह की जगहों में इन खानाबदोश जिंदगियों को अब इज्जत का मुकाम सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मिल सकता है। लिहाजा उन्होंने अपनी नई नस्लों की शिक्षा को लेकर वो पहले से कहीं ज्यादा संजीदा हो उठे। उन्होंने अपने अस्थाई घर को स्कूल में बदल दिया और अपनी पत्नी और परिवार की दूसरी पढ़ी लिखी औरतों को उन शिविरों की बच्चियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब इसी तरह के माहौल में पश्ताना पली बढ़ी। होश संभाला तो उन्होंने देखा कि उनकी मां और चाची किस तरह हमसाया घरों के लोगों को कायल किया करती कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेज दें। पश्ताना ने पाकिस्तान में ही हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी दिली तमन्ना थी कि आगे की तालीम वो अपने मुल्क की ही किसी यूनिवर्सिटी से करें। तब तक अफगानिस्तान में निजाम भी बदल चुके थे और चारों तरफ इस बदलाव की चर्चा भी थी। कई औरतें न सिर्फ सरकारी मुलाजमत और सियासत में लौट आई थीं, बल्कि अपना कारोबार भी चलाने लगी थीं। साल 2013 की बात है, दुर्रानी परिवार ने वतन वापसी का फैसला लिया। पश्ताना तब सिर्फ 16 साल की थी। अपने पुरखों की माटी को चूमने की खुशी ही अनूठी होती है। पूरा दुर्रानी खानदान बहुत खुश था, लेकिन कंधार लौटने की पहली ही रात जिस सच से पश्ताना का सामना हुआ उसने उनकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। खानदान की लड़कियां जब मिली तो उन पर यह हकीकत खुली कि उनके पूरे जिले में जहां 400 से भी ज्यादा परिवार रहते हैं एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास भी हुआ कि लड़कियों की पढ़ाई तो सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। एक दिन खानदान की ही एक छोटी बहन आई और हसरत भरी निगाहों से पश्ताना को देखते हुए कहने लगी, बाजी मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूं। पश्ताना शिक्षित थी, उनके पास अपना लैपटॉप था। वो कॉन्फ्रेंस के लिए काबुल जाया करती और सबसे बढ़कर उन्हें पिता का पूरा साथ हासिल था। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जब पश्ताना काबुल जा रही थी तब उसी बहन ने हुकूमत के नाम एक खत दिया जिसमें ये करुण गुजारिश थी कि उनके जिले में एक लड़कियों का स्कूल खोला जाए ताकि वो भी पढ़ सके। सरकार की तरफ से ना कोई जवाब आना था ना आया, लेकिन पश्ताना उस हसरत के आगे पसीज उठी। आखिरकार
उन्होंने उस बच्ची के पाठ्यक्रम की सामग्री और सहायक वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड किए और उसे पढ़ाना शुरू किया। बच्ची इस लगन से पढ़ती रही कि जल्द ही वो मोड़ आया जब उसे कंधार शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। इस घटना ने पश्ताना को प्रेरित किया कि उन सभी तमाम लड़कियों को वो डिजिटली पढ़ा सकती हैं जिनकी पहुंच में कोई स्कूल नहीं। इसी नेक इरादे से उन्होंने साल 2018 में लर्न अफगानिस्तान के नाम से एक निशुल्क ऑनलाइन स्कूल खोल दिया, अफगानिस्तान का पहला डिजिटल स्कूल नेटवर्क। इसके जरिए वो अब तक कंधार के 7,000 से ज्यादा लड़के लड़कियों को शिक्षित कर चुकी हैं और 80 शिक्षकों को भी डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। मगर पश्ताना का ये काम कभी निरापद नहीं रहा, क्योंकि कंधार से तालिबान कभी खत्म ही नहीं हुए थे। और फिर जब वो 21 साल की थी, उनके पिता का इंतकाल हो गया, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गई। साल 2021 में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया और तब स्थानीय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बताया कि उनका कत्ल किया जा सकता है। पश्ताना ने अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला ले लिया और वो चली गई। इन दिनों वो वहीं से अपने मिशन में जुटी हैं। साल 2021 में बीबीसी की तरह प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स ने भी उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों में गिना है। औरतों को अपने हक हुकूक के लिए हमेशा ही भारी संघर्ष करना पड़ता है। आज से 125 साल पहले भारत में सावित्री भाई फूले के साथ भी तो क्या क्या हुआ, यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। मगर उन्होंने उस वक्त हमारे देश में स्त्री शिक्षा की जो ज्योत जलाई, उसे आज तक पूरा हिंदुस्तान रोशन है। उम्मीद है अफगानिस्तान की आने वाली नस्लें भी पश्ताना दुर्रानी को उसी अदब से याद करेंगी। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था और नाम भी उसका था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की 3 बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा, ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई। वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की 3 बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में खच्चर वाला आ गया दौड़ता हुआ और खच्चर को मरा पड़ा देखकर हाय तौबा मचाने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत ले आया। दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, बड़ा गरीब हूं, किसी तरह इस खच्चर पर माल लादकर और उसके किराए के पैसों से पेट पालता था। अब खच्चर तो मर गया, अब इसका दाम कौन देगा। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्या करें अब इसका। मंत्री ने कहा, महाराज आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना, देखिए यही है भेड़िया धसान। जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब। राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दोस्तों, किसी भी काम को करने का कोई एक तरीका नहीं होता। कई तरीके हो सकते हैं, घर सजाने का, खाना बनाने का, या कोई सामान बेचने का। कोई एक सबसे बढ़िया तरीका नहीं है, बहुत तरीके हो सकते हैं। आप जितने ज्यादा रचनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे, उतने तरीके आपके पास होंगे। हम अपने दिमाग को बंद रखेंगे तो नए विचार कहां से आएंगे उसमें। तो बड़े बूढ़े कहते भी है ना, अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखो। रचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है पारंपरिक सोच। यानी कि अगर हम क्रिएटिव सोचना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, कुछ अलग हटके सोचना चाहते हैं, तो हमारी पुरानी सोच उसको रोकती है, हमें सोचने नहीं देती। इसलिए कई बार पुरानी सोच को हमें छोड़ना होगा। नए विचारों का स्वागत कीजिए, उनसे नफरत ना कीजिए, प्रयोगशील बनिए। यानी कि कुछ नया करके देखिए तो सही, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही तो होंगे। और फेल हमेशा पास होने की पहली सीढ़ी होती है। याद कीजिए ना, बच्चा जब चलना शुरू करता है तो पहली बार वो गिरता है, फेल होता है, तब वो खड़ा होता है। हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप कितनी ही सुंदर कृति बना लें, उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तीन नियम जिंदगी को खूबसूरती से जीने के। नियम नंबर एक, आपका अपना दुख, दर्द या तकलीफ उतनी ही सच्ची है जितनी दूसरों की। हो सकता है कि कोई एक चीज किसी दूसरे के लिए आसान हो, लेकिन इससे आपका दर्द कम नहीं हो जाता। अपने दर्द के बारे में बात करना, उसको ठीक करना आपका हक है। आपका दर्द मायने रखता है, आपका अनुभव मायने रखता है, आपका उबर कर आगे बढ़ना भी जायज है। नियम नंबर दो, कोई एक दिन ऐसा होता है जब दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, होता है ना ऐसा। मुश्किल समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है छोड़ना। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। शांति की सांस लेते हुए हम अपने भीतर के गुबार को छोड़ने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। हम छोड़ दें उस विचार को जो भीतर अवसाद भरे जा रहा है। जाने देना यानी जो हुआ उसे मानते हुए आगे बढ़ जाना, भले ही उसके लिए मुश्किल फैसले लेने पड़े, लेकिन उसे छोड़ना ही होगा। नियम नंबर तीन, जिंदगी के संघर्ष समझ नहीं आते, लेकिन उसके मायने होते तो हैं। जब कभी हम अपने बीते कठिन दिनों को देखते हैं, उस वक्त ये समझ में आता है कि उनके कारण ही हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। तब हम अपने संघर्षों को सलाम करते हैं। चुनौतियां केवल तोड़ती नहीं है, हमें मजबूत भी बनाती हैं। निरंतर किए गए प्रयास और संघर्ष से ही ताकत और तरक्की मिलती तो है। फिर मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, इस स्नेह की एक लघु कथा सुनाता हूं। एक छोटी सी कहानी जो सुकेश साहनी साहब ने लिखी है, धुएं की दीवार। बंटवारे से पहले इन दोनों भाइयों अमीचंद और दुलीचंद में बहुत प्यार था, उनके परिवार में भी। आज बंटवारे के बाद जब उनके मकान के बीच में एक दीवार खींच दी गई, तब अमीचंद शीशे के सामने खड़ा होकर पगड़ी बांध रहा था। बंटवारे के बाद वो पहली बार बाजार जा रहा था, लेकिन उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। पहले हर महीने वो बेले वाला के हाट में बाजार में जाकर सबके लिए जरूरी सामान लाया करता था। दुलीचंद और उसके बच्चों के लिए भी लाता था। उसने खिड़की के बाहर एक उदास सी निगाह डाली। अपने मकान की दो हिस्सों में बांटती हुई दीवार उसके दिल को चीरती चली गई। बंटवारे वाले दिन से उसके और छोटे भाई दुलीचंद के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद थी। बाहर दुलीचंद श्यामा गाय को दोहने की तैयारी कर रहा था। बंटवारे में गाय उसके हिस्से में आई थी। अभी अमीचंद की नजर अपनी बेटी पर पड़ गई। वो हाथ में बड़ा सा गिलास लिए चुपके से अपने चाचा की ओर बढ़ रही थी। वो चिल्लाकर बेटी को रोकना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दुलीचंद ने मुस्कुराकर अपनी भतीजी की तरफ देखा। जवाब में वो भी धीरे से हंस दी। दुलीचंद ने उसके हाथ से गिलास ले लिया और झटपट उसमें दूध डाल दिया। अमीचंद एक टक इस दृश्य को देख रहा था। ठीक उसी समय दुलीचंद की पत्नी भी घर से निकली। अब अमीचंद को पूरा विश्वास हो गया कि बहू उसकी बेटी के हाथ से दूध भरा गिलास छीनकर फेंक देगी और ना जाने क्या क्या बकेगी। बंटवारे के समय भी उसने बहुत झगड़ा किया था। अमीचंद लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि बहू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, और कहीं पति दुलीचंद उसे देख ना ले, वो डर से तुरंत भीतर भाग गई। अमीचंद की बेटी ने एक सांस में ही दूध का गिलास खाली कर दिया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ी। अमीचंद की आंखें भर आईं। उसको लगा घर के बीच की दीवार गायब हो गई। अमीचंद घर से बाहर आया और अड़ोस पड़ोस को सुनाता हुआ ऊंची आवाज में बोला, ओए दुल्ली, मैं बेले गांव जा रहा हूं बाजार, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम सबके लिए सामान ले आऊंगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

लीजिए दोस्तों, एक और बढ़िया सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त यह थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती लेकिन ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो ये गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए थी। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया था, मिठाई और अलग अलग तरह के पकवान भी बनाए थे। पहले सभी दावत का आनंद लेते थे, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता था। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिसमें राजकुमारी संतुष्ट हो जाए। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए इस चक्कर में। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती ही होती है, ये राजकुमारी तो पागल हो गई है, ये केवल हमको सबको पिटवाने का मजा लूटना चाहती है और कुछ नहीं। ये नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लग गया। उसने कहा, अरे डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती तक नहीं आती। अब ये सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। और राजा ने उससे पूछा, अच्छा जी, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुना दो। हलवाई बोला, राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं तो आप लोगों के बराबर नहीं हूं, और स्वयंवर में तो सिर्फ राजाओं को ही बुलाया गया है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा? पास खड़ी हुई राजकुमारी बोल पड़ी, अच्छा जी, चलो ठीक है, अगर तुमने गिनती सुना दी तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और अगर नहीं सुना पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, कोड़े नहीं। सब ये देखते ही रह गए कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कह दिया गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। दोस्तों गौर कीजिएगा, अब यहां एक भगवान, दो पक्ष, तीन लोक, चार युग, पांच पांडव, छह शास्त्र, सात वार, आठ खंड, नौ ग्रह, दस दिशाएं, ग्यारह रुद्र, बारह महीने, तेरह रत्न, चौदह विद्याएं, पंद्रह तिथि, सोलह श्राद्ध, सत्रह वनस्पति, अठारह पुराण, उन्नीसवीं तुम और बीसवा मैं। सब लोग हक्के पक्के रह गए। राजकुमारी ने हलवाई से शादी की। दोस्तों इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। यहां शिक्षा से बड़ा तजर्बा निकला। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेके आई हूँ मैं बातें इधर की उधर की, और एक और नया सवाल आप सबके लिए। एक बात बताइए, आपके फोन की गैलरी में लगभग कितनी फोटोज होंगी? 500, 5000, या स्टोरेज फुल वाला जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है? हम रोज कितनी तस्वीरें खींचते हैं, कॉफी की, सनसेट की, पेड़ की, सेल्फीज, पेट्स की, और फिर उनमें से आधी फोटोज कभी दोबारा नहीं देखते। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ एक फोटो, सिर्फ एक क्लिक पूरी दुनिया का इतिहास बदल दे, तो आज की कहानी ऐसी ही एक तस्वीर की है, और उस फोटोग्राफर की है जिसका नाम दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन उसकी खींची हुई फोटो वो लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी जरूर देखी होगी। उस फोटोग्राफर का नाम है अल्बर्टो कोडा। जी हाँ, अल्बर्टो कोडा। चलिए कैलेंडर को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 5 मार्च 1960, जगह हवाना, क्यूबा। एक मेमोरियल सेरेमनी चल रही थी, लोग एक शिप ब्लास्ट में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। कोडा वहां न्यूज़पेपर के लिए कवरेज के लिए गए थे। उनके हाथ में कैमरा था और आंखें भीड़ पर थी। तभी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए एक आदमी भीड़ के बीच से सामने आता है। ना कोई स्पीच, ना पोज, ना स्माइल, बस एक चेहरा, तेज आंखें, दूर कहीं देखती हुई बाघ जैसी। कोडा ने बिना सोचे 2 फोटोग्राफ्स खींच ली, क्लिक क्लिक, और वो आदमी उतनी ही तेजी से भीड़ में गायब हो गया। उस आदमी का नाम था शेगुआरा। जी हाँ, शेगुआरा। अब जरा सोचिए, फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली, एडिटर ने उसे न्यूज़पेपर में खास जगह नहीं दी, ना कोई अवार्ड मिला, ना किसी ने कहा वाह क्या मास्टरपीस है। कभी कभी हिस्ट्री भी पहले तो इग्नोर ही करती है दोस्त।

तो बाद में जाके कहीं सल्यूट मिलता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों तक वो फोटो लगभग किसी को याद नहीं थी, शायद अल्बर्टो को खुद भी नहीं। फिर 1967 में शे गुआरा की बोलिविया में मौत हो गई, और उसके बाद एक इटालियन पब्लिशर ने वही फोटो दुनिया भर में छपवा दी। बस फिर क्या था, पोस्टर्स, बुक्स, फ्लैग्स, वॉल्स, कॉलेज हॉस्टल्स, प्रोटेस्ट मार्चेस, टी शर्ट्स, कैफे वॉल्स, म्यूजिक एल्बम्स, हर जगह एक ही चेहरा। और धीरे धीरे वो सिर्फ एक आदमी की फोटो नहीं रही, एक सिंबल बन गया। किसी के लिए रेवोल्यूशन, किसी के लिए रिबेलियन, किसी के लिए फ्रीडम, और किसी के लिए एक स्टाइलिश टी शर्ट डिजाइन। देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि इंसान शे गुआरा के विचारों से सहमत हो या नहीं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर सिंबल को लोग एक ही नजरिए से देखें। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि एक तस्वीर ने दुनिया के विजुअल कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अल्बर्टो कोडा ने इस फोटो से करोड़ कमाने की रेस नहीं लगाई। वो चाहते तो क्या नहीं कमा सकते थे। उनका मानना था, अगर ये तस्वीर लोगों को किसी सोच तक पहुंचाती है तो इसका असली काम वही है, असली पर्पस वही है। हाँ, बाद में जब इस इमेज का कमर्शियल मिसयूज हुआ तब उन्होंने कुछ जगह विरोध जरूर किया, लेकिन उनकी सोच बहुत क्लियर थी, बहुत साफ थी। तस्वीर सिर्फ बेचने की चीज नहीं, कभी कभी वो एक विचारधारा होती है। वैसे एक बात बताइए, आज हम फोटो कब लेते हैं? जब खाना खाएं तब, जब ट्रैवल करें तब, जब नए कपड़े पहने तब, और सेल्फी लेने से पहले कैमरे से ज्यादा तो फिल्टर चूज करने में चला जाता है। और ग्रुप फोटो में आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, जानते हैं कि नहीं? अरे डिलीट करो, मेरी आंख बंद हो गई, मेरा मुंह खुला रह गया, मेरे बाल अच्छे नहीं आए, मैं तो कट ही गई, ऐसी टेंशन होती है ना। नहीं, एक और बड़ी टेंशन होती है, इस बार कैंडिड। अब आजकल तो कैंडिड भी प्लानिंग से होती है, फुल प्लानिंग से। लेकिन पुराने फोटोग्राफर्स का काम कुछ और ही था, उनके पास अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं था। हर क्लिक की एक कीमत होती थी, फिल्म लिमिटेड होती थी, गलती की गुंजाइश कम थी। इसलिए वो पहले देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, समझते थे, और फिर शटर दबाते थे। आज हम पहले क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक करते हैं और बाद में देखते हैं, और शायद कभी बाद में कुछ तो देखते भी नहीं। कुछ पिक्चर्स के तो नसीब में वापस कभी खुलना भी नहीं होता। फोटोग्राफी सिर्फ इमेज बनाना नहीं है, फोटोग्राफी एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारा पेशेंस है, सही टाइमिंग है, और कभी कभी किस्मत भी है। क्योंकि वो एक सेकेंड, वो स्प्लिट सेकेंड अगर निकल जाए तो जिंदगी भर वापस नहीं आता। इसी कहानी का एक और खूबसूरत पहलू है, कोडा को उस दिन बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका वो छोटा सा क्लिक हिस्ट्री बुक्स तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी के छोटे पल एक चाय की टपली, पापा के साथ स्कूटर राइड, माँ का कहना, खाना खा लिया, दोस्तों के साथ बिना वजह की हंसी, उस वक्त आम लगते हैं, जब गुजर रहे होते हैं कुछ पता ही नहीं होता। बाद में वही यादें, वही पल सबसे ज्यादा खास बन जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं, लेकिन कौन जाने, आपका एक अच्छा शब्द, एक मदद, एक मुस्कान या एक फोटो किसी और की जिंदगी में कितनी बड़ी जगह बना दे। इसीलिए हर दिन को हल्का मत समझिए, हर मुलाकात को आम मत समझिए,
हर क्लिक को सिर्फ फोटो मत समझिए, क्योंकि कभी कभी एक सेकंड ही सदियों तक याद रहता है। दोस्तों, आज घर जाके अपनी गैलरी जरूर देखिएगा, हो सकता है आपकी सबसे कीमती फोटो वो हो ही ना जिसमें आप सबसे परफेक्ट दिख रहे हैं, बल्कि वो हो जिसमें किसी की हंसी असली हो, किसी के आंसू प्यार हो, किसी के पल सच्चाई हो। इसी सोच के साथ मैं हूं आपकी तनुषा, आपकी तरानों की हमसफर। फिर मिलेंगे बातें इधर की उधर की में एक और कहानी के साथ, जहां सिर्फ बातें इधर की उधर की नहीं होती, दिल से दिल तक पहुंचती हैं। मुस्कुराइए, यादें बनाइए और जिंदगी को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, महसूस कीजिए। नमस्कार।

क्या कोई इंसान बिना क्लासिकल म्यूजिक सीखे इंडियन म्यूजिक के सबसे बड़े लेजेंड्स में शामिल हो सकता है? सुन के अजीब लगता है ना, बट अगर मैं कहूं कि ऐसे एक सिंगर थे जिन्होंने खुद ही कहा था, मुझे सारे गामा पा धा नी सा इन सब का ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैंने कभी क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन वही आदमी आज भी हर मूड का एक साउंडट्रैक है। खुशी हो, दिल टूट गया हो, रोड ट्रिप हो या बाथरूम सिंगिंग कंपटीशन हो, एक नाम है जो हर जगह फिट बैठता है और हम सब जानते हैं उस नाम को, हम सब गुनगुनाते हैं उस नाम को। बताइए, गुनगुनाते हैं कि नहीं? जी हाँ, किशोर कुमार, हमारे अपने किशोरदा। आज की बात सिर्फ उनकी आवाज की नहीं, उनके कमाल के म्यूजिक सेंस की है। दोस्तों, किशोर कुमार एक ऐसे कलाकार थे जो किसी सिलेबस से नहीं निकले थे, ना उन्होंने किसी म्यूजिक एकेडमी की डिग्री ली थी, ना रागों पर कोई लेक्चर्स दिए थे, लेकिन जब गाना गाते थे तो लगता था सुर उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं। वैसे घर का माहौल भी कुछ कम म्यूजिकल नहीं था। बड़े भाई अशोक कुमार, अनूप कुमार और खुद किशोरदा। लेकिन किशोर कुमार का असली स्कूल क्या था आप जानते हैं? उनका असली स्कूल था जिंदगी। जी हाँ, जिंदगी। रेल की सीटी, पंछियों की आवाज और दिल के इमोशंस। एक बार लता मंगेशकर जी ने इंटरव्यू में उनसे पूछा, आपने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है? किशोरदा मुस्कुरा कर बोल उठे, मुझे तो सारे गामा भी ठीक से नहीं आता। अब कोई और होता तो लोग कहते, अच्छा इसीलिए सुर कभी कभी हिल जाते होंगे। लेकिन किशोरदा के सुर, नहीं नहीं, किशोरदा के सुर कभी नहीं हिले। लोगों के दिल हिल जाते थे बट उनके सुर इधर से उधर नहीं हुए। म्यूजिक एक्सपर्ट्स की सुने तो वो कहते हैं कि किशोरदा ने कुछ गाने ऐसे गाए और कंपोज किए जो इंडियन रागों पे बेस्ड थे, और सिर्फ गाए ही नहीं, उनमें अपनी मस्ती भी डाल दी। जैसे झुमरू, याद है झुम झुम झुम झुम झुमरू? उसमें तो वो एक चाइनीज कैरेक्टर बने थे। अब अगर कोई आम कंपोजर होता तो शायद चाइनीज म्यूजिक की कॉपी कर देता, लेकिन किशोर कुमार ने क्या किया, उन्होंने इंडियन क्लासिकल के राग मलकौस का सहारा लिया। मलकौस एक ऐसा राग जो जनरली शांत, गहरा और रात के समय गाया जाता है, लेकिन किशोरदा ने उसी राग को कॉमेडी, मस्ती, डांस और एंटरटेनमेंट में बदल दिया। सोचिए, कोई आदमी पालक पनीर की रेसिपी से चॉकलेट केक बना दे और वो भी इतना टेस्टी। बस वही काम किशोर कुमार ने म्यूजिक में कर दिया। यही तो जीनियस होता है। रूल्स याद करना अलग बात है और रूल्स को महसूस करना अलग। किशोर कुमार को ग्रामर शायद नहीं पता थी, लेकिन लेकिन लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनकी म्यूजिकल लैंग्वेज का जवाब नहीं था, वो सीधा दिल से आती थी। कई म्यूजिक लवर्स मानते हैं कि उन्होंने कीरवानी, दरबारी कन्नडा, पुरिया धनाश्री, इन सभी रागों की भावना को बहुत खूबसूरती से अपने गानों में उतारा है। हो सकता है उन्होंने कभी उन रागों का टेक्निकल नाम नहीं सोचा हो या सुना हो, लेकिन उनका एहसास बिल्कुल सही पकड़ा, और शायद इसीलिए उनके गाने किताबी नहीं, इंसानी लगते हैं। एक और बात नोटिस की है आपने, किशोर कुमार सिर्फ गाते नहीं थे, वो आवाज से एक्टिंग करते थे। कभी हंसी, कभी शरारत, कभी आंसू, कभी बचपना, एक ही गाने में इतने इमोशंस भर देते थे कि लगता था फिल्म आंखों के सामने चल रही है।
जिस एक्टर के लिए प्लेबैक देते थे लगता था वही एक्टर गाना गा रहा है। आई थिंक ये कमाल सिर्फ किशोर दा के पास था, और ऐसा था कि मानो उन्होंने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री बदल दी, म्यूजिक की ग्रामर चेंज करके रख दी। इसलिए उनके गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, जिए जाते हैं, जिंदा हैं। और दोस्तों, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में यही गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं पहले परफेक्ट बनूंगा, फिर शुरू करूंगा, पहले कोर्स करूंगा, फिर सर्टिफिकेट लूंगा, तब जाके कुछ करूंगा। लेकिन किशोर कुमार की कहानी एक और बात सिखाती है। नॉलेज जरूरी है, बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ टेक्निक से कला पैदा नहीं होती। कला पैदा करने के लिए दिल चाहिए, धड़कता हुआ दिल, जो हमारे किशोर दा के पास बहुत खूबसूरती से था। एहसास चाहिए जो भर भर के थे, और अपनी एक असली पहचान चाहिए जो खुदा ने उन्हें बहुत खूबसूरती से नवाजी थी। जी हाँ, हमारे किशोरदा, उनका नाम लेते ही एक स्माइल आ जाती है मुंह पे, आती है कि नहीं? वैसे एक और छोटा सा सवाल, अगर आज किशोर कुमार सोशल मीडिया के जमाने में होते और किसी रियलिटी शो में उनका ऑडिशन होता तो क्या बोलते? अगर वो बोलते कि मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली तो जज क्या कहते? सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम। या फिर पहला गाना सुनते ही खड़े होकर तालियां बजाते, स्टैंडिंग ओवेशंस देते। सोचिएगा जरूर। और जाते जाते किशोर कुमार की जिंदगी हमें एक और बहुत खूबसूरत बात सिखाती है। हर टैलेंट सर्टिफिकेट लेकर नहीं आता, हर आर्टिस्ट क्लासरूम से नहीं निकलता। कुछ लोगों का टीचर उनका दिल होता है, उनका जीवन होता है, और जब दिल सुर पकड़ लेता है, जीवन ताने पकड़ लेती है, तो दुनिया उसे लेजेंड कहती है। दोस्तों, आज घर जाकर एक काम जरूर कीजिएगा, किशोर कुमार का अपना फेवरेट गाना लगाइए और उसे सिर्फ सुनिए मत, उसे महसूस कीजिए। हो सकता है आपको भी उसमें एक ऐसा एहसास मिल जाए जिसकी किसी किताब में रचना नहीं है, बट वो आपके दिल से इतना करीब है कि आप खुद नहीं समझ पाते कि क्या कनेक्शन है और कितना गहरा कनेक्शन है। इन्हीं को एहसास कहते हैं, इन्हीं को जज्बात कहते हैं, इसी को दिल कहते हैं और इसी को आर्ट कहते हैं। इसी मोड़ पे मैं हूं आपकी तनुषा, इजाजत चाहती हूं आपसे, कल फिर मिलूंगी। मेरा वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा, मुझसे प्यार करते रहिए, मुझे सुनते रहिए, और बातें इधर की उधर की में मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। याद रखिए, सुर सीखे जा सकते हैं, लेकिन एहसास सिर्फ जिए जाते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने कहा, ए सुनो बेटा, कॉपी छुपा लो, पीछे वाला देख रहा है। तो झप्पू बोला, देख लेने दीजिए सर, मैं अकेले फेल थोड़ा ही होना चाहता हूँ।

0: सागर किया।
1: दोस्तों, आप सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, ये लगा होगा कि बस अब सब खत्म, जॉब चली गई, रिश्ता टूट गया, किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, या फिर जिस चीज के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था वो मिल ही नहीं रही, वो मुझसे दूर जाती जा रही है। उस वक्त आपको कैसा लगेगा या कैसा लगता है, जैसे पूरी दुनिया ने एक पॉज बटन दबा दिया हो। सब आसपास चल रहे हैं, सब भाग रहे हैं, बस एक आप ही का जीवन है जो पॉज हो गया है, रुक गया है। लेकिन सच बताऊं, जिंदगी के रिमोट में पॉज होता ही नहीं है, सिर्फ प्ले और फास्ट फॉरवर्ड होता है। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दरवाजा जरूर बंद होता है, वो दरवाजा जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, और जैसे ही वो बंद होता है हम उसके सामने कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं, बस उसी को देखते रहते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ,

हमारी जिंदगी की जो ट्रेन है उसमें बैठकर हम पुराने स्टेशन का टिकट संभाल कर रोते क्यों रहते हैं? एक बात नोटिस की है आपने? शायद नहीं की होगी, अब करना। जब हम दुखी होते हैं ना, तो हम अपनी जिंदगी जीना बिल्कुल बंद कर देते हैं। एक्सरसाइज कल से, वॉक परसों से, अलमारी साफ अरे नेक्स्ट वीक पक्का, इस वीकेंड तो पक्का। पुराने दोस्त को फोन, यार देखेंगे बाद में, अभी मूड नहीं है। पेंटिंग करनी थी, नहीं मूड नहीं है। गिटार सीखना था, वो बुक पढ़नी थी, सब लिस्ट में ही रह जाता है धरा का धरा। और लिस्ट इतनी लंबी होती जाती है कि जिंदगी छोटी पड़ती जाती है। मुझे लगता है इंसान के घर में सबसे भीड़ दो जगह होती है, एक अलमारी और दूसरी कल करेंगे वाली लिस्ट। होती है कि नहीं? अलमारी में 2018 की वो जीन्स अब भी पड़ी है जिसको देख के हम सोचते हैं कि इस साल जरूर पतले होके इसमें घुस जाएंगे, बट वो घुसने की उम्मीद हमने अभी तक नहीं छोड़ी। और फोन गैलरी में वो 14,000 फोटोज जिनमें से आधी तो ब्लर होती हैं, लेकिन डिलीट नहीं, नहीं कभी काम आ जाए तो। बिल्कुल वैसे ही हम पुरानी तकलीफों को भी डिलीट नहीं कर पाते, उनसे चिपक के बस बैठ जाते हैं या बैठ जाना चाहते हैं। कभी कभी लगता है लाइफ भी व्हाट्सएप जैसी होनी चाहिए, जो चैट जरूरी नहीं आर्काइव कर दो। डिलीट मत करो भाई, पर रोज देखना भी जरूरी नहीं है, आर्काइव्स का पर्पस ही है। दोस्तों हर मुश्किल के बीच में हमें खाली वक्त मिलता है और वही वक्त सबसे कीमती होता है, क्योंकि वही वक्त है जो आपको दोबारा बना सकता है। सोचिए, जॉब नहीं है, शायद इसीलिए पहली बार सुबह बिना अलार्म के चाय पी सकते हैं। रिश्ता खत्म हो गया तो शायद खुद से रिलेशनशिप शुरू करने का इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। वो प्रमोशन नहीं मिला, फलाने को मिल गया, तो शायद कोई नई स्किल सीखने का यही मौका मिल गया आपको। एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूं। एक किसान था, उसका घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, देखते हैं। दो दिन बाद घोड़ा वापस आया और साथ में तीन जंगली घोड़े भी लेकर आया। गांव वाले बोले, वाह कितनी अच्छी बात है यार ये तो, वाह वाह। किसान बोला, देखते हैं। उसका बेटा उन घोड़ों को संभालते हुए गिर गया, पैर टूट गया। सब बोले, उफ ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। किसान बोला, देखते हैं। कुछ दिन बाद सेना गांव में जवान भर्ती करने आई। बेटे का पैर टूटा हुआ था इसीलिए वो बच गया। अब बताइए कौन सी बात बुरी थी और कौन सी अच्छी? उस वक्त तो किसी को भी ये नहीं पता था ना, इसीलिए जिंदगी के हर मोड़ पर थोड़ा सा सब्र जरूरी है, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा फेथ कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही है। एक और बात, हम अक्सर कह देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है यार, लेकिन जैसे ही कोई सेटबैक आता है अचानक टाइम ही टाइम मिल जाता है। सोचने का, लैमेंट करने का, दुखी होने का, सर पटकने का, लाइफ में कंप्लेंट्स करने का, बस फर्क इतना है कि उस वक्त हम उस टाइम को सजा बना देते हैं यही सब करके। अरे भाई टाइम मिला है तो उसे गिफ्ट बना लो, पुरानी डायरी पढ़ लो, मम्मी के साथ चाय पी लो, पापा के साथ मार्केट चले जाओ, पुराने दोस्त को फोन लगा लो,

बस टेरेस पर जाकर आसमान ही देख लो। बिलीव कीजिए दोस्तों, हर प्रोडक्टिव काम सिर्फ लैपटॉप पर नहीं होता, कुछ काम दिल के अंदर होते हैं। वैसे एक सवाल, अगर कल सुबह आपके फोन में इंटरनेट ना चले तो आप क्या करेंगे? प्लीज मुझे वहीं से कुछ फेंक कर मारिएगा मत, मैं बस इमेजिन करने को बोल रही हूं, ऐसा सच में नहीं हो रहा आपके साथ कल सुबह। बट एक बार सोचिए, कल्पना कीजिए, आप 5 मिनट में घबरा जाएंगे, आपका पूरा दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। या फिर आप लाइफ को थोड़ा और नोटिस करेंगे, घर के कामों में थोड़ा और ध्यान देंगे, घर के बाहर की भी एक दुनिया है उसमें जाके अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, अपने आप को शेयर करेंगे। जहां पेड़ हैं, हवा है, लोग हैं बात करने के लिए, और शायद वो एक पुराना दोस्त भी है जो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, एक जॉब आपकी पहचान नहीं है, एक रिश्ता आपकी पूरी कहानी नहीं है, और एक फेलियर आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। जिंदगी का कैलेंडर बहुत बड़ा है। एक खराब दिन, एक खराब महीना या एक खराब साल पूरा जीवन नहीं हो सकता। आज घर जाकर एक और काम जरूर कीजिएगा, अपनी अलमारी का एक शेल्फ साफ कीजिए, फोन की गैलरी से 100 बेकार फोटोएं डिलीट कीजिए, और एक ऐसे दोस्त को फोन कीजिए जिससे बात किए हुए बहुत दिन हो गए। हो सकता है नया दरवाजा किसी ऑफिस में नहीं, किसी पुरानी दोस्ती में खुल जाए। याद रखिए, दरवाजे खोलना जिंदगी का काम है, लेकिन उन तक चल कर जाना हमारा। मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर। फिर मिलेंगे बातें इधर की उधर की में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कल करेंगे को थोड़ा सा कम, और आज से शुरू करते हैं को थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया शादी ना हमेशा अच्छा खाने बनाने वाले से ही करनी चाहिए, क्योंकि देखो शादी के बाद प्यार कम हो सकता है पर भूख कम नहीं होती।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग एक नहीं दो है, ब्लैक एंड व्हाइट। सफेद रंग है कॉरपोरेट दुनिया का और काला रंग है क्राइम और जुर्म का, या ये भी कह सकते हैं एक एडवोकेट के काले कोट का। और मैं हमेशा की तरह आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम में मिल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड से लेकर कोर्ट रूम तक हर मंच पर अपनी पहचान बनाई है। शी इज एन एडवोकेट, ट्रेनर एंड ए साइबर लॉ एक्सपर्ट। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एडवोकेट विशु माथुर, प्रैक्टिसिंग इन सेशंस एंड लोअर कोर्ट्स ऑफ जयपुर सिंस 2015। उन्होंने न सिर्फ क्रिमिनल और सिविल केसेस को हैंडल किया है, बल्कि साइबर फ्रॉड्स और डेटा प्रोटेक्शन जैसी मॉडर्न चैलेंजेस को मैं भी अपनी एक्सपर्टीज साबित की है। एमबीए से लेकर एलएलबी, साइबर लॉ डिप्लोमा तक उनकी एजुकेशनल जर्नी बताती है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो आज बात करेंगे उनकी इंस्पायरिंग जर्नी की, साइबर सेफ्टी और डेटा प्राइवेसी के कुछ बेहद जरूरी पहलुओं की, और जानेंगे कोर्ट रूम के बाहर भी किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन। साथ हैं एडवोकेट विशु माथुर। विशु जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो विशु जी, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। बचपन और शिक्षा के दिनों की कुछ यादें साझा करेंगी हमारे साथ, कुछ बताएंगी हमें इसके बारे में, अपने बारे में?
1: जरूर सर। सर, मेरे फादर रेलवे में थे, तो उनकी बदौलत मैंने बहुत सारे शहर देखे। बचपन में हम गुजरात में थे, फिर हम राजस्थान शिफ्ट हुए, राजस्थान के कई शहरों में रहे सर, और इसी तरह से मेरी पढ़ाई भी अलग अलग शहरों में हुई है। तो अगर आप मेरी ट्वेल्थ की बात करें तो ट्वेल्थ मैंने अजमेर से कंप्लीट करी है, और फिर कॉलेज मैंने जयपुर से किया है।
0: आपने बीए भी किया, एमबीए भी किया और फिर एलएलबी भी कर लिया, ये काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। किस मोड पर आपने तय किया कि आपको एडवोकेट ही बनना है?
1: सर, इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल है। एक्चुअली बच्चों को आजकल पता होता है कि वो 9th-10th में ही ये फिगर आउट कर लेते हैं कि उन्हें आगे चल के क्या करना है, बट सर मैं थोड़ी सी अलग थी, मुझे ग्रेजुएशन तक ये पता ही नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। ग्रेजुएशन करना था क्योंकि वो जरूरी होता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में इंटरेस्ट था, तो यही मेरे सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन के। फिर उस टाइम मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी सर, और जेनपैक्ट में रहते हुए मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, और एमबीए फिर मैंने आईआईएम कलकत्ता से किया। जॉब करते करते ही अचानक एलएलबी लॉ में इंटरेस्ट जागा। उसका दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि मेरी फैमिली में ही कुछ लोगों ने जुडिशरी में अपना जर्नी स्टार्ट की थी, और कुछ एडवोकेट बने थे, तो उनके देख करके मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई। ये दो रीजंस ऐसे थे जो मुझे लॉ की तरफ मोड़ते चले गए और मैंने लॉ में एडमिशन लिया।
0: तो इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब कर ली थी, ऐसा लग रहा है मुझे। आपने बताया आप जेनपैक में काम करने लग गई, इज इट सो, और फिर आप इधर लॉ की तरफ आ गई कि कुछ आप जो आपके संबंधी या आपके जान पहचान वाले जुडिशरी के अंदर थे, उससे इंस्पायर होकर आप लॉ पे आ गई। वेरी गुड
1: जी सर।
0: तो आपकी प्रोफेशनल जर्नी 2015 में शुरू हुई, शुरुआती दिनों के कुछ अनुभव बताएं जब आपने पहली बार लोअर कोर्ट में कदम रखा। हमें तो कोर्ट में घुसने में ही डर लगता है, और आप रोजाना जाती हैं, कुछ बताइए।
1: हाँ सर, बहुत एक्साइटेड थी मैं कि एक्चुअली वो कोर्ट पहनकर ही ऐसा फील हो रहा था कि हम कुछ बन गए हैं, बट सर जैसे ही कोर्ट में एंटर हुए तो मुझे लाइफ का सबसे बड़ा शॉक मिला, क्योंकि हमने मूवीज में जिस तरह से कोर्ट्स देखे हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। एक छोटा सा कमरा, उसमें करीब 50 लोग खड़े हुए हैं, जज साहब बैठे हैं, कोर्ट के और ऑफिसर्स हैं और काम हो रहा है, एक पंखे के नीचे इतने सारे लोग खड़े हैं और फाइलों का ढेर लगा हुआ है। तब मुझे ये लगा कि ये कोट पहन तो लिया है लेकिन अभी इसे कमाना बाकी है, तो ये 10 साल में शायद मैं इसे कमाने की ही कोशिश कर रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है विशु। हम भी जब कोर्ट जाते हैं तो कई बार तो वहाँ जो हालात होते हैं, सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ होता है, एक पंखा, एसी भी नहीं होते कई कोर्ट्स में, तो आजकल मैंने देखा है जी, मुझे पता है बहुत टफ है। तो विशु आजकल जो ये हालात हैं इन पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाने गाने का आनंद लेते हैं।

0: विशु जी, अब लगभग एक दशक से आप प्रैक्टिस कर रही हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में, कौन सा फील्ड आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, सिविल या क्रिमिनल?
1: सर चैलेंजिंग दोनों हैं और दोनों नहीं भी हैं,
0: जी
1: क्योंकि केस की समझ पर डिपेंड करता है कि वकील उस केस को किस तरह से मोड़ेगा। इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज है कि आपकी एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने बुक्स के जो प्रोविजंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है और उनको समझा भी है। दूसरा, आपने प्रैक्टिस किस तरीके से करी है, क्योंकि सर मैं समझती हूं कि अगर आप केस को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में और आप अपने क्लाइंट को उनका डिजायर्ड रिजल्ट दिलाने में समर्थ हो जाते हैं, वो केस उतना ही आसान है। अदरवाइज सारे ही केसेस चैलेंजिंग है सर।
0: अच्छा, अब लेकिन मैं कई बार सोचा करता हूं कि भाई जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे सामने वाले का वकील भी तो तैयारी कर रहा होगा, तो किस तरह से एकेडमिक जो नॉलेज होती है दोनों की कहीं जगह क्लैश करती है, कहीं आपको सक्सेस दिलाती है? मैं ये सवाल वैसे ऑफ द कफ पूछ रहा हूँ। अच्छा
1: बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, लोग उन सेक्शंस को बेयर एक्ट्स में नहीं पढ़ते जो उनको लगता है जरूरी नहीं है कोर्ट में काम आने के लिए। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर डेफिनेशन भी दी हुई है हमारे किसी भी, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में बदल चुका है, अगर उसमें किसी एक चीज की डेफिनेशन भी दी हुई है और वो डेफिनेशन आपने समझ ली, तो आपको आगे जाकर के संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी। वरना ये होता है कि आपने मुझे बताया ये ऑफेंस ये है, मैंने अपने जूनियर को बताया, उन्होंने अपने जूनियर को बताया और बुक किसी ने भी नहीं पढ़ी, तो जब सब एक ही धर्रे पे चले आ रहे हैं तो रिजल्ट भी एक ही निकलता है।
0: बहुत खूबसूरती से आपने बताया। चलिए बताइए, सेशन कोर्ट पे काम करने के दौरान आपने कौन से केस या सिचुएशन से सबसे ज्यादा सीखा है, क्योंकि कई बार बड़ी ट्रिकी सिचुएशंस भी आती हैं केस के दौरान, तो आपको क्या लर्निंग मिली है उससे?
1: सर लर्निंग बहुत मिली है, क्योंकि मैं अब तक कॉरपोरेट में ही रही हूँ। कॉरपोरेट एक ग्लैमर वर्ल्ड होता है सर, क्योंकि मैं मैनेजर पोजीशन पे रही हूँ, मैंने बीपीओज में जॉब किया है, तो मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है, और यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का जो इंसान होता है, जो अपने खेत में हल जोतता है, वो आया है, और उनके समझाने का तरीका बहुत ही अलग होता है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो मैंने सबसे पहले ये सीखा है सर कि पेशेंटली सामने वाले की बातें सुनो, लिसनर आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, एडवाइजर आप बाद में बनो, पहले लिसनर बनो। जब वो आपको सारी बातें बता दें, फिर आपको डिटेक्टिव बनना है। डिटेक्टिव आपको ऐसे बनना है कि जो बीच की कड़ियां जो वो बताना भूल गया अपनी घबराहट में, या शायद उसने सोचा ये जरूरी नहीं है, वो आपको खोद खोद के निकालनी है। तीसरा, आपको एडवोकेट बनना है कि उस केस को किस तरीके से आप मोल्ड करेंगे कि वो हमारे फेवर में आ जाए। तो ये तीन चीजें सर मैं सीख रही हूं अभी भी, और हाँ ये बहुत जरूरी चीजें हैं अदर देन एकेडमिक और आपका जो भी प्रैक्टिस है इनके अलावा।
0: बहुत खूबसूरती से आपने बताया, लिस्टनर वाली बात बहुत बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि एक जो जूनियर वकील होते हैं वो उनको ज्यादा ध्यान से सुननी चाहिए कि जो कंप्लेंटेंट आ रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि तो बहुत सारी बातें तो उसी से समझ में आती है।
1: बिल्कुल सर
0: आप लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ड्राफ्ट करती हैं, तो क्या
1: जी
0: आप जनता को कुछ या हमारे लिसनर्स को कुछ बेसिक अवेयरनेस देना चाहेंगी कि नोटिस या एफिडेविट जैसी चीजें कैसे तैयार होती है, या क्या इन बातों के लिए ध्यान में रखना चाहिए एक आम आदमी को?
1: सर नोटिस और एफिडेविट्स हैं, इनमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है लीगल प्रोविजंस। जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं वो या तो पढ़ के आते हैं तो वो कुछ चीजें कैच कर लेते हैं, कुछ लोग जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं या नहीं जानते हैं वो नहीं कैच कर पाते हैं। मैंने ये देखा है कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसमें स्टैम्प पेपर 100 रुपए का लगना है, लेकिन सामने वाले से उन्होंने कहा कि 500 का लगा दो, कोई बात नहीं, वो पैसा वो इंसान अपनी जेब में नहीं ले रहा है, वो जा तो वहीं रहा है क्योंकि स्टैम्प खरीद रहे हैं वो, लेकिन सर 500 रुपए उस अगले जो भी पर्सन है उसके लग चुके हैं। अब वो हो सकता है वो कहीं से जोड़ करके लाया हो। तो पहली चीज तो ये है कि आप थोड़ी सी इस चीज की पूछताछ कर लें पहले किसी से कि कितने का स्टैम्प पेपर लगेगा। अगर 100 की जरूरत है तो 100 ही लगाइए, 500 की जरूरत नहीं है तो नहीं लगाइए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि जो भी कंटेंट जो भी उस चीज में लिखा जा रहा है, नोटिस है या एफिडेविट है, उसको बहुत अच्छे से समझें। अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी और से पढ़ के और समझें और फिर उसके बाद में नीचे सिग्नेचर करें। क्योंकि अगर आप किसी केस के रिलेशन में भी नोटिस भेज रहे हैं तो उस केस से रिलेटेड आपने उसमें क्या इंफॉर्मेशन डाली है वो बहुत जरूरी है। नोटिस एक पहला स्टेप है केस को स्टार्ट करने का। अगर आपने अपने उस नोटिस में ये क्लियर नहीं किया कि आपने किस लॉ के प्रोविजन के अंडर वो नोटिस भेजा है तो वो नोटिस बेकार है। तो जिस पर्सन के बिहाफ पे लॉयर या कोई और दूसरा पर्सन भी नोटिस भेज रहा है वो पर्सन उसको बहुत अच्छे से पढ़े और उसको ये समझने की कोशिश करे कि इससे मेरा कुछ फायदा हो रहा है या इससे मेरा कोई नुकसान हो रहा है, और उसके बाद में ही उसके नीचे सिग्नेचर करें क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है और बाद में वो उनके खिलाफ यूज भी हो सकता है।
0: बहुत बढ़िया बात बताई कि ये एक तरह का फाउंडेशन है या कॉर्नर स्टोन है जो केस आगे चलेगा, तो इसलिए नोटिस बड़ा केयरफुली ड्राफ्ट होना चाहिए और सही लीगल प्रोविजन के थ्रू ड्राफ्ट होना चाहिए। इज इट सो, मैं सही कह रहा हूँ?
1: बिल्कुल सर।
0: तो चलिए, इस सावधानी के लिए और कोर्ट रूम में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हम एक गाने का आनंद लेते हैं, कोई गाना अच्छा सा सुनते हैं।
1: जरूर सर। जाने वाले

0: विश्व जी, आप आते हैं एक खास अहम मुद्दे पर। आपने भारतीय विद्यापीठ लॉ कॉलेज पुणे से साइबर लॉ डिप्लोमा होल्डर हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में यह कितना जरूरी हो गया है, इस साइबर लॉ से संबंधित बातें?
1: सर, डिजिटल वर्ल्ड अभी हम इस चीज में इवॉल्व कर रहे हैं, अभी हम बहुत सारी चीजें अडेप्ट कर रहे हैं। लोगों के हाथ में मोबाइल खाने से ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है, मतलब शायद लोग दो दो टाइम का खाना नहीं जोड़ पाते होंगे, लेकिन मोबाइल उनके पास में जरूर है। और उसी तरीके से हमारी ज्यादातर चीजें वर्चुअल हो चुकी हैं। लोगों को फोटो खिंचवाना, फोटो अपलोड करना, रील्स बनाना, रील्स अपलोड करना और लोगों से अप्रिसिएशन पाना बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं सब चीजों से ही क्राइम्स होते हैं। हम एक बेसिक चीज लेकर चलते हैं कि हम अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी आजकल फोन से ही करते हैं, तो ये जो फोन से हम जो भी चीजें करते हैं, इनके तार लोग अपने कंप्यूटर से जोड़ लेते हैं। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप और बैंक के बीच में जो पैसों का लेन देन आपके फोन से हो रहा है, उसमें बीच में किसी ने एक चोरी का तार जोड़ करके और अपने कंप्यूटर से जोड़ लिया है, और आपको पता भी नहीं है कि जो पैसा आप बैंक में डाल रहे हैं वो पैसा उसके पास चला गया है। आपको ये लगेगा कि पैसा बैंक के पास चला गया, लेकिन बैंक के पास नहीं जाता है, वो आपको बाद में पता चलता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑफेंसेस अब होने लगे हैं, क्योंकि हम वर्चुअली बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, इसलिए साइबर लॉ की जरूरत अभी पड़ी है। अभी भी ये इवॉल्व हो रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कंप्लीट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये लॉ भी और बढ़ता रहेगा।
0: बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और बहुत ही कंसर्न भी है। आपने साइबर फ्रॉड जैसे बैंक फ्रीज और ई वॉलेट स्कैम्स के केस भी हैंडल किए होंगे, तो ऐसे मामलों में विक्टिम्स को तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए, क्या सलाह देंगी आप?
1: तुरंत तो सर, सबसे पहले तो आप अपने अगर ई वॉलेट से अगर कुछ हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको लॉग आउट करिए, या अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कुछ हुआ है तो उसको आप सबसे पहले स्टॉप करवाइए, फ्रीज करवाइए। जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सबका स्क्रीनशॉट्स लीजिए। और दूसरा, बैंक फ्रीज जैसे ही होता है तो बैंक आपको कुछ इंटीमेशन करता है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भेजता है ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू, तो आप बैंक से तुरंत मिलिए, उनसे आप जानकारी लीजिए कि कौन से ट्रांजैक्शन पे उन्होंने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर ये केसेस कस्टमर्स उनकी वो होते हैं जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, तो पैसा ए ने बी के पास भेजा, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा या ई को भेजा। अब इन सारे लेयर्स में से कौन सा वाला लेयर जो है वो डिफेक्टिव है, तो बैंक वो डिटेक्ट करके और सारे अकाउंट्स फ्रीज कर देता है। तो हम उस ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करके और अपना एक डिफेंस दे करके अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बैंक से कांटेक्ट करिए, अपने ई वॉलेट को लॉग आउट कर दीजिए, कोई भी लिंक है या कोई भी ओटीपी है ये सब आप मत क्लिक करिए। और दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, पहला है टोल फ्री नंबर जो साइबर क्राइम रजिस्टर करने के लिए जरूरी है, वो है 1930। 1930 है जो टोल फ्री नंबर है, आप अपना किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, ये है www.cybercrime.gov.in। ये एक रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पोर्टल है। तीसरा एक पोर्टल है, MHA की वेबसाइट है, तो इस पर भी कर सकते हैं। बाकी ये दो जो लिंक्स हैं, एक तो टोल फ्री नंबर और जो cybercrime.gov.in है, ये सबसे पहले रिएक्ट करते हैं।
0: अच्छा, तो ये बताइए, ये इस पे जब हम रजिस्टर करते हैं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आती है सरकारी डिपार्टमेंटों टाइप, वो 10 सवाल पूछेंगे, ये करेंगे, मतलब
1: नहीं
0: सिंसियरली
1: नहीं सर,
0: हमारी कंप्लेंट लेते हैं वो लोग?
1: बिल्कुल लेते हैं सर। अब हर जगह पर साइबर सेल बन गए हैं, तो
0: अच्छा,
1: वो जो साइबर सेल हैं उनके पास जाती हैं ये इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो कंप्लेंट्स हैं, और आप डायरेक्ट भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट ले जा सकते हैं। आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलता है, वो कंप्लेंट नंबर आप ले जाइए और वहां से भी आप अपना मतलब इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो आप करवा सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया। आपने डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी टेक्नोलॉजीज पर भी काम किया है। आम यूजर्स अपने डेटा को ऑनलाइन कैसे सिक्योर कर सकता है, कैसे सुरक्षित रख सकता है, बताएंगे इसके बारे में?
1: देखिए अगर

0: यूज कर रहे हैं तो एक प्रॉपर फायरवॉल होना चाहिए, एक वायरस प्रोटेक्शन एप्लीकेशन होनी चाहिए. डेटा आपका इनक्रिप्टेड है, वैसे तो गवर्नमेंट भी कर रही है, बाकी आप भी ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं. अपनी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्लाउड स्पेस और ऐसे कई स्पेसेस हैं, उन पे आप अपलोड कर सकते हैं. दूसरा, अगर मोबाइल फोन की आप बात करें तो आप ऐसी कोई भी अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशंस डाउनलोड ना करें, जो कि हो सकता है कि वो कोई मैलवेयर लेकर आए और आपका फोन हैक हो जाए कंप्लीटली. तो एक फाइल मैनेजर नाम से एक फोल्डर आता है, फाइल
1: जी
0: मैनेजर आप
1: हाँ
0: डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें आप रेगुलरली चेक करें कि आपके फोन में कोई एपीके फाइल तो नहीं है. एपीके फाइल्स
1: ओके
0: जो होती हैं वो जनरली वायरस होती हैं, तो वो जैसे ही फाइल मैनेजर में ये डिटेक्ट हो जाए वो फाइल आप डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए वो फाइल. और अननेसेसरी एप्लीकेशंस फोन में रखिए ही मत, वो ही अच्छा है.
1: अच्छा, ये थोड़ा सा एपीके फाइल के बारे में बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते रहते हैं, कि
0: जी
1: क्या क्या ये डॉट एपीके नाम से इनका एक्सटेंशन होता है या क्या होता है, कुछ बताएंगी?
0: ये डॉट एपीके फाइल्स जो होते हैं ये आपके फोन को हैक करने के लिए ही भेजे जाते हैं.
1: ओके
0: अगर मैं रीसेंट एग्जांपल दूं, मेरे एक रिलेटिव का फोन हैक हो गया था, क्योंकि उनका ट्यूरिंग जॉब है और वो कई जगह पे अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनको पता नहीं चला और उनका फोन हैक हो गया. फोन से मेरे पास और हमारी फैमिली में कई लोगों के पास में व्हाट्सएप से मैसेज गया और उन्होंने कुछ फोटो हमें भेजी. उसमें नीचे लिखा हुआ था डॉट एपीके. वो फोटो मुझे दिख नहीं रही थी, वो एक फाइल जैसी थी, पीडीएफ जैसी थी. तो
1: अच्छा
0: अगर जैसे आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं और मैं आपको कुछ भेजूंगी तो आप सोचेंगे अच्छा विशु ने कुछ भेजा है, मैं देखता हूँ.
1: जी, बिल्कुल
0: बट
1: सही।
0: यहाँ हमें थोड़ा अवेयर रहना है, अगर कोई जानकार भी हमें कुछ भेज रहा है तो हम उसको कॉल करके पूछ लें कि आपने हमें कुछ भेजा है क्या. अगर वो कहे नहीं मैंने आपको कुछ नहीं भेजा, तो वो फाइल आप डाउनलोड मत करिए. क्योंकि जब मेरी उनसे बात हुई बाद में, तो उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट से 15,000 निकल गए और कुछ किसी कुछ लोगों ने वो डाउनलोड कर ली होगी फाइल, तो उनका फोन भी हैक हो गया. तो ये डॉट
1: ये
0: एपीके फाइल्स जो होती हैं ये बहुत खतरनाक होती
1: बहुत
0: हैं.
1: बहुत रिस्की है और डेंजरस है ज्यादा। अच्छा, तो ये तो बहुत हो रहा है आजकल, लोग कुछ इमरजेंसी बता के और फोन करते हैं, भाई वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे को पैसे भेज दो। अभी मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, 30,000 रुपये उसने
0: जी
1: भेज दिए ऐसे गलत किसी को।
0: जी
1: लेकिन जैसे आपने अभी मुझे बताया कि ये वहाँ साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट करो 1930 पे, उन्होंने 1930 पे भी की, लेकिन फिर उनसे कहा गया भाई आप थाने में भी जाके, जो लोकल थाना है वहां जाके भी आप FIR लॉन्च कर दो अपनी। तो खैर वो गए कर दी उन्होंने, लेकिन पुलिस वाले भी 30-40 हज़ार के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, मुझे ऐसा लग रहा है जो
0: हाँ
1: वहां
0: सर,
1: थाने में हालात देखे मैंने।
0: एक्चुअली सर अभी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज आए नहीं है साइबर के, क्योंकि अभी ये कोडिफाई नहीं हुआ है प्रॉपरली. तो जैसे ही इसमें प्रोविजंस प्रॉपर आ जाएंगे, जैसे हमारा भारतीय न्याय संहिता कोडिफाइड है कि इस अपराध का ये पनिशमेंट है, इस अपराध का ये पनिशमेंट है, ऐसा कोई बुक हमारे पास है नहीं. जैसे ही वो हो जाएगा तो ये सब चीजें भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी.
1: अच्छा, अब आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तरफ, कि सुरक्षा भी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, सोशल मीडिया हो या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हो, इस बारे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि कई लोग मैंने देखा है, फिल्म स्टार्स वगैरह भी बहुत कहते हैं कि हमारा ये ब्रांड है, इसकी हम सुरक्षा करेंगे, ये करेंगे, ऐसी अखबारों में न्यूज़ आती रहती है, इसके बारे में कुछ बताएंगी थोड़ा बहुत हमें, समझाएंगी?
0: जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सर बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है अब. पहले ये ट्रेडमार्क और इन सब चीजों पर ही रहता था, पेटेंट पेटेंट ट्रेडमार्क इन सब पर ही रेस्ट्रिक्टेड था. लेकिन अब ये आइडेंटिटी, वॉइस क्वालिटी, किसी का एक तरीके का फैशन स्टाइल है, किसी के एक तरीके का बोलने का स्टाइल है, क्योंकि हम लोग वीडियोस और फोटोग्राफ्स के वर्ल्ड में इतना ज्यादा खो चुके हैं, हर कोई आजकल किसी ना किसी को मिमिक कर रहा है, सिर्फ कुछ व्यूज लेने के लिए, कुछ लाइक्स लेने के लिए, और उसके लिए वो भद्दे से भद्दा कंटेंट भी बना देते हैं। तो अगर मैं किसी बहुत नामी सेलिब्रिटी का यू को की आवाज को यूज कर रही हूँ, या उनके किसी पॉपुलर डायलॉग को यूज कर रही हूँ, या फिर मैं उन्हें उनकी तरह ही ड्रेसअप होकर के और कोई भद्दी चीज दिखा रही हूँ, तो ये डायरेक्ट उनकी पर्सनालिटी को हिट करता है। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बस उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक तो डिग्रेड कंटेंट ना बनाएं, दूसरा किसी भी कॉन्स्पिरसी के चीजों को लेकर के ना बनाएं। कई लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ एक छोटे से ऑडियंस को टारगेट करना है और हमें व्यूज मिल जाएंगे, बट वो बाद में जाके उनके जो रेपरकशंस होते हैं वो उनको झेलने पड़ते हैं। तो हाँ, सिंपल चीजें क्रिएट करें, वल्गर ना हो, अब्यूजिव ना हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफिक चीजें हैं, तो उससे रिलेटेड भी ऐसा कुछ ना वो क्रिएट करें कि वो आईपी में फंस जाए।
1: अभी शायद थोड़े दिन पहले अमिताभ बच्चन भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गए थे, उनका भी
0: जी,
1: कोई ऐसा मुद्दा था
0: उन्होंने
1: कि
0: अपनी आवाज को वो करवाया है, प्रोटेक्ट
1: आवाज को
0: करवाया है।
1: प्रोटेक्ट कराया उन्होंने।
0: जी
1: हाँ, तो ये जितने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, इन सबको इस बारे में भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आवाज को किसी डिस्टॉर्टेड पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर ले कोई कॉपी करके उसको। ऑब्वियसली, तो आवाज की इस दुनिया की याद करते हुए हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक अच्छे से गाने की
0: जी
1: आवाज सुनते हैं।

0: अच्छा विशु जी, आप 65B सर्टिफिकेट्स और ISO सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करती है। हमारे श्रोताओं को कुछ साधारण से शब्दों में बताइए कि 65B सर्टिफिकेट होता क्या है और क्यों जरूरी है।
1: 65B सर्टिफिकेट, अगर हम देखें कि कई बार डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में कंप्यूटर के थ्रू ही आते हैं,
0: अच्छा,
1: या उस पे कुछ सील लगी हुई है या सील हमें लगानी है, वो डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में हमारे पास नहीं आते हैं।
0: ओके।
1: वो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट हैं, मतलब वो सही हैं। उसके लिए जो अप्रूवल है वो हमें एक सर्टिफाइंग ऑथोरिटी देती है। जो सर्टिफाइंग ऑथोरिटी होती है वो ये कहती है कि ये जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेट है, मतलब लीगल है। तो वो जो ऑथेंटिकेशन होता है उसी को 65B सर्टिफिकेट कहा जाता है।
0: ओके।
1: इतना ज्यादा, जैसे आप देखेंगे पहले फैक्स था, पहले फैक्स बहुत ज्यादा चलता था, तो फैक्स से हम जी डॉक्यूमेंट्स यहां से वहां पहुंच जाते थे और सिग्नेचर किया और आपने पहुंचा दिए डॉक्यूमेंट्स वहां पे। उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है डिजिटल डॉक्यूमेंट। डिजिटल डॉक्यूमेंट को लीगल करने के लिए 65B सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसको ऑथेंटिकेट बताने के लिए कि ये सही है।
0: ये तो विशु जी मुझे ये बताइए, 65B सर्टिफिकेट इशू कौन करता है, कौन अथॉरिटी कौन है?
1: ये सर्टिफाइंग ऑथोरिटी होती है सर। सर्टिफाइंग ऑथोरिटी, उसके पास ये ऑथोरिटी होती है कि वो ये 65B सर्टिफिकेट्स ले। राइट्स मिलते हैं उन्हें, और जैसे ही उनको अप्रूवल मिलता है गवर्नमेंट से, फिर वो ये सर्टिफिकेट्स देने के लिए ऑथराइज्ड हो जाते हैं।
0: ओके। कुछ एग्जांपल देंगे आप मेरे को? मैं क्योंकि हमारे जमाने तो आप सही कह रही है फैक्स चला करता था, लेकिन 65B सर्टिफिकेट की जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो कौन है? कोई प्राइवेट संस्था है या कोई सरकारी संस्था है?
1: हाँ, वो नहीं, कोई भी ले सकता है, थर्ड पार्टी होती है सर ये
0: जी। अच्छा।
1: जैसे कुछ एडवोकेट्स भी होते हैं जो अथॉरिटी ले लेते हैं, राइट्स ले लेते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। ज्यादातर 65B सर्टिफिकेट और ISO सर्टिफिकेट IT टीम जो होती हैं, जिनके IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो होते हैं, वो लोग देते हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी जानकारी भी होती है। तो एक प्रॉपर टीम होती है जिसमें IT बैकग्राउंड के लोग होते हैं और एडवोकेट्स होते हैं, वो मिलकर के एक टीम बनाते हैं और वो लोग फिर 65B और ISO सर्टिफिकेट अप्रूव करवाते हैं।
0: ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है, आपने 65B के बारे में नई बात बताई। अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं विशु जी, हम इस लीगल उससे बाहर निकल के, आप जम्बूरी एजुकेशन में IELTS और TOEFL फैकल्टी भी रही है, लॉ से एजुकेशन तक ये ट्रांजिशन कैसे हुआ?
1: सर सडनली ही हुआ, बिल्कुल प्लान नहीं था ये। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। वैसे मैं वॉक इन फैकल्टी हूँ, तो कभी किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में अगर जरूरत होती है तो एक दो सेशंस मेरे होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सर, तो मैंने ये ग्रैब करी। मतलब कोई प्लान नहीं था, एक अपॉर्चुनिटी आई और मुझे मिल गई।
0: तो IELTS में तो क्या शायद अंग्रेजी पढ़ानी होती है, क्या करना पड़ता है?
1: जी सर, IELTS और TOEFL दोनों ही एग्जाम्स हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं सर ये। अच्छा। जिनको भी बाहर इंटरनेशनली किसी कंट्री में जाना है एजुकेशन के लिए या फिर माइग्रेशन के लिए, वहां रहने के लिए, तो उनको वीजा लेने के लिए ये दोनों एग्जाम्स देने होते हैं। दोनों में से एक आप कोई सा भी दे सकते हैं। अच्छा। तो बेसिकली ये आपके स्किल्स चेक करते हैं, रीडिंग से रिलेटेड स्किल्स होते हैं, लिसनिंग से रिलेटेड स्किल्स होते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग। आप इन चारों स्किल्स में कौन से लेवल पर हैं और उस लेवल के हिसाब से क्या आप उस कंट्री में पढ़ने के या जॉब करने के लायक हैं, उसके हिसाब से वो आपको स्कोर्स देते हैं और फिर वीजा आपको मिलता है।
0: वेरी गुड। तो विशु जी, आपने कई स्टूडेंट्स को टॉप स्कोर्स दिलाए हैं, टीचिंग ने आपके कम्युनिकेशन या कोर्ट रूम स्किल्स में कोई मदद की है?
1: बहुत
0: कोर्ट रूम में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर पाती है इसके
1: बहुत
0: बारे
1: बहुत
0: में।
1: सर, सबसे
0: अच्छा
1: ज्यादा तो स्टेज फ्राइट मेरी बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि जैसे ही हमें ये फील होता है ना कि कुछ आंखें हमें देख रही हैं, वहीं जबान लड़खड़ा जाती है. तो ये चीज मेरी क्लासरूम में खत्म हो गई, क्योंकि मेरी क्लास में 35 से 40 स्टूडेंट्स होते थे, और
0: अच्छा
1: हर एज ग्रुप के होते थे, मतलब स्कूल, कॉलेज गोइंग, कुछ होम वर्किंग, मतलब जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे कभी,

0: पड़ती है लोअर कोर्स में, या थोड़ा बहुत अंग्रेजी बीच में चल जाती है वहाँ?
1: नहीं सर, लोअर कोर्ट्स में हिंदी ही चलती है अभी हमारे यहाँ, और हाई कोर्ट में इंग्लिश कंपलसरी है, तो इंग्लिश में बोलना जरूरी होता है वहाँ पे।
0: अच्छा, हाई कोर्ट में जितने ये सीनियर एडवोकेट्स हैं सब इंग्लिश के अंदर ही दलीलें देते हैं या प्लीट करते हैं? अच्छा, इज इट सो? अच्छा,
1: जी
0: चलिए, तो इस भाषा की बात पे हम रुक जाते हैं और एक गाना सुन लेते हैं।

0: जी आपने कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी काम किया है, बॉश, जेटपैक, जियो फोर, कस्टमर जैसी कंपनियों में, उस अनुभव ने आपको आज की प्रोफेशनल लाइफ में कैसे मदद की है?
1: बहुत सारी चीजें हैं सर, जैसे मेंटेन द डेकोरम। सबसे पहले आप जहाँ हैं वहां का डेकोरम मेंटेन करना। मैंने वहां पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फिर एक अलग ही तरह की

0: ऑडियंस से टैकल किया है, तो हर तरह के इंसान से अपने आप को बात करने के लिए मोल्ड कर लेना, अपने आप को अपडेटेड रखना कि अब आगे क्या है, आगे कैसे करना है या अगला स्टेप क्या होगा। दूसरा सर, डेटा सेविंग। हमने
1: अच्छा
0: हमने बीपीओ सेक्टर में और अपने ट्रेनिंग जॉब में इतना रिपोर्ट्स बनाई हैं, डेली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, तो वो सर एक डेटा सेविंग की आदत मुझे बहुत लग गई है। हर चीज मैं लिख लेती हूँ अभी भी फोन में या और कहीं, रिकॉर्ड नहीं करती, बट मेरे पास एक नोटपैड रहता है, मैं उसमें हर चीज नोट डाउन करती हूँ।
1: वाह, ये बात जोरदार बताई आपने कि आप हर चीज का रिकॉर्ड रखती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इमेज फॉर्म में हो, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आपको कब किस चीज की कब जरूरत पड़ जाएगी ये बिल्कुल पता नहीं होता। और ये इवन फ्रॉड्स में एक आम आदमी के लिए भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किस वक्त कहाँ था, ये सब भी उसको पता होना चाहिए। बहुत सही बात। अच्छा विशु जी, ये साइबर फ्रॉड्स भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, रेडियो के जरिए आप हमारे लिस्टनर्स को क्या 3 क्विक टिप्स देना चाहेंगी ताकि वे डिजिटल फ्रॉड से बच सकें, ऐसा कुछ बता सकती हैं आप?
0: जी सर, सबसे पहला स्टेप जो चीज है, सबसे पहला टिप जो है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप अपनी प्रेजेंस वर्चुअली कम कर दें जितना, क्योंकि आप एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। आज जितनी फोटोज खींचते हैं, अपलोड करते हैं, हो सकता है आपने फोन से डिलीट कर दी हो, बट वो डिजिटल वर्ल्ड में चली जाती है और वो इजीली रिट्रीवेबल है, चाहे आपके पास कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपके पास कोई सा भी फोन हो। दूसरा है कि हर फोटो या हर लिंक या हर मैसेज को ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत क्लोज किसी ने भी आपसे हेल्प मांगी है, तो अब आप ना शर्माएं उनसे डबल चेक करने में कि आपने क्या वाकई में मुझसे ये हेल्प मांगी है। फोन कर लें या पॉसिबल हो तो मिल लें, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि वीडियो कॉल को भी मॉर्फ करके पैसे एक्सटॉर्ट किए गए हैं। जैसे किसी ने अपने फादर को वीडियो कॉल किया कि पापा मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। अब उनको अपना बेटा फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है और वो कह रहा है उसे 30,000 रुपए की जरूरत है। उन्होंने तुरंत उसके फोन पर 30,000 रुपए ट्रांजैक्ट कर दिए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं पूछूं तो सही कि हुआ क्या है, क्या पता उसे कुछ और हेल्प की भी जरूरत हो, तो उन्होंने कॉल की। जब उन्होंने कॉल किया तब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने उनको कॉल ही नहीं किया था, बल्कि वो एक साइबर फ्रॉड था और उसके फेस को मॉर्फ करके वो वीडियो कॉल बनाया गया था और उनसे 30,000 रुपए इस तरीके से एक्सट्रॉट किए गए। तो हर चीज जो दिख रही है वो सोना नहीं है, तो आप डबल चेक करें।
1: बहुत बहुत। और कोई खास बात बताइए, बताना चाह रही है तो बताइए।
0: हाँ, दूसरा सर साइबर फ्रॉड में यही है कि अपनी डेटा, अपनी जो बहुत ज्यादा प्राइवेट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, वो अपने फोन्स में भी सेव मत रखिए। या फिर फोन में आप सेव रख रहे हैं तो आप एक, जैसे मैं एक नोटपैड बना के रखती हूँ, वैसे आप एक नोटपैड भी बना के रखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बहुत इजीली रिट्रीवेबल है, कोई भी आपके फोन को हैक कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आजकल फोन नंबर्स भी याद नहीं रखते हैं, क्योंकि पहले तो सबके फोन नंबर्स याद रहते थे, अब नहीं रखते हैं।
1: सही
0: तो ये सब चीजें अपने फोन में आप कोई भी फोल्डर बना के सेव मत रखिए।
1: बात है, पासवर्ड भी सारे हमारे मोबाइल में ही होते हैं, हमें याद भी नहीं रहते हैं, वो भी सब
0: जी
1: गड़बड़ रहती है। डेटा प्रिवेसी या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते समय लोग किन चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, ये बताइए।
0: सर, जैसा मैंने मेंशन किया कि जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी देती है। जो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है उनके सील और सिग्नेचर होते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, वो देख लें कि क्या ये लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके बाद में ही उस पर अपने सिग्नेचर रखें और सोर्स एक बार पता कर लें कि ये कहाँ से आया है, उसके बाद में ही अपने सिग्नेचर उस पर प्लेस करें।
1: वेरी गुड। अच्छा, अब जो युवा वकील या लॉ स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो इस एरिया में, इस फील्ड में नए कदम रख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आपके तो काफी एक्सपीरियंस हो गया, आप 2015 से प्रैक्टिस कर रही हैं।
0: सर, मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगी, दिस इज नॉट अ फन जॉब, दिस इज अ सीरियस एंड वेरी स्ट्रिक्ट जॉब, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहन के खुशी मिलती है और वो 2 पल की होती है, बाद में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इट्स अ मार्केट. आप जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे और जितनी आपकी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि जैसे मैंने कुछ पहले भी कहा कि आपकी एकेडमिक्स नॉलेज कितनी स्ट्रांग है और आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उन पर डिपेंड करता है. तो ये 3 चीजें हैं सर, एकेडमिक नॉलेज, आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी मार्केटिंग. आप कितना लोगों से मिलते हैं.
1: मेरे ख्याल में जो लास्ट पॉइंट आपने बोला है आजकल वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है. हालांकि हाँ, लंबा डिस्कशन है, लंबा डिस्कशन है. विशु जी, अब करीब करीब हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं. आपने कॉर्पोरेट से लेकर कोर्ट रूम तक का बहुत लंबा सफर तय किया. इस जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको क्या नजर आता है.
0: सर, टर्निंग पॉइंट का सर मैं अभी ऑनेस्टली वेट कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीजें सडन हुई हैं. एफर्ट्स मैं किसी और डायरेक्शन में डाल रही थी लेकिन कुछ और हो गया. तो अभी तो मैं यही कहूंगी कि ये सब शायद ऊपर वाले की इच्छा थी. टर्निंग पॉइंट का मैं वेट कर रही हूँ सर, जैसे ही वो आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी.
1: बिल्कुल बिल्कुल, बता दीजिएगा. मैं आप अभी तो जो कुछ चल रहा है डेस्टाइंड है, डेस्टिनी है, वैसा चलता है. अच्छा, लॉ प्रैक्टिस के अलावा कौन सी चीजें आपको रिलैक्स करती हैं. विशु को क्या शौक है, कोई किताबें, म्यूजिक या और कोई चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती हो.
0: हाँ सर, मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है. मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, अलग अलग डिशेस ट्राई करना पसंद है मुझे. डांसिंग पसंद है, म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है. स्पेशली हॉलीवुड म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ, या फिर कुछ गजलें हैं और कुछ पुराना 80s 90s का म्यूजिक है बॉलीवुड का, वो अच्छा लगता है. और पढ़ने में मुझे फिक्शन पसंद है, तो फिक्शन स्टोरीज, थ्रिलर स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है.
1: अरे वाह वाह वाह, कोई चलिए अब हम ऐसे ही बात करते हैं. आपको कोई गजल कोई खास ऐसी पसंद हो तो कोई बताइए, कौन सी आपको खास पसंद है.
0: सर आपने पूछा और मैं भूल गई.
1: नहीं भाई, तलत महमूद पसंद है, जगजीत सिंह पसंद है, अनूप जरोटा साहब पसंद है, और कौन पसंद है आपको. जगजीत सिंह की कोई गजल पसंद
0: है. पर्टिकुलर सिंगर्स नहीं, बट जैसे ही वो मुझे लिरिक्स और उनका वो म्यूजिक वो अच्छे लगते हैं तो बस वो मैं सेव कर लेती हूँ.
1: अच्छा, तो अच्छा.
0: हाँ, एक फीमेल सिंगर है जो कुछ दिन पहले मैं मम्मी को भी सुना रही थी, बट अब वो एकदम से उसके वर्ड्स निकल गए मेरे दिमाग से. मैं आपको शेयर
1: करूंगी. मम्मी को फरीदा खानम तो नहीं सुना रही थी आप.
0: हो सकता है सर,
1: आज जाने की जिद. चलिए कोई बात नहीं. अच्छा, कोई किताब बता दीजिए, आपको कौन सी किताब पसंद है.
0: हाँ,
1: एक नॉवेल्स आप फिक्शन बहुत पढ़ती हैं.
0: हाँ, एक तो सर चेजिंग टुमारो सिडनी शेल्डन की है वो एक. हाँ, एक वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो जो उसमें कैरेक्टर्स हैं दोनों मेल और फीमेल, वो दोनों ही कौन होते हैं. तो अच्छा. जी, वो मतलब वो ठगते हैं, ठगी करते हैं वो लोगों को, और वो किस तरीके से एक ज्वेलरी का हीस्ट पुल अप करते हैं, वो बहुत ही पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है वो. और
1: good.
0: जी. बाकी मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ सर, इंग्लिश लिटरेचर रहा है मेरे पास में 11th 12th और ग्रेजुएशन में भी, तो लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है.
1: अरे भाई, ये पहले बताया होता अपन इंग्लिश लिटरेचर में भी बात करते. क्योंकि सिडनी शेल्डन मैंने भी काफी पढ़ा है, और ये जो आप कॉर्नवाली तो उनकी बहुत सारी हैं. जेम्स हैडले चेज भी एक ऐसी लिखा करता था, और सिडनी शेल्डन तो ऐसी बहुत सारी है सिडनी शेल्डन की. मैं भी पहले बहुत पढ़ा करता था किसी जमाने में, जब से मोबाइल और टीवी आ गए हैं सब बंद हो गया.
0: जी, ये सब बंद हो गया.
1: जिससे जेम्स हैडले चेज मैंने बहुत पढ़ी है, सारी सीरीज पढ़ रखी है. चलिए खैर, अगर इसके लिए तो फिर किसी कभी प्रोग्राम करना पड़ेगा किताबों
0: जरूर.
1: चलिए, तो अंत में अगर आपको एक लाइन में अपनी पहचान बतानी हो तो आप क्या कहेंगी कि विशु ये है.
0: सर, मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन हूँ. अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपको सुनता हो तो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ. अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी भी मैटर में जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनमें मैं आपको सोल्यूशन दे सकती हूँ. और दोस्त तो मैं कैसी हूँ मुझे नहीं पता, बाकी मैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन सकती हूँ.
1: चलिए, बहुत मजा आ गया आपकी ये आखिरी बात सुन के, वन स्टॉप सॉल्यूशन. लोग बाग तो प्रॉब्लम गिवर होते हैं और आप सॉल्यूशन है, इससे आप समाधान है, समस्या नहीं है, अगर इसको इस तरह से कहें तो. ये तो बहुत ही बढ़िया बात है. चलिए, हम हमारे श्रोताओं से कहेंगे भाई आपको कोई दिक्कत हो तो आप विशु माथुर से बिल्कुल संपर्क कीजिए. और ये क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बहुत सारी चीजों सही है, आप साइबर ये वो लीगल कॉरपोरेट सब, और अंग्रेजी बोलना और वो भी सिखा देती हैं आप, सब चीजें सिखा देती हैं. वेरी गुड, बहुत मजा आया. तो विशु जी बस हम आखिरी पायदान पे हैं. तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत एडवोकेट विशु माथुर के साथ, एक ऐसी वकील जो कानून की समझ को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखती बल्कि उसे लोगों की जिंदगी से जोड़ती है, उन्हें डिजिटली और लीगली एम्पावर्ड बनाती है. उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि चाहे कॉरपोरेट ऑफिस हो या कोर्ट रूम, प्रोफेशनलिज्म, एम्पैथी और निरंतर सीखने की चाही हमें आगे बढ़ाती है. धन्यवाद विशु जी आज हमारे श्रोताओं से जुड़ने और इतने सरल शब्दों में इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझाने के लिए.
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए.
1: और दोस्तों, अगर आपको आज की बातचीत पसंद आई हो तो जरूर शेयर कीजिए, जागरूक रहिए और साइबर स्पेस में सावधान रहिए. मैं हूं आलोक कुमार, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे जल्दी एक और प्रेरक बातचीत के साथ. तब तक कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग एंड कीप लिसनिंग टू दिस रेडियो. थैंक यू.
2: जिंदगी के रंग हजार.
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही. कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर. सुनना ना भूलिएगा.
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई.
4: आप सुन रहे हैं रेडियो टंक्याबेल 90.8 FM छाबों की आवाज, आरजे भावना के साथ. आज हम सुनेंगे गुरु नानक देव जी की जीवन गाथा. तो चलिए सुनते हैं रेडियो टंक्याबेल 90.8 FM आरजे भावना के साथ.
5: पाकिस्तान के जिला शेखुपुरा के गांव राय भोए की तलवंडी में एक अत्यंत सुंदर मनमोहक बालक का जन्म हुआ, जिसके चेहरे पर इतना रब्बी नूर था कि जो भी उसे देखता बस उसका श्रद्धालु ही बन जाता. हम बात कर रहे हैं सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की, जो सारे संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने तथा सत्य का मार्ग दिखाने के लिए धरती पर प्रकट हुए. इसके साथ ही पापियों और पाखंडियों को धर्म का रास्ता दिखाकर एक निरंकार से जोड़ने के लिए आप जी ने सारा जीवन अर्पण कर दिया. गुरु नानक देव जी ने अंधकारमय युग में व्यर्थ के वहमों भ्रमों को समाप्त करके लोगों को धर्म का सही रास्ता दिखाया. उन्होंने किरत करो, नाम जपो और वंड छको का उपदेश दिया तथा पंगत और संगत की परंपरा चलाई. आप जी का उपदेश केवल एक धर्म या जाति तक सीमित ना होकर बल्कि समस्त संसार के सभी धर्मों और जातियों की एकता को बनाए रखना था. श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी जी के घर में हुआ. पाकिस्तान का वह स्थान आजकल श्री ननकाना साहिब कहलाता है, जहां इस दिन को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है. आपके पिता खत्री जाति के बेदी थे. खेती बाड़ी के काम के साथ ही हाकिम राय बुलार के पास पटवारी का भी काम किया करते. गुरु नानक देव जी की एक बड़ी बहन बीबी नानकी थी, जो उम्र में आपसे 5 वर्ष बड़ी थी. वह अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती और देखभाल करती. कहते हैं आप जी के जन्म के समय पिता मेहता कालू जी ने पंडित हरदयाल को अपने बालक की जन्म पत्रिका बनवाने के लिए बुलाया। घर आकर पंडित ने दौलता दाई से बालक के जन्म का समय पूछा और बालक ने पहला शब्द क्या कहा था। दौलता दाई ने हैरानी से पंडित को बताया कि मेरे हाथों अनेक बालक जन्मे हैं, परंतु यह बालक अलौकिक है। इस बालक ने जन्म के समय ऐसे भाव प्रकट किए मानो कोई बुद्धिमान पुरुष पहली मुलाकात में हंसकर मिलता हो। मुझे इस बालक के जन्म पर हैरानी हो रही है। दाई से सारा विवरण लेकर पंडित ने कालू जी से कहा कि तुम्हारा बालक शुभ घड़ी में पैदा हुआ है, भविष्य में इसके सिर पर छत्र झूलेगा। पंडित ने जब बालक को देखा तो तुरंत उनके चरण छू लिए। बालक के बारे में अद्भुत बातें सुनकर माता पिता के आनंद की कोई सीमा न रही। हिंदू रीति के अनुसार 13 दिन हो जाने पर पंडित ने बालक को चोला पहनाया और नाम रखा नानक निरंकारी। पिता मेहता जी ने ऐसा नाम सुनते ही हैरानी से पंडित से कहा कि यह नाम तो हिंदू और मुसलमान दोनों का मिला जुला रूप है, नाम तो कोई और होना चाहिए था। तब पंडित ने कहा कि आपका पुत्र एक दिव्य ज्योति का अवतार है, ऐसा अवतार इस धरती पर आज तक नहीं हुआ। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी आदि जितने भी अवतारी पुरुष धरती पर आए उनको केवल हिंदू धर्म के लोग ही पूछते थे, जबकि आपके पुत्र नानक निरंकारी को भविष्य में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजेंगे। इतने शब्द सुनते ही कालू जी की सारी शंका खत्म हो गई। बालक की जन्म पत्रिका बना लेने के बाद पंडित ने उसे पढ़ते हुए कहा, यह बालक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है जिसे मैं ईश्वर का अवतार कह सकता हूँ। यह संसार में सूर्य की भांति चमकेगा, सारा ब्रह्मांड इसकी स्तुति करेगा। यदि यह समुद्र में जाएगा तो समुद्र भी इस बालक के लिए रास्ता छोड़ देंगे। यह अद्वितीय होगा जिसके जैसा और कोई नहीं। यह केवल एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा व सिमरन का प्रचार करेगा, एक पूर्ण धर्मात्मा और ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता होगा, एक परमात्मा के अलावा किसी की पूजा नहीं करेगा। यह पूर्ण अवतार है, अर्थात सभी कलाओं में संपूर्ण। सभी देवी देवता, भूत प्रेत और पैगंबर ऋषि मुनि इसकी आज्ञा मानेंगे। यह जगत निर्माता खुद अवतार धारण करके संसार के कल्याण हेतु प्रकट हुआ है। अपने बालक की इतनी सारी बातें सुनते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। समय बीतता गया। आपका बचपन अनेकों चमत्कारों से भरा था। स्वभाव में आप बड़े ही विनम्र और दयालु थे, साथ ही बड़े मस्त मोला। जब आप 5 वर्ष के हुए तो आपने अपनी कलाएं दिखानी शुरू कर दी, जैसे कहते हैं कि होनहार बिरवान के होते चिकने पाथ। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी ने अपने घर से एक बहुमूल्य वस्तु उठाकर किसी गरीब अपाहिज को दे दी। यह बात जब कालू जी के कानों में पड़ी तो वह गुरु जी से बहुत क्रोधित हुए। उस पंडित को शिकायत करके बोले कि तुमने तो कहा था यह बालक छत्रपति होगा, परंतु यह तो अपना घर ही साफ करने में लगा है। तब पंडित जी ने कहा, जब इस बालक का सही समय आएगा तब आपने हम जैसे लोगों से बात भी नहीं करनी। कहते हैं गुरु नानक देव जी बचपन में सदा बड़े बच्चों के साथ ही खेला करते। आपका उनके साथ खेलना भी अद्भुत था। सभी बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठाकर बीच में चौंकड़ा मारकर बैठ जाते और ईश्वर की बातें किया करते। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 5 वर्ष का बालक ना समझ होता है, उसको तो अपनी भी समझ नहीं होती, जबकि आप जी अपने से बड़े बच्चों को ईश्वरीय बातें सुनाते। आपने तो किसी से ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया, ना ही कोई गुरु धारण किया, फिर भी इतना ज्ञानी होना आपको अवतारी और अद्भुत बनाता है। गुरु जी की साखी में दर्ज है कि 7 वर्ष के होने पर आपको पंडित गोपालदास के पास विद्या हासिल करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। आपका मन सांसारिक पढ़ाई में नहीं लगता था, आप केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ना चाहते थे। पंडित ने गुरुजी को पट्टी पर पंजाबी भाषा का पहला अक्षर ऊड़ा लिखने को कहा तो गुरुजी ने पंडित से कहा कि इस संसारिक विद्या को छोड़कर ईश्वरीय विद्या पढ़ाएं। इस पर पंडित हैरान होकर कहने

लगा कि हमें तो सांसारिक पढ़ाई ही आती है, आप बताएं कि ईश्वरी विद्या से हमें क्या लाभ होगा। गुरुजी ने बताया कि सांसारिक विद्या केवल बंधन पैदा करती है, जबकि ईश्वरीय विद्या सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। इसे पढ़ने से लोक परलोक दोनों ही समर जाते हैं। अंत में जीवात्मा जब संसार त्याग कर परलोक जाएगी, यही विद्या उसके काम आएगी। गुरु जी ने तब पंडित को उड़ा का सही अर्थ समझाने के लिए एक श्लोक का उच्चारण किया। उड़े उपमा तांकी की जय, जाका अंत ना पाया, सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया। अर्थात उड़ा का अर्थ ओंकार यानी ईश्वर है। ईश्वर की पैदा की हुई सृष्टि का अंत नहीं देखा जा सकता। उड़ा कहता है कि एक निरंकार के सच्चे मन से भक्ति करने वाले सदा ही प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने पंडित को गुरुमुखी के सभी अक्षरों का ईश्वरीय अर्थ समझाया, जिसे सुनकर पंडित बहुत प्रभावित हुआ और गुरु नानक देव जी को सम्मान सहित गुरुकुल से घर छोड़ने आया और कालू जी से कहा कि तुम्हारा पुत्र तो इतना विद्वान है जिसके प्रश्नों के उत्तर हमारे पास भी नहीं है। इस कलयुग में चारों वेदों की विद्या अलोप हो रही है। आपका पुत्र इस अलोप हो रही विद्या को प्रकट करने और लोगों को भक्ति के साथ जोड़ने के लिए धरती पर आया है। कहते हैं 9 वर्ष की आयु होने पर हिंदू रीति के अनुसार आपको जनेऊ धारण करना अनिवार्य था। पंडित ने जैसे ही जनेऊ धारण करने की रस्म शुरू की तो गुरु जी ने पंडित को भरी सभा में रोकते हुए प्रश्न किया कि यह जनेऊ पहनना क्यों जरूरी है, इसे पहनने की विशेषता बताएं तथा इसको धारण करने से जीव को कौन सी उपाधि प्राप्त होती है। पंडित ने कहा, जनेऊ धारण ना करने से जीव अपवित्र रहता है। इस पर गुरु जी ने स्पष्ट किया कि जब तक अंतर आत्मा ही पवित्र ना हो तो बाहर के किए गए दिखावे से उस मनुष्य का क्या सुधार होगा। छोटे से बालक के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वहां बैठे सभी लोग और पंडित अचंभित हो गए। पंडित ने गुरु जी से पूछा कि अब आप ही बताएं कि कौन सा जनेऊ पहनना उचित होगा जिससे जीव का धर्म बना रहे। गुरु जी बोले, दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट, एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत, ना ए टूटे ना मल लगे, ना ए जले ना जाए, तनसु मानस नान का जोगल चले पाए। अर्थात दया की कपास हो उससे संतोष रूपी धागा बनाए और सत्य का उस पर वट लगाकर गांठ लगाएं। ऐसा जनेऊ जिसमें दया संतोष और सत्य हो वही गले में धारण करें। इसलिए पंडित जी, जो आप जनेऊ मुझे धारण करवाना चाहते हैं वह तो मेरे किसी काम का नहीं। आपका जनेऊ आग में जल जाएगा, मैला हो जाएगा, टूट जाएगा, परंतु दया संतोष और सत्य द्वारा बनाया गया जनेऊ ना कभी जलता है, ना टूटता है, ना मैला होता है। अगर ऐसा जनेऊ आपके पास है तो वह पहनाओ, वरना मैं पहनने को तैयार नहीं। गुरु जी के जीवन में कई चमत्कार हुए हैं। हम कुछ कुछ घटनाओं को आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है, एक बार गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने कहा कि तुम सारा दिन मस्ती में बैठे रहते हो, इससे अच्छा है कि कोई व्यापार करो। गुरु जी को 20 रुपए देकर कहा, जाओ और सत्य का व्यापार करके आना जिसमें लाभ हो। तथा गुरु जी ने कहा, पिताजी अब आप देखेंगे मेरा व्यापार कैसा उत्तम है। आप जी भाई बालाजी के साथ ईश्वर का गुणगान करते चले जा रहे थे। कुछ कोस दूर जाकर आपने साधुओं की मंडली देखी, जिन्हें देखते ही आप जी ने भाई बालाजी से कहा, मुझे तो यहाँ खरा सौदा नजर आ रहा है, पिताजी की आज्ञा भी अच्छे व्यापार करने की है, फिर तो इससे उत्तम और खरा व्यापार नहीं है। भाई बालाजी गुरु जी से बोले, कालू जी का स्वभाव तो आपको पता ही है,
और मैं तो आपका दास हूँ, इसलिए आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। गुरुजी ने उन 20 रुपयों से 7 दिन के भूखे साधुओं को भोजन कराया और घर लौट आए। जब आपके पिताजी को सारी खबर पता चली तो उन्होंने आपजी को बहुत गुस्सा किया। तब किसी तरह बीबी नानकी जी ने अपने भाई को बचाया। राय बुलार के कानों में जब यह खबर पड़ी कि आज गुरु नानक देव जी से कालू जी बहुत नाराज हैं, तो उन्होंने कालू जी को समझाते हुए कहा, इस बालक को साधारण बालक मत समझो, इस पर गुस्सा मत किया करो। इतना कहते ही राय बुलार की आंखें नम हो गई। वास्तव में कालू जी अपने पुत्र को साधारण बालक समझते थे। गुरु जी के परमेश्वर रूप का उनके माता पिता को जरा सा भी आभास नहीं था, जिसके कारण पिता पुत्र से अक्सर परेशान रहते। असल में गुरु जी के पिता उनको एक सफल व्यापारी बनाना चाहते थे, परंतु गुरु जी सदा ईश्वर ध्यान में लीन रहते। बहुत से कामों में आपको व्यस्त रखने की बड़ी कोशिशें की गई। आपकी साखी में दर्ज है कि पिताजी ने आपको एक दिन अपने गाय भैंसे चराने के लिए भेज दिया। आप जिन्हें उन जानवरों को जंगल में छोड़ दिया और खुद हमेशा की तरह ध्यान अवस्था में चले गए। तभी एक जाट के खेत में घुसकर आपके जानवरों ने उसकी सारी फसलें बर्बाद कर दी। अपने खेत की ऐसी बुरी हालत देखकर उस जाट ने गुरु जी से शिकायत करते हुए कहा कि तुम्हारे जानवरों ने तो मेरा सारा खेत ही नष्ट कर दिया, इसलिए इसका अब हर्जाना भरना पड़ेगा, और कुछ अपशब्द कहने लगा। तब गुरु जी बोले, अगर किसी भूखे जानवर ने कुछ खा भी लिया है तो गुस्सा मत करो, परमात्मा इसमें भी तुम्हारी उन्नति करेगा। परंतु जाट अपनी बात पर अड़ा रहा और गुरु जी को लेकर वे हाकिम राय बुलार के पास चला गया। तब राय बुलार ने उनके पिता कालू जी को कहा कि आप अपने पुत्र को समझाएं। उसी समय गुरु जी ने जाट से कहा, तुम्हारी खेती तो ज्यों की त्यों है, तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, नहीं यकीन तो खुद जाकर देखाओ। जब खेत में जाकर देखा गया तो फसलें बिल्कुल सही सलामत पाई। ऐसा दृश्य देखकर सभी चकित रह गए और जाट सभी के सामने झूठा साबित हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज है कि एक बार आप जी अपने जानवरों को जंगल में छोड़कर खुद एक वृक्ष के नीचे लेट गए, तब आपकी आंख लग गई। आप जी के मुख पर धूप पड़ने से पसीने की बूंदे चमकने लगी। तब एक चमत्कार हुआ। कुदरती रूप से हाकिम राय बुलार वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गुरु नानक देव जी के सिर पर शेषनाग ने खड़े होकर अपने फन फैलाकर उन पर छाया कर दी। यह सारा प्रसंग उसने कालू जी को सुनाया और हिदायत देते हुए कहा, कभी भी इस बालक पर क्रोध मत करना। आपका बालक एक महान शख्सियत का स्वामी है और एक दिव्य रूप है, तथा संसार के जीवों के माया रूपी बंधन तोड़ने के लिए ही तुम्हारे घर जन्म लिया है। सन 1475 ईस्वी में आप जी की बहन बीबी नानकी जी का विवाह सुल्तानपुर के निवासी जयराम जी से किया गया। कुछ समय बाद पिता कालू जी के बुलाने पर बीबी नानकी जी अपने पति जयराम जी के साथ जब अपने मायके आईं, तो राय बुलार ने जयराम जी से कहा कि तुम अपने साले यानी गुरु जी को अपने साथ सुल्तानपुर ले जाएं, क्योंकि कालू जी अपने पुत्र को हमेशा डांटते रहते हैं और यह उनसे देखा नहीं जाता। कहते हैं कुछ समय बाद कालू जी और माता जी ने अपने पुत्र को सुल्तानपुर भेज दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अपनी बहन के घर जाकर उनका बेटा किसी काम में व्यस्त हो जाए। गुरुजी बीबी नानकी जी के घर ही रहने लगे और जीजा जयराम जी ने जहाँ वे खुद नौकरी करते थे उसी मोदी खाने में गुरु नानक देव जी को नवाब दौलत खान के पास नौकरी दिलवा दी। वहाँ गुरुजी आय व्यय का हिसाब देखा करते और सौदा तोला करते। अगर कोई जरूरतमंद मांगने आता तो कभी उसे खाली हाथ ना भेजते। पिता कालू जी
यह जानकर संतुष्ट हो गए कि अब उनका पुत्र काम में व्यस्त हो गया है। मोदी खाने का मालिक नवाब दौलत खान अगर गुरुजी को 5 सेर अनाज तोलने के लिए कहता तो गुरुजी 5.25 सेर देकर भेजते। इस तरह आप जी जरूरतमंदों को अनाज देकर झोलियां भरते। भिखारी और गरीब लोग मोदी खाने के आसपास ही भीड़ लगाकर खड़े रहते। कहते हैं जिन पत्थरों से आप 13-13 कहकर अनाज तोलते थे, वह पावन पत्थर आज भी सुल्तानपुर के मोदी खाने में मौजूद हैं, जहां पर गुरुद्वारा श्री हट साहिब स्थित है। गुरुजी 13-13 प्रभु को संबोधित करते हुए अनाज तोला करते थे। कहते हैं कुछ नीच आचरण के लोगों ने जयराम जी से चुगली करते हुए कहा, तुम्हारा साला सारा मोदी खाना गरीबों में लुटा रहा है, जो कल को तुम्हारी बेइज्जती का कारण भी बन सकता है। तब जयराम जी ने परेशान होकर सारी बात अपनी पत्नी बीबी नानकी जी को बताई तो वे मुस्कुराते हुए अपने पति को कहने लगी कि जैसे उस परमात्मा का ज्ञान सबसे पहले इंद्र देवता को हुआ था और फिर सारे संसार में ईश्वरीय ज्ञान फैला, ठीक उसी तरह श्री गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सबसे पहले मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए हे स्वामी, आप व्यर्थ की चिंता ना करें और आप मेरे भाई को साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करें। वे तो साक्षात ब्रह्म ज्योति हैं, जो संसार के कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं, जिनकी लक्ष्मी दासी है, यह मैं सत्य कहती हूँ। इतना कहकर वे चुप हो गई। बीबी नानकी जी ने अपने भाई श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर पर बुलाया। जब उन्होंने सुना कि उनके भाई आ रहे हैं तो वे उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़ी हो गई। अपने भाई श्री गुरु नानक देव जी को बड़े सम्मान से आसन पर बिठाया। तब गुरुजी ने पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो वे बोली आपके दर्शन करना चाहती थी। इस पर उन्होंने कहा, मुझे पता है आप मुझसे मोदी खाने के आय व्यय पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी ने मेरी शिकायत नवाब से की है और नवाब के साथ मेरा हिसाब किताब हो चुका है, बल्कि नवाब ने मुझे 137 रुपए देने हैं। गुरुजी कहने लगे कि अब वे मोदी खाने का काम छोड़ रहे हैं और आपसे भी बहन हम जुदा हो रहे हैं, यह हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। इतना सुनते ही बीबी नानकी जी रोने लगी और जयराम जी ने तब कहा कि मैं भ्रम में था, परंतु आज मैंने आपके सत्य रूप को जान लिया है, इसलिए आप हमें क्षमा करें। भाई बालाजी ने गुरुजी के आगे विनती की कि वे उनसे नाराज ना हों और कहीं ना जाएं। कहते हैं तब गुरुजी ने भाई बालाजी की बात स्वीकार कर ली और वे वहीं रुक गए। इतिहास में दर्ज है कि जादो राव नाम का व्यक्ति मोदी खाने में ही काम करता था। वह गुरुजी से बिना कारण वैर रखता था। वह मनीमन सोचा करता गुरुजी रिश्वत के रूप में 1 पैसा भी उसे नहीं देते, बल्कि दूसरी तरफ गरीबों व मांगने वालों को दान देते रहते थे। इस कारण उसने नवाब दौलत खान से चुगली करते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाना गरीबों में लुटा रहे हैं। मालिक के कहे अनुसार जादोराव ने गुरु जी के हिसाब का 5 दिन तक निरीक्षण किया, किंतु हिसाब में कोई गड़बड़ ना निकली, बल्कि मोदी खाने के मालिक को गुरु जी को 321 रुपए देने बाकी थे। जब जादोराव ने मालिक को बताया कि गुरु जी के हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसने गुरु जी को सम्मान सहित 321 रुपए के साथ 300 रुपए और दिए। इस बात की खबर जब बीबी नानकी जी के कानों में पड़ी तो वे अपने भाई के प्रशंसा सुनकर अत्यंत खुश हुई। कहते हैं गुरु जी की आयु 16 वर्ष होने पर पटवारी मूले की पुत्री सुलखनी देवी जी के साथ बटाला में गुरु जी का विवाह हो गया। कुछ समय बाद आपके घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया, बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास जी। विवाह के बाद आप जी कई वर्ष सुल्तानपुर में ही रहे। कहते हैं गुरुजी सारा दिन मोदी खाने का कामकाज देखते और रात्रि के आखिरी पहर होते ही काली बेई नदी में स्नान करके
बेरी के पेड़ के नीचे ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते। यही दिनचर्या थी आपकी। आजकल सुल्तानपुर का वही स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब कहलाता है। बड़ी महानता है उस गुरु घर की, जहां जाकर माथा टेक कर संगत को अपने सतगुरु की अनुभूति होती है। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने रोज की तरह काली बेई नदी में स्नान करने के लिए एक दिन डुबकी लगाई तो देखते ही देखते वे अलोप हो गए। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जब आप बाहर ना निकले तो सभी ने यह मान लिया कि गुरुजी नदी में डूब गए हैं। परंतु आपकी बहन का विश्वास अटल था। वह जानती थी कि उसका भाई सुरक्षित है। तब वहां एक चमत्कार हुआ। गुरुजी नदी से तीसरे दिन बाहर निकल आए और मूल मंत्र का उच्चारण करने लगे। सुल्तानपुर वासी आप जी को सही सलामत देकर हैरान हो गए कि कोई साधारण मनुष्य तो जल में तीन दिन रहकर जीवित नहीं बाहर आ सकता। इतिहास में उल्लेख किया गया है कि आप जी ने जपजी साहिब की रचना सुल्तानपुर के बेरी के पेड़ के नीचे ही बैठकर की थी। इस घटना के बाद गुरु जी को गृहस्थ के प्रति परम वैराग्य हो गया था। गुरु जी ने बीबी नानकी जी को कहा, बहन अब हम जा रहे हैं। तब वे बोली, अब मैं आपके दर्शन कैसे करूंगी? तो गुरु जी ने कहा, जिस समय तुम हमें याद करोगे हम उसी क्षण हाजिर हो जाएंगे। अपने माता पिता जी को आप जी ने बताया कि निरंकार ने उन्हें धरती पर सारे मनुष्यों को एक परमात्मा से जोड़ने के लिए और सभी धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए ही भेजा है। इसलिए देश विदेश जाकर सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए और ईश्वर का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन सभी को मेरी बहुत जरूरत है। तब आप जी ने अपने माता पिता जी की आज्ञा लेकर भाई मर्दाना जी को अपने साथ लिया और संतों वाला वेश धारण करके चल पड़े यात्राएं करने। सबसे पहली आपकी उदासी यानी यात्रा भाई लालो जी के घर से आरंभ हुई थी। जैसे कहते हैं कि युगों युगों से प्रभु अपने भक्तों के वश होते आए हैं। गुरु जी दिलों की जानने वाले थे। उन्हें पता था कि भाई लालो जिसके साथ पिछले युगों से रिश्ता है, जब उसने प्रेम से गुरु जी को याद किया तो गुरु जी उसी के घर भाई मर्दाना जी के साथ हाजिर हो गए। बड़े प्रेम और सम्मान के साथ भाई लालो ने आप जी का सत्कार किया। कहते हैं आप जी अपने भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर एक महीना उसके घर ठहरे थे। उसी समय के दौरान मलिक भागो जो उसी शहर में रहता था, उसने अपने घर ब्रह्म भोज का आयोजन किया। सभी हिंदू ब्राह्मणों को उसने निमंत्रण भेजा। जब उसे पता चला कि श्री गुरु नानक देव जी जो कि खत्री हैं और भाई लालो के घर ठहरे हुए हैं, इसलिए गुरु जी को भी उसने ब्रह्म भोज में बुलावा भेजा। परंतु गुरु जी ने मलिक भागो के सेवक को उस यज्ञ में जाने से मना कर दिया, क्योंकि वे मलिक भागो को नहीं जानते थे। सेवक ने आकर मलिक भागो को निंदात्मक रूप से कहा कि नानक निरंकारी तो खत्री का पुत्र होते हुए भी शूद्र लालो के घर भोजन करता है, परंतु आपके महान यज्ञ में आना उचित नहीं समझा उसने। मलिक भागो के आत्म सम्मान पर ठेस पहुंची और उसने तुरंत कुछ सेवकों को गुरु जी को जबरदस्ती ब्रह्म भोज में लाने के लिए भेज दिया। कहते हैं तब गुरु जी ने भाई लालो को अपने साथ लिया और महान लीला प्रकट करने के लिए चल पड़े। मलिक भागो ने गुरु जी के आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा, आप तो खत्री पुत्र हैं, फिर भी आप शूद्र लालो के घर भोजन कर सकते हैं, परंतु मेरे घर में बना ब्रह्म भोज स्वीकार नहीं, ऐसा क्यों? गुरु जी उसकी बात सुनते हुए बोले, भाई जिस काम के लिए बुलाया है तो फिर वही करो। तब उसने गुरु जी के आगे तरह तरह के ढेर पकवान परोस दिए। आप जी ने भाई लालो के हाथ से उसके घर की रोटी अपने एक हाथ में पकड़ी और दूसरी हाथ में मलिक भागो की पूरी कचौरी। दोनों हाथों को जोर से दबाया तो लालो वाली रोटी से दूध की धार बहने लगी, परंतु मलिक भागो की रोटी को दबाने से खून की धार बहने लगी।
ऐसा चमत्कार देखकर सारे पंडित और लोग हैरान हो गए। तब आपने भागों को कहा, तुमने गरीबों के खून का

0: ब्रह्म भोज आयोजित किया है और हमें भी वही भोजन कराना चाहते थे, जबकि इस गरीब लालों के घर हर रोज ब्रह्म भोज हो रहा है। ऐसे वचन सुनकर मलिक भागो की एक न चली, भरी सभा में वह शर्मसार हो गया। फिर अब भाई लालो के घर से चलकर देश विदेश की यात्राओं पर निकल पड़े। उस समय लोग भ्रमित होकर अंधविश्वासों और पाखंडों में फंसते जा रहे थे। लोगों की ऐसी बुरी हालत देखकर गुरुजी धर्म स्थानों तीर्थ स्थानों पर जाकर वहां के पंडितों मौलवियों काजियों को सच का संदेश देकर एक ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया करते। आप जी ने भारत अफगानिस्तान अरब के देशों में भ्रमण किया। हर स्थान पर जाकर आप संगत करते, हर कोई आपके वचनों से प्रभावित होता, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म जाति से संबंधित हो। आप जी ने आपस में वैर विरोध खत्म करने के लिए संगत और पंगत की परंपरा चलाई। लंगर की प्रथा आप जी के द्वारा शुरू की गई, जिसमें हर जाति के लोग अमीर हो या गरीब एक साथ बैठकर भोजन करते। चाहे कोई मौलवी हो, पंडित हो या साधु हो, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत होते। आप जी ने मानवता को संदेश दिया कि रथ करो, यानी जीवन जीने के लिए अपने हाथों से मेहनत करके धन कमाओ, नाम जपो यानी एक प्रभु का सिमरन करो, और वंड छको यानी सभी के साथ मिल बांट कर खाओ। कहते हैं आप जी ने कई वर्षों तक अपनी यात्राएं की और फिर आप अपने जीवन के 18 वर्ष पाकिस्तान करतारपुर में अपने परिवार के साथ बस गए, जहां आप खेती बाड़ी किया करते, हल चलाते और नाम जपते। आप जी ने 1539 ईस्वी में अपने प्रिय शिष्य भाई लहना जी को सिखों का दूसरा गुरु घोषित करके नाम दिया गुरु अंगद देव जी। आप जी ने अपने दोनों बेटों को गुरुगद्दी का वारिस ना बनाकर बल्कि भाई लहना जी को इस योग्य समझा। आप जी सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में ज्योति जोत समाए। वह स्थान गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब कहलाता है, जिसको श्री करतारपुर साहिब भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान में स्थित है। आप जी के शरीर त्यागने के बाद हिंदू मुसलमान संगतों ने आपकी देह से जब चादर हटाई तो आपका वहां कोई अवशेष ना पाकर वे दंग रह गए। दोनों धर्मों के लोग तब आपकी देह का अपने अपने धर्म अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू उन्हें अपना संत पुरुष मानते और मुसलमान उन्हें अपना पीर मानते थे। इसलिए कहते हैं तब दोनों गुटों ने गुरु जी की चादर आदि आदि बांट ली और अपनी अपनी रीति अनुसार आप जी का अंतिम संस्कार किया। गुरु जी के उपदेश सभी को बहुत प्रभावित करते। आप जी की बातें शिक्षाएं दोनों धर्मों के लोगों को अच्छी लगती, तभी सब लोग आपसे प्रभावित होते थे, क्योंकि आप जी की भक्ति का स्वरूप दोनों धर्मों को कबूल था। ऐसे थे श्री गुरु नानक देव जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दपला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे गुरु नानक देव जी की जीवन गाथा। ऐसे ही और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए सुनते रहिए रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM झाबुआ की आवाज आरजे भावना के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM झाबुआ की आवाज आरजे भावना के साथ। आज हम जिनकी बायोग्राफी जानेंगे उनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर या बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें उनके लाखों प्रशंसक स्नेह पूर्वक बाबा साहब नाम से बुलाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में अधिक से अधिक मुसीबतों का सामना किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में सामने आए। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और उनके पिता का नाम रामजी मालोजी संखपाल और माता का नाम भीमाबाई था। सुनते रहिए रेडियो टेंटाविल 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज आरजे भावना के साथ।
2: आधुनिक भारत के इतिहास को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया उनमें एक अहम नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का भी है। बाबा साहिब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश में दबे कुचले वर्गों को बराबरी दिलाने, देश में समता मूलक समाज की स्थापना करने और कानूनी तौर पर लोगों को सक्षम बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। अंबेडकर ने दलितों को एहसास दिलाया कि जिस जमीन पर वो रहते हैं उसमें उनका भी हक है, जिस आसमान के नीचे वो सोते हैं उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। यही अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा है।
3: उनके पिताजी फौज में थे तो फौज के जीवन में ऐसा कोई जातिभेद उनको झेलना नहीं पड़ता था, और फिर जब उनको एहसास हुआ, जो एक यात्रा के बारे में लिखते हैं, वो पिताजी ने उन लोगों को बुलाया था, तीन भाइयों को, जिन दिक्कतों को, तो मतलब एक प्रतिक्रिया ये हो सकती थी कि घृणा से मनुष्य का मन भर जाता, लेकिन उन्होंने घृणा के जड़ों तक जाने की कोशिश की। और जो जातिवाद है, जो धर्म के साथ धर्म और रूढ़ियां, ये भारतीय मानस को कितना जकड़ी हुई है, उसके बारे में उन्होंने गंभीरता से सोचा और एक नया रास्ता उन्होंने दिया हम लोगों को।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में जन्मे थे। वो इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे महू में रहने वाले रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और सबसे छोटी संतान थे। बचपन बेहद परेशानियों में गुजरा। सिर पर गरीबी और एक अछूत जाति महार में जन्मने का बोझ सिर पर उठाए अंबेडकर स्कूल पहुंचे। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और उन्होंने बड़े स्कूल में दाखिला पाया। अंबेडकर मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल एल्फिनस्टोन रोड के पहले दलित छात्र थे।
4: पाठशाला दूर थी, वहाँ वो हॉस्टल में रहते थे और घर जा रहे थे तो पैदल ही निकले थे। छोटे छोटे बच्चे थे, चौथी पांचवी में पढ़ने वाले, वो उनके भाई पैदल निकले थे। बीच में एक गाड़ी, बैलगाड़ी जा रही थी, तो बैलगाड़ी वाले को दया आई कि ये छोटे से बच्चे जो है इनको मैं गाड़ी में बिठा लेता हूँ। तो उसने गाड़ी में बिठा लिया और थोड़ी देर के बाद वो पूछने लगा कि तुम किस जाति के हो। तो जैसे ही भीमराव अम्बेडकर ने और उनके भाई ने बताया कि हम महार जाति के हैं, महार नाम सुनते ही वो गाड़ी वाला रोककर गाड़ी से उतर गया।
2: बाबा साहिब ने 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद वो बंबई विश्वविद्यालय पहुंचे और भारत के किसी भी कॉलेज में दाखिला पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिस पर अछूत होने का तमगा लगा हुआ था। इस दौरान उनकी जिंदगी में दुत्कार, जातीय अपमान और जिंदा रहने की जद्दोजहद के सिवा कुछ नहीं था। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उन्हें स्कूल में कभी दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा गया। दूसरे अछूत बच्चों की तरह क्लास में अलग बिठाया जाता। स्कूल में पानी पीना तो दूर, पानी का बर्तन छूने तक की इजाजत नहीं थी। ना कोई टीचर उन पर ध्यान देता और ना ही कोई उनकी मदद करता।
4: डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथ और उनके भाइयों के साथ अस्पृश्यता का, बहुत भेदभाव का बहुत उन्हें अनुभव हुआ। पाठशाला में वो सबसे पीछे उन्हें बैठना पड़ता था, सभी बच्चों से सबसे पीछे वाली रूम में बैठना पड़ता था, और टीचर जो पढ़ाते थे तो वो भी उन्हें स्पर्श नहीं करते थे।
2: उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के शासक सयाजीराव गायकवाड़ ने अमेरिका में पढ़ने के लिए 25 रुपए महीना का वजीफा दिया। 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की। 1916 में उन्होंने पीएचडी किया। इसके बाद 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से नवाजे गए। अब तक अंबेडकर काफी मशहूर हो चुके थे। 1926 में उन्हें बंबई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। अब अंबेडकर सिर्फ राजनीति तक सीमित होकर नहीं रहना चाहते थे।
5: बंबई विधान परिषद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संसदीय राजनीति की पाठशाला बनी। इसी के बाद वो समाज में गैर बराबरी के खिलाफ हुए संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अनूठा अभियान चलाया।
2: अंबेडकर समाज में बराबरी लाने के संघर्ष में शामिल हो गए। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए। इस दौरान उन्होंने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के बीच जाति व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर उदासीनता की कड़ी आलोचना की।
3: 1920 में जब वो लौट के आए थे तो शाहू महाराज थे महाराष्ट्र में, उन्होंने बाकायदा कहा था कि दलितों माणगांव सम्मेलन हुआ था 1920 का, कि दलितों तुम्हें अपना नेता मिल गया, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी दलितों के बीच पहली शख्सियत थे वो, तो एक अच्छा जीवन बिता सकते थे। और उन्होंने लगातार राजनीतिक सामाजिक तौर पर सक्रिय रहे वो, उन्होंने ये, और एक बड़ा उनके जीवन का जो पहला अहम संघर्ष जो हम लोग देख सकते हैं महार सत्याग्रह का, 1927 का जो महार सत्याग्रह है, पानी को लेकर के सत्याग्रह हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने उन दिनों नीति बनाई थी कि दलितों के लिए सार्वजनिक तालाब खोल दिए जाएं, और महाड़ में जो लोग थे उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया था, लेकिन फिर भी सवर्णों की तरफ से, जो ऊंची जाति के लोगों की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम यहाँ इस तालाब में जानवर जा सकता है लेकिन दलित नहीं जा सकते।
2: 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक सोच दुनिया के सामने रखी और कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा सरकार और कांग्रेस से आजादी पाने में है। उन्होंने कहा कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्या का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। 24 सितंबर 1932 को उन्होंने गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। इसके तहत विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए।
4: दलितों को मंदिर प्रवेश केवल एक नागरिक होने का अधिकार तो जरूर चाहिए, लेकिन मंदिर प्रवेश ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने आर्थिक सवालों की तरफ अपना रुख बदला कि दलितों को आर्थिक जो स्थिति है उनकी, जो सबसे पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, क्योंकि उनके पास अपना ऐसा कोई काम नहीं है कि जिससे कि उनकी आय बढ़े।
2: देश आजाद हुआ तो अंबेडकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में देश के पहले कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर आजीवन सांप्रदायिक राजनीति के घोर आलोचक बने रहे। 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। 1951 में उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का विरोध होने पर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोह के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा।
3: पहले के जो समाज सुधारक थे, मतलब तो वो मुख्यतः हिंदू धर्म के अंदर सुधार की बात करते थे, उनको लगता था, लेकिन उनको उन्होंने महसूस किया कि जब तक जाति उनका उन्मूलन नहीं होगा तब तक ये गुलामी कैसे मिट सकती है। मतलब सिर्फ कोई रिपेयरिंग की बात उन्होंने नहीं की, जातियों का उन्मूलन करना होगा। उसमें साथ साथ उन्होंने कहा कि जातियों का उन्मूलन, जाति का सवाल धर्म से भी जुड़ा हुआ है, तो जातिभेद का उन्मूलन में वो कहते हैं कि धर्म पर भी जो धर्मशास्त्र की किताबें हैं हमें उन पर भी सवाल उठाने होंगे।
2: अंबेडकर ज्ञान का सागर थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र,

0: भीमराव अंबेडकर न सिर्फ समतामूलक समाज के पैरोकार हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और धर्म की बराबरी के समर्थक भी हैं। वो मनु की बताई सामाजिक व्यवस्था का विद्रोह करते हैं। वो दलितों को सिर्फ समानता के अधिकार तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उनमें चेतना और जागृति का संचार भी करते हैं।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में सामाजिक एकता, समरसता और धर्म निरपेक्षता के बड़े पैरोकार माने जाते हैं। जातीय व्यवस्था की बुराइयां झेलकर बड़े हुए अंबेडकर आजीवन लोगों को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद का विरोध किया, साथ ही दूसरे धर्मों की कट्टरता को देश के लिए खतरा बताया। वो देश में दलित और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों की परेशानियों में समानताएं देखते थे और अक्सर साझा संघर्ष की बात भी कहते थे।
2: जाति को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के कई सारा किताबें उन्होंने लिखी हैं, मतलब अगर एक 50 किताबें उन्होंने लिखी चीजों को लेकर के। और लेकिन उनका विचार सिर्फ धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के नहीं था, उन्होंने कानून को लेकर के भी लिखा, इसीलिए संविधान बनाने में उनका योगदान था, एक आर्थिक नजरिया उनका था, ये था। तो एक पूरा एक व्यापक दृष्टिकोण भारतीय समाज के बारे में था उनका।
1: भारत में जातीय व्यवस्था की बुराइयों पर डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बेकसूरों पर बेरहमी और अत्याचारों को रोकना ही दलितों की मूल समस्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने जातीय व्यवस्था के विरोध में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन मैं किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर अछूत भी बना हूँ तो भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, मैं केवल अपने आध्यात्मिक नजरिए के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ।
3: उस समय सभी अस्पृश्य हिंदू ही थे, लेकिन हिंदू होने के बावजूद भी उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं था, तो मंदिर प्रवेश का अधिकार होना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कालाराम मंदिर का, नासिक के कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया।
2: उनको लग रहा था ये कि हिंदू धर्म के अंदर एक ऐसी भावना पनपेगी लोगों के अंदर कि वो लोग खुद सुधार हो जाएगा, लेकिन बाद में वो इस बात को लेकर के थोड़े निराश हुए। उनको लगा कि हिंदू धर्म में जो बर्बरताएं हैं, जो दिक्कतें हैं, इनका जो रूढ़िवाद मना है, तो उनको उन्होंने येवला सम्मेलन में ऐलान कर दिया था कि मैं हिंदू पैदा भले हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं।
1: सामाजिक बराबरी की पैरवी करते हुए बाबा साहब ने कहा कि मूल रूप से पशु और मनुष्य में यही विशेष अंतर है कि पशु अपने विकास की बात नहीं सोच सकता, मनुष्य सोच सकता है और अपना विकास कर सकता है। अंबेडकर सामाजिक बराबरी के साथ साथ राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की पैरवी करते रहे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अंध राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद और धार्मिक राष्ट्र के खतरों से आगाह भी किया। अंबेडकर ने कहा कि धर्म नहीं बल्कि मानवीयता और बराबरी राष्ट्र की बुनियाद है।
2: तो एक बड़ी बात जो उन्होंने, जो झकझोरने वाली बात जो कही थी समाज को, जाति को लेकर के, क्योंकि बिना धर्म को चुनौती दिए, बिना पितृसत्ता को चुनौती दिए हुए दलितों की मुक्ति नहीं हो सकती है, और रीजन रैशनैलिटी का रास्ता अपनाए दलितों की मुक्ति नहीं हो सकती है, ये बात उन्होंने एक प्रखर रूप में कही और अंत तक कहते रहे। वो
1: मानव के अस्तित्व पर भी बाबा साहब ने खुलकर अपने विचार रखे। उनका मानना था कि पैसा और यश कमाना ही मनुष्य के अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो कहते थे, जैसे ही हम अपने सोच के दायरे को बढ़ाते हैं, वैसे ही अपने सपने को प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ जाते हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी खास उद्देश्य से हुआ है जो हम सबको एक दूसरे से विशेष बनाता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब का कहना था कि जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। जिस तरह विचार नहीं मर सकते, उसी तरह आत्मा भी नश्वर है। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अमर नहीं है, लेकिन हम अपने पीछे अपने चिंतन, विचार और दर्शन छोड़ सकते हैं ताकि हमारे विचार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहें।
4: ४९४७ में जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चिंता ये थी कि देश किस तरफ आगे बढ़ेगा। इस बात पर तो सहमति थी कि देश का ढांचा लोकतांत्रिक होगा, लेकिन ये लोकतंत्र कैसा होगा ये तय करना मुश्किल था।
5: लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्रस्ट

0: destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.
1: ये वो यादगार तस्वीरें हैं जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था।
0: India will awake to life and freedom.
1: पूरा देश जश्न में डूबा था, लेकिन नीति निर्माताओं के लिए ये बेहद भागदौड़ वाले दिन थे। संविधान तैयार करना आसान काम नहीं था, लिहाजा इनकी जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ कद्दावर नेता और समाज सुधारक थे, और वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल की अथक मेहनत के बाद आखिरकार संविधान तैयार हुआ और 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दी। अंबेडकर ने इस दौरान आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र में लागू करने की कोशिश की।
2: लेकिन मैं समझता हूं कि संविधान बनाने का जो उनका योगदान है वो तो रेखांकित करना ही होगा, लेकिन उनका जो अपना नजरिया था वो उस पर भी बात हम लोगों को करनी चाहिए। जो संविधान बनाने के पहले उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था राज्य स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज नाम से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वो अध्यक्ष थे, जिसकी तरफ से उन्होंने संविधान समिति को एक मसौदा पेश किया था जिसमें जो एक विजन वो पेश करते हैं वो विजन पर भी मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए।
1: उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल पर ज्यादा भरोसा जताया। समानता और विविधता उनके राजनीतिक नजरिए का मूल है। अंबेडकर ने जनता के देश की सारी जनता को नागरिक के बतौर बराबर अधिकार देने की पैरोकारी की और देश में पहली बार लोगों के भीतर ये एहसास जगा दिया कि वो राज्य की नजर में एक दूसरे के बराबर हैं। अंबेडकर ने भारत को जो नक्शा पेश किया वो आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद पर खड़ा भारत था।
3: दलित या आदिवासी या पिछड़ा समाज या अल्पसंख्यक समाज और महिलाओं को के समान अधिकार का, उन्हें समान अधिकार मिले, क्योंकि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर, यहां तक कि क्षेत्र और भाषा के आधार पर भी हम भारत बटा हुआ था। आजाद भारत की हम बात कर रहे हैं।
1: कानून मंत्री के तौर पर भी उन्होंने समानता की पैरोकारी की और समानता के प्रति उनका नजरिया सिर्फ जातियों को लेकर नहीं था और ना ही धर्मों को लेकर, बल्कि वो लैंगिक समानता के भी बड़े पैरोकार थे। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने और तलाक का अधिकार देने की वकालत की और आखिरकार कई मुद्दों पर असहमति होते देख उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
2: संविधान बनाने का उनका योगदान है तो अहम था ही, लेकिन साथ साथ हिंदू कोड बिल के लिए जो उन्होंने काम किया जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती और जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, 1951 में नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, जिसमें क्योंकि पहली बार हिंदू स्त्रियों को अधिकार मिल रहा था, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आजादी के पहले एक हिंदू पुरुष पर कोई पाबंदी नहीं थी कितनी शादियां कर सकता है, वो 10 शादियां भी कर सकता था, 20 शादियां भी कर सकता था, मुस्लिम से कम 4 शादियों पर पाबंदी थी, तो मोनोगैमी का सवाल ही नहीं था, एकमती सवाल ही नहीं था और प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था।
1: भीमराव अंबेडकर की शख्सियत इतनी विशाल थी कि उनके कई बड़े कामों की चर्चा नहीं हो पाती। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर उन दिनों खूब चर्चा हुई और आखिरकार 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यही नहीं, अंबेडकर बड़े बांधों की तकनीक के भी जानकार थे और आजाद भारत में उन्होंने दामोदर, हीराकुंड और सोन नदियों पर बनी परियोजनाओं में अहम भूमिका अदा की। अंबेडकर ने मजदूरों के काम करने की अवधि को कम करने के लिए पूरा जोर लगाया। 7वें भारतीय मजदूर सम्मेलन के दौरान अंबेडकर की कोशिश के बाद ही मजदूरों की काम की अवधि 14 घंटों से कम होकर 8 घंटे हुए। यही नहीं, वो रोजगार और आधुनिक राष्ट्र के बीच गहरा संबंध देखते थे और लगातार मजदूर अधिकार से लेकर बेरोजगारी के सवाल उठाते रहते थे। संविधान को जब अंगीकृत किया गया तो अंबेडकर ने आने वाले दिनों को लेकर कुछ चिंताएं भी जाहिर की।
2: समाजवाद की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि उद्योगों को राज्य के नियंत्रण में लेना चाहिए, जमीनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो आज की तारीख में लोगों को अपचनीय हो सकती हैं। ऐसी तमाम बातें उन्होंने राज्य और अल्पसंख्यक नामक ग्रंथ में लिखी थी, और जो एक उसमें ही वो बहुसंख्यकवाद का खतरा देख रहे थे।
1: भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए दो चीजों को बेहद जरूरी मानते थे, पूंजीवाद और जातिवाद का खात्मा। उन्होंने बाद के दिनों में पूंजीवाद पर भी चोट किया। जानकार मानते हैं कि अंबेडकर के सपनों का भारत और खुद अंबेडकर को जिस तरह आजकल पेश किया जा रहा है वो कई मायनों में आधा अधूरा है।
3: एक संविधान ही ऐसा एक बहुत बड़ा सब हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी कानून का एक दायरा हो सकता है कि जिससे कि सबके बीच में स्त्री पुरुष और जाति के आधार पर समानता या धर्म के आधार पर सभी समानता, भाईचारा और न्याय हो, सबको बराबर का अधिकार मिले।
1: उन्होंने हाशिए पर छूट गए लोगों के लिए सत्ता में भागीदारी और नीति निर्माण में अनुपातिक जगह की वकालत की। अंबेडकर आखिर तक किसी भी तरह के इंसानी भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे और राजनीतिक समानता के अलावा सामाजिक समानता को हासिल करने के लिए वो लड़ते रहे।
4: दोस्तों, आपने जाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त आरजे भावना को दीजिए इजाजत। नमस्कार, और सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे भावना के साथ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटा भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमारता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की यही कोशिश रही है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाओं को, महत्वपूर्ण तकनीकों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारे किसान की आजीविका सशक्त बने, साथ ही हमारे किसान को आ रही खेती में जो समस्याएं हैं उससे हमारा किसान कैसे निजात पा सके। साथ ही हम कोशिश करते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है, हमारी जैविक खेती है, उसमें हमारा किसान जोरों शोरों से सहभागी बने, जिससे कि हमारे न केवल हमारे किसान के परिवार की बल्कि हमारे पूरे देश की जो रासायनिक खातों से जो हम उपजा रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिल सके। तो किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं GI टैगिंग को लेकर। हाँ किसान साथियों, क्या है ये GI टैगिंग? आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे GI टैगिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को, कैसे GI टैगिंग हमें मिलता है और उसमें क्या क्या किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए GI टैगिंग दी जाती है। किसान साथियों, GI टैगिंग से हमें बहुत ही फायदा मिलता है, तो इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सुनेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें क्या मुनाफा मिल सकता है। चर्चा को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं ये एक रिपोर्ट।
6: GI टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उनमें वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल जीआई टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्थान ना करे। देश में इसके लिए बकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण जीआई टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशिष्टता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ जीआई टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहा चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।

0: अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी, जीआई टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। जीआई टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले जीआई यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा, या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो जीआई एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत, तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी एक खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहाँ अभी 415 के करीब GI टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगनपल्ली आम है, अल्फेंसो आम है, चाय है, और इस तरह शाही लीची है बिहार की, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद है।
0: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी GI टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये GI टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
2: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
0: जी,
2: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकग्नाइज्ड बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी GI रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, यानी कि एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रिब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं, और ये जो बॉडीज जो होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है, जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो GI प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है, और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो GI रजिस्टर हो जाता है, अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये GI प्रोसेस कंप्लीट होता है।
0: जी, तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है, इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है, और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है, हमारे देश से बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से GI टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
3: देखिए अदिति, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती धान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व तो और बढ़ जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है
0: जी।
3: इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके इसके लिए जिम्मेदार है
0: जी।
3: लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक
0: जी
3: उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं। अब धान के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए, अपीडा को इसका अधिकार दिया कि वो बासमती को जीआई टैगिंग करें और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती धान बासमती चावल का जीआई टैग जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया चेन्नई जो रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला
0: जी।
3: उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर जहां जहां हमारा हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं
0: बिल्कुल
3: और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें
0: जी।
3: जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले उसका लाभ मिले क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा
0: बिल्कुल। तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है।
3: देखिए जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है
0: जी।
3: जीआई टैग का जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है तभी उसको जीआई टैग मिलेगा और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी

0: बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ, पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं, इसके लिए श्रेय हमारे किसानों को जाता है।
1: बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे, डॉक्टर बजाज आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है, लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहां आवेदन करना होगा, क्या प्रक्रिया रहती है उसकी?
2: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, जैसे अभी कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य, भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है, तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की, उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर पूरा प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए, जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को, जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना क्या लाए, हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना इस्तेमाल कर ले, इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, भाई दूसरे को तुम नाजायज, हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है, दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूं और इससे मुझे जो है एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में, एक यहीं पर ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर एक संस्था कर सकती है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
1: बिल्कुल, तो आपने कहा कि एक संस्था यहाँ पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग, किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है?
3: मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा।
1: बिल्कुल,
3: दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया, 15 सितंबर 2003 में, उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी जिसमें 6 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वर्ल्ड वाइड से सेलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहां पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है, सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे दार्जिलिंग टी होती है और वहां पर मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स वो विमेन है, तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से। और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी जीआई टैग दिया था, और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं। और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उन पे होता है। ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा। इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टी का है।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर फायदे तो अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहाँ पर कवायदे चल रहे हैं, कोशिशें चल रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू सिस्टम में
1: जी
0: एक जीआई रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
1: जी।
0: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे। और अगर हम वहाँ अपने जीआई टैग प्रोडक्ट को अगर वहाँ नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहाँ कोई हमारे चीज़ के नाम को का दुरुपयोग करके वहाँ वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने जीआई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहाँ भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहाँ भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में अपीडा ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
1: जी।
0: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था, आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है, उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक जीआई प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक जीआई टैग के तहत वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं, और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो जीआई ले चुके हैं या बासमती का हमारा एक लोगो है, या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता, और हमारे जो किसान है, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
1: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहाँ पर तैयार किया है, उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहाँ पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद को यहाँ पर जीआई टैगिंग मिलती है, तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान हैं या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें, तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
2: सभी को फायदा मिलता है
1: जी।
2: जब जीआई टैगिंग हो जाता है तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
1: जी।
2: अब बासमती जीआई टैग हुआ तो जहां जहां बासमती उगाया जाता है वो उसका।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। हम चर्चा कर रहे हैं जीआई टैगिंग के बारे में। जीआई टैगिंग क्या होता है, कैसे हमें अपनी एक पहचान मिल सकती है और इसके क्या फायदे होते हैं, आइए इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं इन एक्सपर्ट की मदद से।
1: आते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी। हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जब जीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत जरूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स कि जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का। क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ, और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी कारपेट्स
1: जी।
2: अब कश्मीरी कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कारपेट एज ए जीआई
1: जी,
2: उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है। जब आप कारपेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये कहाँ किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कारपेट बिकता है तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड लगाता है उससे कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कारपेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ जीआईज एग्जामिन करता है। और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिंदुस्तान से ही नहीं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
1: और जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं, ऑपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
2: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने, जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस एग्जामिन होता है, जिससे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
1: जी,
2: ये होनी चाहिए, या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप की ऑपोजिशंस आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज ने बताया, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई जीआई डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है, उसका एग्जामिनेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे बासमती का एग्जांपल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जांपल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
1: जी।
2: और इसीलिए जो है बाहर की कंट्रीज, बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिंदुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
1: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाया है राजेंद्र जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि अब भी अगर आप जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप जीआई टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की जीआई टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है। फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं तो।
3: देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का जीआई टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस जीआई टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
1: जी,
3: और कैसे उस

0: उत्पाद के साथ आगे बढ़े, क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बासमती का जीआई टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं, उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा। तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में और वहाँ लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
1: जी।
0: और यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, माला माल है।
1: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
2: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दी थी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
1: जी।
2: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है, तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक FPO बनाकर या FPCs बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें, जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे। उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
1: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहां पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहां पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है? ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहां पर प्रूफ हो?
3: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कश्मीरी कारपेट्स में क्यूआर कोडिंग
1: जी
3: एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं
1: जी।
3: ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में। एक यूएस की कंपनी राइसटेक उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम यूएस में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट्स से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें पीडा और सीएसआईआर का बहुत रोल था, उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की रेवोकेशन की यूएसपीटीओ के सामने और ये प्रूव किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस ये यही प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, यूएस कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया, तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें, हमें ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
1: तो जी। बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहाँ पर फिर से एक बार बात कर लेते हैं, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे, हम एपिडा की बात करते हैं, तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है, जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सकें, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
2: अब एपिडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3,00,000 करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें,
1: बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे आप।
2: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा तुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सकें। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है। तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो, और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं, और बहुत जरूरी है कि अगर जीआई ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है। ये ना हो कि मैं तो जीआई लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और यहां पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो जीआई टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
0: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है, और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको जीआई टैगिंग करा के उनके उत्पादन को बढ़ा।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: दिया जा सकता है, और उसके लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो छोटे समूह हैं, हमारे जो किसान समूह जिनको आजकल पूरे भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं, और उनके माध्यम से किसानों तक पहुँचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको जा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाके, और जो हमारी इस तरह की जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन जीआई करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको जीआई के लिए आगे लेकर आए, ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो जीआई टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे ना केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी, और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो जीआई,
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि GI टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहाँ पर GI टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहाँ पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
1: वही प्रक्रिया
0: जी।
1: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका GI टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो GI टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं। हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो GI टैग की आवश्यकता है। और जब GI टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष GI उत्पाद है।
0: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
2: बिल्कुल,
0: क्या कहना
2: हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
0: जी।
2: उसमें जो GI ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफ़ी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि GI प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए GI प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है
0: जी।
2: बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही हैं, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी के GI का इन्फ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मानी गई है। उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो हमारा GI एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं, अगर GI ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट्स जो हैं काफी फोर्थ राइट है। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इंफ्रिंजमेंट एक्शंस फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है। अगर हम GI लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो SWA स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है
0: जी। बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल, GI टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए। तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये GI टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
3: देखिए अदिति, ये बहुत ही अच्छे बात आपने उठाई, क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है
0: जी।
3: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
0: जी,
3: और अगर वो जीआई टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी होगी
0: जी।
3: लेकिन किसी भी जीआई उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
0: जी।
3: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है
0: जी,
3: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
0: जी,
3: उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहां से चला, यहां पैदा हुआ
0: जी,
3: और उसके बाद यहां गया और उसका यहां प्रोसेसिंग हुई, यहां पैकिंग हुई और यहां जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चिंतता अगर हम अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
0: वो खरीदेगा ही और लाभ सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा।
2: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे
0: जी,
2: उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए
0: जी,
2: क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में। अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
0: पर क्वालिटी यहाँ पर बहुत क्वालिटी मायने रखती है।
2: गुणवत्ता
0: अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पर सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका।
1: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया, क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग था, और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला। तो एक इसी तरह उदाहरण है, जीआई टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूँ ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं प्रीमियम।
4: जी हाँ किसान साथियों, जीआई टैगिंग से हमें फायदा हो सकता है। एक तो हमें ये चीज बेचने में आसानी होगी, दूसरी चीज कि जो हमें इसके लिए कहीं कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद में एक प्रसिद्ध चीज होगी कि जो भी आएगा उसे खुद ही पता है कि यहाँ की ये चीज़ फेमस है और वह उसे लेना ज़रूर पसंद करेगा। जैसे कि अपने झव्वा का अभी कड़कनाथ इतना फेमस है तो हर कोई जो भी आता है वो ज़रूर चाहता है कि जो मांसाहारी है वो ज़रूर चाहेगा कि मैं इसका टेस्ट करूँ। साथ ही वो सारे जो लोग अंडा खाते हैं वो काफ़ी अंडे की भी डिमांड है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमें इसमें जो इसमें जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम अगर ये हमारे लिए एक अच्छा है कि हम यहाँ पर कड़कनाथ होता है, इसका मतलब ये नहीं हम उसमें भर भर के पूरा कड़कनाथ पाले और जिससे अधिक पालने के चक्कर में हमारा क्या होता है, जो क्वालिटी है उसको हम ख़राब ना करें। हमें हमारी क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना है, उसका भी प्रबंधन करना है, साथ ही हमें अपनी जो क्वांटिटी है उसको भी बनाकर रखना है। तो इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटाबिल 90.8 FM के साथ झव्वा की आवाज।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
6: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज तनुषा, आपकी तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं SN रेडियो का एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम, मेरा फेवरेट है ये, जिंदगी के रंग पेट्स के संग। जी हाँ, आपके प्यारे प्यारे पेट्स के संग। आज हमारे साथ हैं अंशुल उलाल जी और उनके घर के वो बहुत ही खास मेंबर, जिनके नाम में ही एक रॉयल अंदाज है, सिम्बा। जी हाँ, सिम्बा एक इंग्लिश क्रीम गोल्डन रिट्रीवर है और केनल क्लब ऑफ इंडिया के चैंपियन भी हैं। उनका खूबसूरत क्रीम कोट, ग्रेसफुल पर्सनालिटी और जेंटल टेम्परमेंट उन्हें शो रिंग में भी खास बनाता है और घर में भी दिल की धक धक धक धक, जी हाँ, घर की धड़कन बनाता है। लेकिन सिम्बा की असली पहचान सिर्फ उनकी चैंपियनशिप नहीं है, वो है किंग ऑफ हार्ट्स, खासकर सीनियर्स और बच्चों के बीच। जहां सिम्बा होते हैं वहां लोगों के चेहरे पर सुकून, मुस्कान और फिर उनकी प्यारी सी वैगिंग टेल के साथ ढेर सारा प्यार नजर आता है। सिम्बा की फैमिली में एंट्री हुई बिल्कुल खास 24th March 2020, लॉकडाउन से सिर्फ एक दिन पहले। सिम्बा घर आए और तब से लेकर आज तक उन्होंने परिवार का पूरा अटेंशन लॉक करके रखा है। तो चलिए जानते हैं सिम्बा के साथ जुड़ी वो कहानियां जो चैंपियनशिप से कहीं ज्यादा दिल के करीब है। तो अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। कैसा फील कर रहे हैं सर आप?
7: बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज तनुषा जी, और ये दूसरा इंटरव्यू है आपके साथ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट।
6: जी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम सो हैप्पी टू होस्ट यू द सेकेंड टाइम इन आई थिंक एक वीक के अंदर हम दूसरी बार बात कर रहे हैं। तो थैंक यू टू SN रेडियो, थैंक यू टू यू फॉर ऑल द टाइम। एंड ये इंटरव्यू बहुत अलग होने वाला है। फर्स्ट इंटरव्यू थोड़ा सीरियस था, थोड़ा स्पिरिचुअल था, काफी गहरा था, और ये इंटरव्यू बहुत फन होने वाला है, बहुत फ्रॉलिकी होने वाला है, बहुत फैंटास्टिक होने वाला है। तो चलिए जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आपसे, आपके प्यारे से सिम्बा के बारे में, किस तरह से सिम्बा आपके जीवन में आया, वो कौन सा पल था जब आपने डिसाइड किया कि सिम्बा को अपने जीवन में लाना है, और ये कैसे डिसाइड हुआ कि आपके पेट का नाम सिम्बा रखना है?
7: बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है तनुषा जी। तो सिम्बा मेरा गोल्डन रिट्रीवर है। बचपन से बहुत कहानियां सुनी थी, क्योंकि हमारे जो उल्लाल गांव है वहां पर यू नो कैटल का एक काउशेड हुआ करता था हमारे घर में, और मेरे दादाजी जो अनंत राव उल्लाल है उनको एक उसमें से गाय बहुत पसंद थी, काली करके। उसमें बहुत सारे किस्से हुए हैं जहां पर उनको एक दूसरे घर में भेजा गया था और वो वापस आके वो कंपाउंड को छलांग मारकर वापस काउशेड में आई थी, वो एक किस्सा है। दूसरा चीज था कि हमारे जो गुरुदेव है परिज्ञान आश्रम स्वामी जी, उन्होंने मेरे पापा को एक लैब्राडोर गिफ्ट किया था, ब्लैक कलर वाला। तो वो हमारे घर पे था, और उसके बाद रिश्तेदारों के घर पे जब मैं गया था तो उधर एक ब्लैक लैब्राडोर वो भी था जिसका नाम राजा था। तो जब मैं बच्चा था वो मुझे उसके पीठ पे सवारी करने के लिए भी देता था। तो ये सब जो इन्फ्लुएंसेस है बचपन की, तो बहुत गहरा असर हुआ कि यू नो वी शुड हैव अ पेट करके। तो जब छोटा था और अपार्टमेंट में रखने के लिए उतनी सुविधा नहीं थी पहले, तो पेरेंट्स ने बोला कि बड़े हो जाओ, एजुकेशन कंप्लीट करो, और जब टाइम आएगा तो तब सोच लेना पेट लेके आने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अभी पढ़ाई पर फोकस करके काबिल बनो उसके बाद पेट ला सकते हो करके। तो एक बार मैं जब डिसाइड किया कि हमें एक गोल्डन रिट्रीवर चाहिए घर पे, क्योंकि बच्चे मेरी बेटी भी अवंतिका 5 साल की हुई थी, तो मुझे ऐसा था कि जो मुझे उस टाइम हम कर नहीं पाए बच्चों को वो थोड़ा सोशलाइज करना चाहिए नेचर से, तो मुझे एक पेट लाना है करके बहुत मन में था इच्छा। तो फेसबुक पे देख के उसके बाद एक पिक्चर आया। मेरा मानना ये है कि जो पेट्स होते हैं वो फैमिली चूज करते हैं, फैमिली पेट्स को चूज नहीं करती। तो वो एक एक कार्मिक साइकिल होता है, वो हमारे जीवन में आके सब कुछ बदलते हैं। और ये से फिर मुझे एक पप्पी नजर आया, तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि मुझे यही चाहिए। और बचपन से पापा मुझे वो डॉग शोज में लेके जाते थे जहाँ पर ब्रीड स्टैंडर्ड क्या क्या नस्ल होते डॉग्स के और उनको उनका देखभाल कैसा किया जाता है, तो वो सब थियोरी पढ़ के उसके बाद वी डिसाइडेड ऑन सिम्बा। सो नाम कैसा पड़ा आपका सवाल है, तो माँ को कुछ इंडियन सवाल इंडियन नाम रखना था, तो हम सब लायन किंग के बहुत फैंस हैं, तो वो सिम्बा नाम हमें बहुत पसंद आया। और सिम्बा आप देखोगे तो हमारे जो विष्णु जी का अवतार है नरसिंह, उनसे भी नाम मेल खाता है सिम्बा करके, वो इंडियन नाम है। और सिम्बा देखने में एकदम लायन जैसा भी है देखने में एक्चुअली, तो ऐसे उसका नाम सिम्बा पड़ गया।
6: क्या बात है सर, क्या बात है। इस जवाब में इतने सारे और सवाल मुझे मिल गए और मैं बहुत ही इस थॉट को एको करती हूँ और आपसे बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि पेरेंट्स हमेशा बड़े होते हुए यही बोलते हैं कि पहले रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, पहले खुद

0: पेट्स हैं सालों साल से, उनके घर जाके आप पता कर सकते हैं, उनके बच्चों से, उनके परिवारजनों से आप बात कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत की पॉइंट आपने रेज किया कि जरूरी नहीं है कि आप को नहीं पता आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं या फर्स्ट टाइम आप पेट ओनर बन रहे हैं तो आपको नहीं पता, तो आप किस तरह से रिसर्च करें। द बेस्ट वे इज टू गो टू योर फ्रेंड्स, एक्सटेंड योर सेल्फ एंड जाने कि किस तरह का ये एक्सपीरियंस होता है जब आप पेट ला रहे हैं, तो कैसे आप घर को उसके फ्रेंडली कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि पपीज फास्ट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, भागते हैं इधर उधर, तो घर प्रिपेयर करना उसी तरह से जैसे बेबीज के लिए करते हैं बहुत जरूरी है। इसी के साथ सर जी, अगर आप मुझे बता सकें कि आपका सिम्बा के साथ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट अगर कुछ बता पाए तो।
1: बहुत सारे हैं, एक एक है कि जैसे हम बच्चों को जब उनके दांत गिरते हैं तो हम उनको मेमोरी के तौर पे रखते हैं। एक्चुअली ऐसे सिम्बा के दांत मेरे पास है जो पपीज पपी डेज में हुआ है, तो वो मेरे पास एक ये है कि जो गिरा और हम सोचे अरे बच्चा बड़ा हो रहा है ऐसा। दूसरा चीज, जब मैं छोटा था ना, मैंने आपको बोला था डॉग शोज पापा लेके जाते थे, तो मुझे बहुत ऐसी एक इच्छा थी कि जब मेरे पास एक पप्पी आए तो मैं उसको चैंपियन बनाऊं। तो सिम्बा बेस्ट इन स्पेशलिटी शो, बेस्ट इन डॉग शो, बेस्ट ऑफ ब्रीड, ऐसा काफी सारे उसके 6 या 7 ऐसे प्राइजेस आए हैं मेरे घर पे। एक एक दीवार में उनके सारे ट्रॉफीज भी हैं। तो एक ऐसे शो में जब हम गए थे तो उनके जो ट्रेनर थे वो उसको रिंग के पास लेके जा रहे थे, तो कुछ हुआ और उनका जो लीश था वो छूट गया और लीश लेके उनको ट्रेनर के पास जाना था, लेकिन वो लेके मैं काफी दूर खड़ा था, वो पूरा स्टेच वो भाग के मेरे पास आके मुझे उसने लीश दिया और सारे लोग वहां पर जो थे वो देख के सबके चेहरों पे एक मुस्कान थी कि कैसे वो हमारे पास आके वो लीश दिया करके। तो वो देख के मुझे बहुत मन भर आया कि मतलब जो ट्रेनर है और जो परफॉर्मेंस करना है उससे ज्यादा फैमिली मैटर करता है। तो बहुत वो एक बहुत सुनहरी याद है अभी फिलहाल।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत याद आपने साझा की, सच में सुनहरी याद है, सच में मन भर गया जब सुनते ही कि जैसे पेट्स किस तरह से अपने मालिक को, अपने यू नो अपने पेट पेरेंट को, मालिक तो मैं नहीं कहना चाहूंगी, हम उनके पेरेंट्स हैं, तो किस तरह से उन्हें पहचानते हैं भीड़ में, हजारों की भीड़ में पेट सिर्फ वो एक चेहरा ढूंढता है। इससे मैंने एक स्टोरी भी की थी कि किस तरह से एक पेट सिर्फ अपने पेट पेरेंट की तरफ देखता है उस हैप्पीनेस के लिए और उस सेफ्टी के लिए, वो आपसे ज्यादा सेफ कहीं फील नहीं करते और आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उनका ध्यान रखें और कुछ भी नहीं। दे आर अनकंडीशनली लविंग बींग्स। एंड बहुत खूबसूरत सा किस्सा आपने हमारे साथ साझा किया, इन्हीं गहरी बातों के बीच, इन्हीं प्यारे एहसासों के बीच हम सुनेंगे आज का आपका पहला फरमाइशी गीत, आप ही की पसंद का, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, फिल्म शोले।

0: क्या बेहतरीन और आइकॉनिक सॉन्ग है ये, जितनी बार सुनो उतनी बार फ्रेश लगता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चॉइस सर। आगे चलते हैं, आपने बताया कि पेट्स बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, उनको एक तरह से अगर बच्चे नेचर के साथ पेट्स के साथ बड़े होते हैं तो एक अलग क्वालिटी उनके अंदर आती है, और वो आप चाहते थे, आप जेन्युइनली लाइक पर्पसफुली यू वांटेड टू कल्टीवेट दैट इन योर चिल्ड्रन। तो आपके हिसाब से, आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, किस तरह से पेट्स सच में बच्चों को और बेहतर ह्यूमन बींग्स बनने में शेप करते हैं, वो क्या क्वालिटीज लाते हैं? और इसी के साथ, क्या ऐसा होता है कि कभी आप जब घर में बहुत लो हैं, घर की एनर्जीज बहुत डाउन हैं, तब आपका जो पेट है वो पूरे घर की एनर्जीज चेंज करने की ताकत रखता है?
1: तो तनुषा जी, ऐसा होता है कि जब घर पे पेट्स आते हैं वो बच्चों को अनकंडीशनल लव बहुत सिखाते हैं। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो किसी चीज अगर पेट को अच्छा नहीं लगा या अपने सिम्बा को अच्छा नहीं लगा, जो अवंतिका करती है, जो मेरी बेटी करती है, तो वहां से उठ के चला जाता है।
0: ओ,
1: उसको डांट नहीं करेगा, उसको ऐसा मतलब बाइट करने की भी कुछ ये नहीं करेगा, वो सिंपल वहां से उठ के चला जाएगा।
0: Wow.
1: बहुत सिंपल तरीका है उसका। और अनकंडीशनल लव, जैसे आपने बोला कि मालिक बोलना इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन हम लोग जब अंग्रेजी में बात करते हैं हम लोग नॉर्मली बोलते हैं वन मास्टर डॉग या ऐसा मास्टर बोलते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी हम लोग देखेंगे तो हमारे जो मास्टर आराध्य रहते हैं हमारे सब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए महादेव है, तो जब मैं महादेव को देखता हूँ तो मुझे सामने, मुझे ये बहुत पसंद आता है कि मुझे उनको नंदी के सिंह के बीच से मैं शिव जी को देखूं, क्योंकि नंदी जी जो है वो अनकंडीशनल लव और एटर्नल वेट के एक सिंबल
0: है। राइट,
1: ही विल वेट टिल शिव जी वॉन्ट्स टू कम। तो ऐसा जब पेट्स के साथ हम लोग रहते हैं तो उनका अनकंडीशनल लव, उनका मतलब, हम लोग ऑफिस से आते हैं तो हर दिन एक त्योहार है, मतलब हम लोग घर पे आते हैं तो वो भागेगा, इधर उधर भागेगा, अपना जो पूछ है वैग करेगा, कुछ जाके टॉयज लेके आएगा। तो बोलना चाहूँ तो ऐसा लो मोमेंट्स एक बार पेट घर आने के बाद ऐसा कभी नहीं होता है। एक थोड़ा मतलब सोबर होता है कभी कभी, जब उसको कुछ बीमारी हो या ऐसा कुछ थोड़ा वीक हो जाए तो ऐसा लगता है कि ये है, लेकिन उसमें भी वो दिलासा देता है कि मैं हूँ, आज भी मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ और उतना मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत पॉजिटिविटी आता है और लॉयल्टी। आजकल के दौर में अगर आप मेरे से अच्छे हैं तो ही मैं आपके साथ अच्छा रहूंगा, ऐसा एक कंडीशन देखने को आता है। और जेन्युइनिटी तो नहीं, आजकल बहुत रेयर है। अपना काम करवाने के लिए कितने जन ऐसे मतलब शुगर कोट करते हैं, सब होता है ऐसा, दुनिया के तौर तरीके हैं ये, लेकिन जब आप पेट्स को देखते हो उसमें कंडीशन कुछ नहीं होता, वो आदमी को परखते हैं, वो उसमें अच्छाई देखते हैं, सिर्फ अच्छाई देखते हैं। आप पेट के साथ गुस्सा भी करें वो फिर भी आपके पास आएगा और वही कडल्स और

0: के डरते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते. और हर जन को अपना एक बैकग्राउंड रहता है, एक यू नो एक फॉर्मेट रहता है. तो एनक्रोच नहीं होना चाहिए आपको. यू हैव टू बी यू नो यू शुड नो कि कैसे उसको अप्रोच करें. तो वो सब चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए. और जब आप बोलते हैं कि मैं ये क्रिएट के बारे में बोल रहा था, तो रिसर्च ये बताता है कि क्रिएट जो है या केज जो है उसको हम पनिशमेंट के तौर पे उनको नहीं ट्रेन करना है. उनको ऐसे बताना है कि वो उनका सेफ स्पेस है. फॉर एग्जाम्पल घर पे, हमारे घर पे अभी कैसा होता है कि कोई घर का काम झाड़ू पोछा करने के लिए जब वो टाइम आता है तो सिम्बा अपने आप वहाँ क्रेट के पास जाके खड़ा हो जाता है कि अभी ये मेरा टाइम है कि मैं अंदर जाके मैं रेस्ट करूंगा, आप घर साफ सफाई करके मुझे बाहर निकालो, फिर मैं वापस पूरा दिन एंजॉय करूंगा करके. तो ये एक पॉजिटिविटी अपने को सेटअप करना पड़ेगा ताकि हम जब बाहर जाएं या हमारे घर पे कोई आए तो उसको ऐसा पनिशमेंट जैसा ना लगे और वो एक बैलेंस और संतुलन हो जहां पर हर इंग्रेडिएंट जो उनकी केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो तत्व है, इंग्रेडिएंट स्मॉल स्मॉल चीजें जो हैं, लेकिन दे हैव अ बिग इम्पैक्ट. तो इन सब चीजों को ध्यान रख के एक ऐसा एनवायरमेंट सेटअप करें जिसमें आप भी एंजॉय करते हो, वो भी एंजॉय करे और पूरा माहौल एकदम एंजॉयमेंट और पॉजिटिविटी से भर जाए.
1: बिल्कुल सर, ब्यूटिफुल एंड सो कीनली ऑब्जर्व. आपकी सारी ऑब्जर्वेशन, आपने जो सारे पॉइंट्स बताए वो इतने कीन ऑब्जर्वेशन से आते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस का निचोड़ है. और बहुत ही धन्यवाद आपका कि आपने इतनी गहराई के साथ इन सभी पॉइंट्स को साझा किया. इनमें एक बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने रेज किया जिसमें आपने बताया कि एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना जरूरी है जहां पे सिर्फ आप और आपका पेट कंफर्टेबल नहीं है, आपके घर के आसपास के लोग, जो आपके घर में आते हैं मेहमान, जो घर के मेंबर्स हैं, वो भी कंफर्टेबल फील करें. क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि आप बहुत प्यार करते हैं अपने पेट से, दैट्स वेरी गुड, बट हो सकता है कि बाकी लोग जो आपके आसपास हो वो इतने कंफर्टेबल नहीं हो जितने आप हैं. तो उनके सामने एक ही ग्लास में से पानी पी लेना, खाना शेयर कर लेना, उनको अपने पास बगल में चिपका के बैठना सब समय, हो सकता है वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है बट सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए. तो आपके पेट को इतना डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको उसको डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा कि जब कोई घर में है तो उसे किस तरह से बड़े बुजुर्गों, छोटे बड़े सब तरह के एज ग्रुप्स के साथ बिहेव करना है, किस तरह से एक मेंबर बन के रहना है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया है. तो इन्हीं बातों के बीच हम सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत आप ही की फरमाइश पे, एक और बहुत गहरा गीत, बहुत ही रिलेटेबल गीत इस पूरी सिचुएशन में, रहे ना रहे हम, फिल्म ममता.

0: बहुत ही खूबसूरत गीत सर, थैंक यू सो मच इसकी फरमाइश के लिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग नए पेट पेरेंट्स बन रहे हैं, पेट्स को अपना रहे हैं, फॉस्टर पेरेंट्स बन रहे हैं, पेट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अवेयरनेस हो रही है। तो बिकॉज आप एक आई थिंक यू हैव बीन अ पेट पेरेंट सिंस 2020, सिक्स इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, तो आपके एक्सपीरियंस से अगर आप नए पेट पेरेंट्स के लिए जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, पेट लाना चाहते हैं, फॉस्टर करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस हो तो वो क्या होगी, पहला सवाल। और जनरली एनिमल्स की तरफ लोगों का जो बिहेवियर है, नॉट जस्ट योर पेट बट एक जनरल बिहेवियर टुवर्ड्स एनिमल, उसके लिए क्या आपकी सलाह होगी?
1: तो पहला एक बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, अगर नए पेट पेरेंट्स बनना है, पेट को घर पे लाना है, जैसे मैंने आपको बोला कि उस पर बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, थियोरी समझो कि कौन सा ब्रीड है, उसकी फितरत क्या है, क्या वो गार्ड डॉग है, क्या वो फैमिली डॉग है, उसको कैसा सेटिंग चाहिए, ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कि कैसे कौन सा ब्रीड सूटेबल होता है, वो एक चीज है। दूसरी चीज है क्यों चाहिए आपको पेट, ओनली इफ यू आर 200% कमिटेड कि पेट लाके मैं अपना जो करंट फॉर्मेट है बदलना चाहूंगा, या हम एक हमारे पास पेट था लेकिन वापस मुझे लेके आना है और आई वॉन्ट टू बी having that same lifestyle, अगर 200% commitment है तभी वो decision पे आगे बढ़े, वरना pet लाने की ऐसी कुछ जरूरत नहीं होती। तो वो एक थोड़ा उसके ऊपर सोच और विमर्श करना बहुत जरूरी है। जब adoption की बात आते हैं तो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव थॉट है, लेकिन जब अडॉप्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या था, वो बच्चे का ऐसा फितरत क्या था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो डॉग्स रहते हैं वो डिफॉल्ट फेथफुल रहते हैं। जो सिचुएशन, अगर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हमने देखे हैं जहां पर उनका बैकग्राउंड इतना खराब होता है कि दैट पुअर बेबी इज एक्चुअली फोर्स्ड टू थिंक कि लोग मुझे हार्म ही करेंगे करके। तो वो जो माइंडसेट है वो चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और वो माइंडसेट को चेंज लाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगता है। तो यू नो नाउडेज यू हैव लॉट ऑफ दिस अडॉप्ट कीजिए करके वो ड्राइव होते, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बट वी हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि वो डॉग का क्या बैकग्राउंड था, क्यों ऐसा हुआ उनके साथ, और देन मेक योर लाइफ स्टाइल इन सच अ वे दैट यू कैन वर्क विद द डॉग टू कम टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऐसा मैंने देखा है कि जैसे कोई डॉग देखेगा तो इमीडिएटली जाके उसको पेट करना चालू कर देते हैं, मतलब आपको ओनर को पूछना चाहिए एज अ फॉर्मेट, पहले ओनर से पूछे वो डॉग फ्रेंडली है कि नहीं फ्रेंडली है, अगर उसको सोशलाइज नहीं किया गया है और वो गार्ड डॉग है, आपका जो भी एक्शन है वो ऐसे सतर्क रहेगा कि आप या तो उसको हार्म करेंगे या तो ओनर को हार्म करेंगे, तो उसका वो जो गार्डिंग टेंडेंसी है वो डिफॉल्ट ट्रिगर हो जाएगा। तो वो एक चीज है। कभी कभार हम लोग ऐसे देखते हैं, लिफ्ट में होता है, सडन पैनिक हो जाता है, सब जन इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसा डॉग अटैक कर रहा है करके ये होता है, ऐसा सब होता है, लेकिन उसमें क्या उसका एक जो जब मैं केनाइन बिहेवियरिस्ट से बात करता हूं और मेरे दोस्तों से बात करता हूं तो वो एक ही बोलते हैं कि जो डॉग रहता है उसको ट्रिगर होता है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी को स्टडी करता है, आपका जो ऑरा है वो स्टडी करता है, अगर आप पैनिक करोगे तो वो भी पैनिक करेगा। तो ऐसे क्लोज स्पेस में जब आप पैनिक डेमोन्स्ट्रेट करते हो उनका भी, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स, ऐसे बोलते हैं कि या तो मुझे भागना है या तो मुझे उसको डील करना है, मतलब आई हैव टू बी एग्रेसिव टुवर्ड्स इट. ऐसा ट्रिगर हो जाता है, हर केस में नहीं होता. काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर यू नो द डॉग्स हैव अटैक्ड ऑल्सो फॉर सम रीजन, फॉर रीजंस अननोन. उसका स्टडी अलग से होना चाहिए, लेकिन ओनर्स को या पेट पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके अगर बच्चे को ऐसा फितरत है जो स्ट्रेंजर्स अनकंफर्टेबल है, या कुछ रास्ते में जाते हुए कुछ खाने की आदत है, तो एक मजल मिलता है जो मुंह पे डाल सकते हैं, जो डॉग की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और आसपास के लोगों के लिए भी सेफ्टी का ये एक यंत्र है. तो वो वैसा डाल के उसको लेके जा सकते हैं वेयर इट विल बी कंड्यूसिव यू नो ऑन बोथ साइड्स. ऐसा होता है. तो मेन ये है कि बॉडी लैंग्वेज. सो डॉग्स जो होते हैं वो आदमी का जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका कैसा बर्ताव है, वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है, उसमें काफी सारे जजमेंट्स लेता है कि मैं उसको अपने सर्कल में आने दूं या मना करूं करके. सो जब आने दूं होता है तो आप देखोगे कि डॉग के ईयर्स जो है, कान जो है, वो पीछे चले जाते हैं, मतलब वो रिलैक्स्ड है और वो इज वेलकमिंग. यस, इफ द ईयर्स आर अलर्ट, तब आपको पेशेंस से जाना है. ऐसे नहीं कि डॉग दिखा तो जाके उसको कडल कर दे. हम आदमी को ऐसा करते हैं क्या, आदमी ऐसा अप्रिशिएट करेगा क्या? वैसा सोचना चाहिए. और जब अपार्टमेंट में रहते हैं हम लोग, एक चीज जो हम लोग घर पे करते हैं कि हमारा अपार्टमेंट तो एकदम डॉग फ्रेंडली है. कल परसों में एक ऐसा किस्सा हुआ कि हम लोग नीचे थे, थोड़ा दरवाजा खुला था तो सिम्बा भाग के नीचे आ गया. वो मुझे ढूंढते हुए सीढ़ी से नीचे आया और मैं लिफ्ट से ऊपर आया, तो एक ऑलमोस्ट एक 5 मिनट के लिए ही वॉज ऑफ द लिश इन द अपार्टमेंट. तो अपार्टमेंट लोगों ने पिक्चर डाला कि ये एक डॉग यहाँ पर है. तो मैंने अपोलोजाइज किया क्योंकि अपार्टमेंट के रूल्स के तहत डॉग्स को लीश पे रखना एक रूल होता है. तो वो बोलते हैं कि इतना वेल बिहेव डॉग है सर, सॉरी क्यों बोल रहे हो, अच्छा हुआ आपको मिला, वो वापस घर पे आ गया करके ऐसा. एंड जब मैं उसको ऊपर लेके आ रहा था, लिफ्ट में दो जन थे, तो मैंने उनको वही चीज पूछा, आर यू कम्फर्टेबल, क्योंकि मेरे पास लीश नहीं था उसको पकड़ने के लिए. वो मेरी सुनेगा, वो एक कॉर्नर में जाके बैठेगा, लेकिन अगर वो कम्फर्टेबल नहीं है तो वो एक ऐसा सिचुएशन है जो मैं उसको लिफ्ट में ना लाऊं वही अच्छा है. तो मैंने उनको पूछा आर यू कम्फर्टेबल विद द डॉग, वो बोले नहीं. तो मैं बाहर आया, लिफ्ट में उनको जाने दिया, फिर उसको लेके हम लोग वापस घर पे आए. तो ऐसा अगर 2 मिनट हम लोग संतुलन बना के इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके अप्रोच लेके जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है. तो ऐसा ये कुछ मतलब नुस्खे हैं जो हम लोग ले सकते हैं फॉर यू नो गुड एनवायरमेंट.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बहुत अगेन वंस अगेन बहुत नुआंस तरीके से, बहुत कीनली ऑब्जर्व करके आपने हमारे साथ साझा किया. ये सभी पॉइंट्स आज से पहले हमारे शो पे कभी

कि वो एक नॉर्मल सिचुएशन में आ सके वो पेट, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ भी, अपने परिवार के साथ भी और उस पेट के साथ भी, क्योंकि आप क्लियरली रेडी नहीं है। हमारे साथ एक गेस्ट थे जय जय मैम करके, जय जय सांघा करके पंजाब से, उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनने एली को अडॉप्ट किया था, उनकी जो पेट थी, और कैसे वो ट्रॉमा स्ट्रक थी, कैसे वो परेशान थी, उसका जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही डिस्टर्ब था, बट जब वो घर आई तो उन्हें और उनकी फैमिली ने इंश्योर किया कि उन्होंने उतना टाइम उसके साथ स्पेंड किया टू गेट हर आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ शॉक एंड ट्रॉमा, एंड देन इवेंचुअली थिंग्स गॉट स्मूथ। तो I think this is a very important point that you raised today, Anshu sir. Thank you so much. और दूसरा ये point कि आप जब pet को देखते ही चले जाते हैं pet करने, cuddle करने, वो बहुत गलत है एक approach, because आप इंसान के साथ सच में ये नहीं करेंगे, और अगर आप pet के साथ ये करते हैं तो आप invite कर रहे हैं trouble, and then you cannot blame the dog or the pet कि उन्होंने attack किया, because उनका तो एक reaction है, they are tuned that way, they are insecure, they are not like humans, उनके पास और कोई तरीका नहीं है अपने आप को defend करने का। तो I think instead of blaming the dog attacks and blaming the dog, you should actually check your behavior कि आप क्या कर रहे हैं उनके अराउंड, और किस यू नो इन्फॉर्मेशन से जा रहे हैं किसी भी पेट के साथ, कितनी प्रिपेयर्डनेस के साथ आप उसको अप्रोच कर रहे हैं। इट इज लाइक आई सेड, आई वुड री इन्फोर्स द पॉइंट कि पेट एक म्यूज नहीं है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। यू नीड टू बी एज केयरफुल एज मैनर्ड अराउंड अ पेट एज यू एक्सपेक्ट द पेट टू बी अराउंड यू। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किए, बहुत कंड्यूसिव एनवायरमेंट के बारे में आपने बात किया, तो इन्हीं बहुत इंटेलिजेंट टॉक्स के बीच, बहुत जरूरी टॉक्स के बीच हम सुनेंगे एक और बहुत फन सॉन्ग, बहुत फन फिल्म से, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स चट्टे बट्टे चिल्लर पार्टी से, अंशुल सर की फरमाइश पे।

0: बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग हमने सुना, थैंक यू सो मच अंशुल सर एक और बहुत ही अमेजिंग चॉइस के लिए। आगे चलते हैं, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि आपने अपने पेट से अगर कोई स्पेशल लाइफ लेसन लर्न किया है तो वो क्या है?
1: तो तनुषा जी, डॉग्स जो रहते हैं ना वो एकदम पैक एनिमल्स रहते हैं। तो पैक एनिमल्स जब हम लोग बोलते हैं, उनका एक्चुअली एवोल्यूशन आप डॉग्स का देखोगे तो वो भेड़िए की जो नस्ल है उससे ताल्लुकात तो रखती है, ऐसा रिसर्च बोलता है। तो उनमें एक हायरार्की होता है, एक फॉर्मेट होता है जहां पर एक अल्फा होते हैं, वो पूरे ग्रुप को बताते हैं। तो आप हमारे घर का या इंडियन सिस्टम फैमिली फैब्रिक को अगर आप देखोगे तो पिताजी उसमें अल्फा रहते हैं, पूरे परिवार को सातवें रखते हैं। और उसमें क्या होता है, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज भी रहते हैं। जब सब पैक एक साथ जाते हैं तो वो जो लीडर होते हैं वो पूरे पैक को एक साथ लेके जाते हैं, कोर्स करेक्ट करते हैं, एक दिशा की तरफ लेके जाते हैं। वो एक सीख मिलती है कि सबको साथ में रखूं, सबका अच्छा होना चाहिए, अनकंडीशनल लव। ओके, दैट इज ऑलवेज, आप किसी से भी पूछो वो आपको बोलेंगे कि डॉग को देखते ही अनकंडीशनल लव नजर आता है। कुछ भी समस्या हो, कैसा भी दिन रहे, उनका प्रेम अपनी जगह होता है। वो एक चीज है। एक चीज जो मुझे बहुत, मेरा पर्सनल थॉट है ये, बट आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू एंड द लिसनर्स। गॉड और डॉग में जो अल्फाबेट्स है वो सेम है, रिवर्स में है। ओके, गॉड और डॉग में रिवर्स में है, लेकिन डॉग अपने को वो सिखाता है कि जब मास्टर है उनको, उनके तरफ हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। जो वो दिव्य व्यक्ति है या पावर है, आप उसको जो भी नाम आपको देना चाहिए आप दे सकते हो, लेकिन उसका तत्व एक ही है। तो जब उनके पास जाना है तो कैसे जा सकते हैं? हमारे जो गुरु दत्तात्रेय है, तो आप उनमें देखोगे कि वो हमेशा, उनके पीछे एक गाय रहता है, उनके पास चार डॉग्स रहते हैं। एक्चुअली मैंगलोर में जब हम लोग कुछ स्पिरिचुअल फंक्शन के लिए गए थे, तब मेरे एक बहुत ही विद्वान वहां पर जो बुजुर्ग थे, उन्होंने हमें बोला था कि ऐसा बोला था, मैंने उसके ऊपर ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है, मैं वो डिस्क्लेमर लगाना चाहूंगा, लेकिन गुरुदेव दत्तात्रेय के पास जो चार यू नो डॉग्स है वो एक्चुअली वेद है, चार प्रकार के वेद है, ऐसे बोलते हैं। तो जब हमें उनसे जो सीख मिलती है, ऐसा हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग दशावतार में देखते हैं उसमें भी ह्यूमन एनिमल का जो समागम है वो आता है। तो जब हम पेट्स के साथ रहते हैं तो उसमें हमें पॉजिटिविटी, दूसरों को केयर कैसे करें, दूसरों को प्यार कैसे देना है, गुरु या जो हमारे भगवान है उनकी सेवा कैसे करना चाहिए, अनकंडीशनल लव कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, वो सब चीजें हमें सीखने को मिलती है। उनका कैसा सुनना है, इफ यू सी, हम जो रिकॉल बोलते हैं या वन मास्टर डॉग बोलते हैं, जो हम बोलेंगे वो करेगा। अगर वो ट्रेंड है, अगर उसको वो मैच्योरिटी आ गई है, तो वो हमारी बात सुन के वो करेगा जो हम उनको बोल रहे करने के लिए। ऐसी क्वालिटीज अगर हम अपने आप में लेके आए तो भगवान, गुरु और हमारे जो शास्त्रों में लिखा है वो हमें अर्जित करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो कनेक्शन, फ्रीक्वेंसी और कम्युनिकेशन एकदम एक्टिव और स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये पॉइंट्स गिनाए हमें। कितना स्पिरिचुअल है ये एक्सपीरियंस टू हैव अ पेट एंड टू यू नो रेज अ पेट इन योर हाउस। कितना कुछ आप सीख सकते हैं जिस तरह से आपने बताया, अनकंडीशनल लव, सरेंडर एंड दैट यू नो दैट वन मास्टर का अप्रोच, दैट लॉयल्टी, बहुत ही खूबसूरत सर। आगे चलते हैं, आज का मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर आपको आज बोला जाए कि आप सिम्बा के बिना अपना जीवन इमेजिन करें तो वो कैसा होगा? कभी इमेजिन करा है आपने?
1: मैं नहीं कर पाऊंगा शायद क्योंकि ऑलमोस्ट जीवन काल में मेजॉरिटी बिना पेट्स का रहा हूँ. मतलब घर पे एक्वेरियम हुआ कर है और हुआ करता था बचपन से, लेकिन ऐसा डॉग या कैट को की देखभाल करना वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ऐसा मैं फिलहाल तो इमेजिन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इन दी सिक्स इयर्स इतना कंडीशन हो गया हूँ सब घर पे भी कि सिम्बा की तरह करके दो दो मिनट में सब देखते हैं और वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके कैसे भी नींद में हो या सो रहा हो या रिलैक्स कर रहा हो या खाना खा रहा हो वो आके बताता है दिखाता है कि मैं इधर हूँ सब ठीक है करके ऐसा वो करता है. तो ऐसा शायद मैं नहीं सोच पाऊ लेकिन ऐसा होता है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि जिसका ये है तो उनका एक टाइम रहता है करके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो सीख मिलती है वो अभी कंटिन्यूटी में जाएगा और आगे क्या होगा पता नहीं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है और हमारे परिवार में तो ऐसा ही है कि हमारे पास एक पेट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा करके.
0: ब्यूटिफुल सर, ब्यूटिफुल. और इसको भी आपने कितना स्पिरिचुअली एक कॉनोटेशन दिया कि कंटिन्यूटी रहती है जो सीख वो दे जाते हैं. भले हर इंसान हर जीव की एक लाइफ स्पैन है बट जब वो जाते हैं तो उनकी जो सीख है उनकी जो यादें हैं उनके साथ बिताए हुए पल जो हमें सिखाते हैं वो एक कंटिन्यूटी में जाते हैं हमारे साथ इटर्निटी तक चलते हैं.
1: और वो देखते हैं तनुषा जी जैसे मेरे दोस्तों के पास जो डॉग्स थे उनका जब टाइम आया वो चले गए. सबका जब टाइम आता है वैसा होता है. वो एक रीत है या हम लोग जैसे शास्त्र में लिखते हैं जो जन्मा है उसका एक अंत आना एक ट्रूथ है वो एटर्नल ट्रूथ है करके बोलते हैं. लेकिन इनके जो गाइडिंग स्पिरिट है या एंजल है हम लोग बोलते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि अपने लोग अपना फैमिली कैसे है. और वो एनर्जीज है ना कभी कभार मैंने कई सारे दोस्तों के लाइफ में देखा है कि दूसरा एक पप्पी आएगा और सेम उसका कनेक्शन वो प्रीवियस वाले डॉग के साथ रहेगा और वो सेम पॉजिटिविटी वापस आएगा और उनके पास एक नया चैप्टर रहेगा. तो एक चैप्टर एक नाम पे रहेगा दूसरा चैप्टर दूसरे नाम पे रहेगा लेकिन एक कंटिन्यूटी है वही पॉजिटिविटी है और वही चलता जाएगा ऐसा है.
0: एब्सोल्युटली सर, so beautifully put and so beautifully concluded. again spirituality पे हम इस एपिसोड को कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेट मोटिव वही है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन वही है और पेट्स के साथ आपकी जर्नी भी बहुत स्पिरिचुअल होती है. मेरा मन से ये मानना है और आज इस थॉट को री इन्फोर्स किया है अंशुल जी ने अपनी खूबसूरत ख्यालों के साथ अपने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस के साथ. थैंक यू सो मच अंशुल सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके प्यारे से सिम्बा के बारे में इतनी प्यारी बातें साझा करने के लिए, इवन पेट केयर के बारे में एनिमल केयर के बारे में इतना कुछ हमारे साथ शेयर करने के लिए. मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर.
1: थैंक यू तनुषा जी.
0: अंशुल जी, सिम्बा की कहानी सुनकर एक बात बिल्कुल साफ होती है, चैंपियन होना सिर्फ ट्रॉफी जीतने का नाम नहीं बल्कि दिल जीतने का नाम है. शोरिंग के चैंपियन सिम्बा घर में बच्चों और सीनियर्स के फेवरेट और अपने परिवार के वो प्यारे मेंबर जिन्होंने लॉकडाउन के बिल्कुल पहले आकर जिंदगी को और खूबसूरत बना दिया. हम अंशुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सिम्बा के साथ जुड़ी इतनी प्यारी यादें हम सभी के साथ साझा की. थैंक यू सो मच अंशुल जी फॉर शेयरिंग अ पीस ऑफ योर हार्ट विद अस. मैं हूं आरजे तनुषा आपके तरानों की हम सफर और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग पेट्स के संग. सिम्बा के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारे कडल्स. फिर मिलेंगे एक नए पेट और एक नई कहानी के साथ. नमस्कार.
2: तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही. उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी. अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग एक नहीं दो है, ब्लैक एंड व्हाइट। सफेद रंग है कॉरपोरेट दुनिया का और काला रंग है क्राइम और जुर्म का, या ये भी कह सकते हैं एक एडवोकेट के काले कोट का। और मैं हमेशा की तरह आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम में मिल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड से लेकर कोर्टरूम तक हर मंच पर अपनी पहचान बनाई है। शी इज एन एडवोकेट, ट्रेनर एंड ए साइबर लॉ एक्सपर्ट। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एडवोकेट विशु माथुर, प्रैक्टिसिंग इन सेशंस एंड लोअर कोर्ट्स ऑफ जयपुर सिंस 2015। उन्होंने न सिर्फ क्रिमिनल और सिविल केसेस को हैंडल किया है, बल्कि साइबर फ्रॉड्स और डेटा प्रोटेक्शन जैसी मॉडर्न चैलेंजेस को मैं भी अपनी एक्सपर्टीज साबित की है। एमबीए से लेकर एलएलबी, साइबर लॉ डिप्लोमा तक उनकी एजुकेशनल जर्नी बताती है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो आज बात करेंगे उनकी इंस्पायरिंग जर्नी की, साइबर सेफ्टी और डेटा प्राइवेसी के कुछ बेहद जरूरी पहलुओं की, और जानेंगे कोर्ट रूम के बाहर भी किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन। साथ हैं एडवोकेट विशु माथुर। विशु जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो विशु जी, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। बचपन और शिक्षा के दिनों की कुछ यादें साझा करेंगी हमारे साथ, कुछ बताएंगी हमें इसके बारे में, अपने बारे में।
1: जरूर सर। सर, मेरे फादर रेलवे में थे, तो उनकी बदौलत मैंने बहुत सारे शहर देखे। बचपन में हम गुजरात में थे, फिर हम राजस्थान शिफ्ट हुए, राजस्थान के कई शहरों में रहे सर, और इसी तरह से मेरी पढ़ाई भी अलग अलग शहरों में हुई है। तो अगर आप मेरी 12th की बात करें, तो 12th मैंने अजमेर से कंप्लीट करी है, और फिर कॉलेज मैंने जयपुर से किया है।
0: आपने बीए भी किया, एमबीए भी किया और फिर एलएलबी भी कर लिया। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। किस मोड़ पर आपने तय किया कि आपको एडवोकेट ही बनना है?
1: सर, इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल है। एक्चुअली बच्चों को आजकल पता होता है कि वो 9th 10th में ही ये फिगर आउट कर लेते हैं कि उन्हें आगे चल के क्या करना है। बट सर, मैं थोड़ी सी अलग थी, मुझे ग्रेजुएशन तक ये पता ही नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। ग्रेजुएशन करना था क्योंकि वो जरूरी होता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में इंटरेस्ट था, तो यही मेरे सब्जेक्ट्स थे ग्रेजुएशन के। फिर उस टाइम मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी सर, और जेनपैक में रहते हुए मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, और एमबीए फिर मैंने आईआईएम कैलकटा से किया। जॉब करते करते ही अचानक एलएलबी लॉ में इंटरेस्ट जागा। उसका दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि मेरे ही मेरी फैमिली में ही कुछ लोगों ने जुडिशरी में अपना अपना जर्नी स्टार्ट की थी, और कुछ एडवोकेट बने थे, तो उनके देख करके मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई। ये दो रीजंस ऐसे थे जो मुझे लॉ की तरफ मोड़ते चले गए और मैंने लॉ में एडमिशन लिया।
0: तो इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब कर ली थी, ऐसा लग रहा है मुझे। आपने बताया आप जेनपैक पे काम करने लग गई, इज इट सो? और फिर आप इधर लॉ की तरफ आ गई कि कुछ आप जो आपके संबंधी या आपके जान पहचान वाले जुडिशरी के अंदर थे, उससे
1: जी सर,
0: इंस्पायर होकर आप लॉ पे आ गई। वेरी गुड। तो
1: जी सर,
0: आपकी प्रोफेशनल जर्नी 2015 में शुरू हुई। शुरुआती दिनों के कुछ अनुभव बताएं, जब आपने पहली बार लोअर कोर्ट में कदम रखा। हमें तो कोर्ट में घुसने में ही डर लगता है और आप रोजाना जाती हैं, कुछ बताइए।
1: हाँ सर, बहुत एक्साइटेड थी मैं कि एक्चुअली वो कोट पहनकर ही ऐसा फील हो रहा था कि हम कुछ बन गए हैं। बट सर, जैसे ही कोर्ट में एंटर हुए, तो मुझे लाइफ का सबसे बड़ा शॉक मिला, क्योंकि हमने मूवीज में जिस तरह से कोर्ट्स देखे हैं, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था।
0: बिल्कुल सही बात।
1: एक छोटा सा कमरा, उसमें करीब 50 लोग खड़े हुए हैं, जज साहब बैठे हैं, कोर्ट के और ऑफिसर्स हैं और काम हो रहा है, एक पंखे के नीचे इतने सारे लोग खड़े हैं और फाइलों का ढेर लगा हुआ है। तब मुझे ये लगा कि ये कोट पहन तो लिया है लेकिन अभी इसे कमाना बाकी है, तो ये 10 साल में शायद मैं इसे कमाने की ही कोशिश कर रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है विशु। हम भी जब कोर्ट जाते हैं तो कई बार तो वहाँ जो हालात होते हैं, सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ होता है, एक पंखा एसी भी नहीं होते कई कोर्ट्स में, तो आजकल मैंने देखा है जी, मुझे पता है बहुत टफ है। तो विशु आजकल जो ये हालात है इन पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाने गाने का आनंद लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: हाँ विशु जी, अब लगभग एक दशक से आप प्रैक्टिस कर रही हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में, कौन सा फील्ड आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, सिविल या क्रिमिनल?
1: सर चैलेंजिंग दोनों हैं और दोनों नहीं भी हैं,
0: जी
1: क्योंकि केस की समझ पर डिपेंड करता है कि वकील उस केस को किस तरह से मोड़ेगा। इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज है कि आपकी एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने बुक्स के जो प्रोविजंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है और उनको समझा भी है। दूसरा, आपने प्रैक्टिस किस तरीके से करी है, क्योंकि सर मैं समझती हूँ कि अगर आप केस को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में और आप अपने क्लाइंट को उनका डिजायर्ड रिजल्ट दिलाने में समर्थ हो जाते हैं, वो केस उतना ही आसान है। अदरवाइज सारे ही केसेस चैलेंजिंग हैं सर।
0: अच्छा, अब लेकिन मैं कई बार सोचा करता हूं कि भाई जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे सामने वाले का वकील भी तो तैयारी कर रहा होगा, तो किस तरह से एकेडमिक जो नॉलेज होती है दोनों की कहीं जाके क्लैश करती है, कहीं आपको सक्सेस दिलाती है? मैं ये सवाल वैसे ऑफ द कफ पूछ रहा हूँ। अच्छा
1: बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, लोग उन सेक्शंस को बेयर एक्ट्स में नहीं पढ़ते जो उनको लगता है जरूरी नहीं है कोर्ट में काम आने के लिए। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर डेफिनेशन भी दी हुई है हमारे किसी भी फॉर एग्जाम्पल आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में बदल चुका है, अगर उसमें किसी एक चीज की डेफिनेशन भी दी हुई है और वो डेफिनेशन आपने समझ ली, तो आपको आगे जाकर के संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में
0: ऑलराइट
1: डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी। वरना ये होता है कि आपने मुझे बताया ये ऑफेंस ये है, मैंने अपने जूनियर को बताया, उन्होंने अपने जूनियर को बताया और बुक किसी ने भी नहीं पढ़ी, तो जब सब एक ही धर्रे पे चले आ रहे हैं तो रिजल्ट भी एक ही निकलता है।
0: बहुत खूबसूरती से आपने बताया। चलिए बताइए, सेशन कोर्ट में काम करने के दौरान आपने कौन से केस या सिचुएशन से सबसे ज्यादा सीखा है, क्योंकि कई बार बड़ी ट्रिकी सिचुएशंस भी आती हैं केस के दौरान, तो आपको क्या लर्निंग मिली है उससे?
1: सर लर्निंग बहुत मिली है, क्योंकि मैं अब तक कॉरपोरेट में ही रही हूँ। कॉरपोरेट एक ग्लैमर वर्ल्ड होता है सर, क्योंकि मैं मैनेजर पोजीशन पे रही हूँ, मैंने बीपीओज में जॉब किया है, तो मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है और यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का जो इंसान होता है, जो अपने खेत में हल जोतता है, वो आया है और उनके समझाने का तरीका बहुत ही अलग होता है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो मैंने सबसे पहले ये सीखा है सर कि पेशेंटली सामने वाले की बातें सुनो, लिसनर आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, एडवाइजर आप बाद में बनो, पहले लिसनर बनो। जब वो आपको सारी बातें बता दें, फिर आपको डिटेक्टिव बनना है। डिटेक्टिव आपको ऐसे बनना है कि जो बीच की कड़ियां जो वो बताना भूल गया अपनी घबराहट में, या शायद उसने सोचा ये जरूरी नहीं है, वो आपको खोद खोद के निकालनी है। तीसरा, आपको एडवोकेट बनना है कि उस केस को किस तरीके से आप मोल्ड करेंगे कि वो हमारे फेवर में आ जाए। तो ये तीन चीजें सर मैं सीख रही हूं अभी भी, और हाँ ये बहुत जरूरी चीजें हैं अदर देन एकेडमिक और आपका जो भी प्रैक्टिस है इनके अलावा।
0: बहुत खूबसूरती से आपने बताया, लिस्टनर वाली बात बहुत बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि एक जो जूनियर वकील होते हैं वो उनको ज्यादा ध्यान से सुननी चाहिए कि जो कंप्लेंटेंट आ रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि तो बहुत सारी बातें तो उसी से समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सर
0: आप लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ड्राफ्ट करती हैं, तो क्या
1: जी
0: आप जनता को कुछ या हमारे लिसनर्स को कुछ बेसिक अवेयरनेस देना चाहेंगी कि नोटिस या एफिडेविट जैसी चीजें कैसे तैयार होती है, या क्या इन बातों के लिए ध्यान में रखना चाहिए एक आम आदमी को?
1: सर नोटिस और एफिडेविट्स हैं, इनमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है लीगल प्रोविजंस। जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं वो या तो पढ़ के आते हैं तो वो कुछ चीजें कैच कर लेते हैं, कुछ लोग जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं या नहीं जानते हैं वो नहीं कैच कर पाते हैं। मैंने ये देखा है कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसमें स्टैम्प पेपर 100 रुपए का लगना है, लेकिन सामने वाले से उन्होंने कहा कि 500 का लगा दो, कोई बात नहीं, वो पैसा वो इंसान अपनी जेब में नहीं ले रहा है, वो जा तो वहीं रहा है क्योंकि स्टैम्प खरीद रहे हैं वो, लेकिन सर 500 रुपए उस अगले जो भी पर्सन है उसके लग चुके हैं। अब वो हो सकता है वो कहीं से जोड़ करके लाया हो। तो पहली चीज तो ये है कि आप थोड़ी सी इस चीज की पूछताछ कर लें पहले किसी से कि कितने का स्टैम्प पेपर लगेगा। अगर 100 की जरूरत है तो 100 ही लगाइए, 500 की जरूरत नहीं है तो नहीं लगाइए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि जो भी कंटेंट जो भी उस चीज में लिखा जा रहा है, नोटिस है या एफिडेविट है, उसको बहुत अच्छे से समझें। अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी और से पढ़ के और समझें और फिर उसके बाद में नीचे सिग्नेचर करें। क्योंकि अगर आप किसी केस के रिलेशन में भी नोटिस भेज रहे हैं तो उस केस से रिलेटेड आपने उसमें क्या इंफॉर्मेशन डाली है वो बहुत जरूरी है। नोटिस एक पहला स्टेप है केस को स्टार्ट करने का। अगर आपने अपने उस नोटिस में ये क्लियर नहीं किया कि आपने किस लॉ के प्रोविजन के अंडर वो नोटिस भेजा है तो वो नोटिस बेकार है। तो जिस पर्सन के बिहाफ पे लॉयर या कोई और दूसरा पर्सन भी नोटिस भेज रहा है वो पर्सन उसको बहुत अच्छे से पढ़े और उसको ये समझने की कोशिश कर रहे कि इससे मेरा कुछ फायदा हो रहा है या इससे मेरा कोई नुकसान हो रहा है, और उसके बाद में ही उसके नीचे सिग्नेचर करे, क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है और बाद में वो उनके खिलाफ यूज भी हो सकता है।
0: बहुत बढ़िया बात बताई कि ये एक तरह का फाउंडेशन है या कॉर्नर स्टोन है जो केस आगे चलेगा। तो इसलिए नोटिस बड़ा केयरफुली ड्राफ्ट होना चाहिए और सही लीगल प्रोविजन के थ्रू ड्राफ्ट होना चाहिए। इज इट सो? मैं सही कह रहा हूँ?
1: बिल्कुल सर।
0: तो चलिए, इस सावधानी के लिए और कोर्ट रूम में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हम एक गाने का आनंद लेते हैं। कोई गाना अच्छा सा सुनते हैं।
1: जरूर सर। जाने वाले

0: विश्व जी, आप आते हैं एक खास अहम मुद्दे पर। आपने भारतीय विद्यापीठ लॉ कॉलेज पुणे से साइबर लॉ डिप्लोमा होल्डर हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में यह कितना जरूरी हो गया है, इस साइबर लॉ से संबंधित बातें?
1: सर, डिजिटल वर्ल्ड अभी हम इस चीज में इवॉल्व कर रहे हैं, अभी हम बहुत सारी चीजें अडेप्ट कर रहे हैं। लोगों के हाथ में मोबाइल खाने से ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है, मतलब शायद लोग दो दो टाइम का खाना नहीं जोड़ पाते होंगे, लेकिन मोबाइल उनके पास में जरूर है। और उसी तरीके से हमारी ज्यादातर चीजें वर्चुअल हो चुकी हैं। लोगों को फोटो खिंचवाना, फोटो अपलोड करना, रील्स बनाना, रील्स अपलोड करना और लोगों से अप्रिसिएशन पाना बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं सब चीजों से ही क्राइम्स होते हैं। हम एक बेसिक चीज लेकर चलते हैं कि हम अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी आजकल फोन से ही करते हैं, तो ये जो फोन से हम जो भी चीजें करते हैं, इनके तार लोग अपने कंप्यूटर से जोड़ लेते हैं। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ।
0: जी जी, बताइए प्लीज।
1: आप और बैंक के बीच में जो पैसों का लेन देन आपके फोन से हो रहा है, उसमें बीच में किसी ने एक चोरी का तार जोड़ करके और अपने कंप्यूटर से जोड़ लिया है, और आपको पता भी नहीं है कि जो पैसा आप बैंक में डाल रहे हैं वो पैसा उसके पास चला गया है। आपको ये लगेगा कि पैसा बैंक के पास चला गया, लेकिन बैंक के पास नहीं जाता है, वो आपको बाद में पता चलता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑफेंसेस अब होने लगे हैं, क्योंकि हम वर्चुअली बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, इसलिए साइबर लॉ की जरूरत अभी पड़ी है। अभी भी ये इवॉल्व हो रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कंप्लीट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये लॉ भी और बढ़ता रहेगा।
0: बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और बहुत ही कंसर्न भी है। आपने साइबर फ्रॉड जैसे बैंक फ्रीज और ई वॉलेट स्कैम्स के केस भी हैंडल किए होंगे, तो ऐसे मामलों में विक्टिम्स को तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए, क्या सलाह देंगी आप?
1: तुरंत तो सर, सबसे पहले तो आप अपने अगर ई वॉलेट से अगर कुछ हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको लॉग आउट करिए, या अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कुछ हुआ है तो उसको आप सबसे पहले स्टॉप करवाइए, फ्रीज करवाइए। जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सबका स्क्रीनशॉट्स लीजिए। और दूसरा, बैंक फ्रीज जैसे ही होता है तो बैंक आपको कुछ इंटीमेशन करता है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भेजता है ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू, तो आप बैंक से तुरंत मिलिए, उनसे आप जानकारी लीजिए कि कौन से ट्रांजैक्शन पे उन्होंने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर ये केसेस कस्टमर्स उनकी वो होते हैं जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, तो पैसा ए ने बी के पास भेजा, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा या ई को भेजा। अब इन सारे लेयर्स में से कौन सा वाला लेयर जो है वो डिफेक्टिव है, तो बैंक वो डिटेक्ट करके और सारे अकाउंट्स फ्रीज कर देता है। तो हम उस ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करके और अपना एक डिफेंस दे करके अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बैंक से कांटेक्ट करिए, अपने ई वॉलेट को लॉग आउट कर दीजिए, कोई भी लिंक है या कोई भी ओटीपी है ये सब आप मत क्लिक करिए। और दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, पहला है टोल फ्री नंबर जो साइबर क्राइम रजिस्टर करने के लिए जरूरी है, वो है 1930। 1930 है जो टोल फ्री नंबर है, आप अपना किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, ये है www.cybercrime.gov.in। ये एक रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पोर्टल है। तीसरा एक पोर्टल है, MHA की वेबसाइट है, तो इस पर भी कर सकते हैं। बाकी ये दो जो लिंक्स हैं, एक तो टोल फ्री नंबर और जो cybercrime.gov.in है, ये सबसे पहले रिएक्ट करते हैं।
0: अच्छा, तो ये बताइए, ये इस पे जब हम रजिस्टर करते हैं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं आती है? सरकारी डिपार्टमेंटों टाइप वो 10 सवाल पूछेंगे, ये करेंगे, मतलब
1: नहीं
0: सिंसियरली
1: नहीं सर,
0: हमारी कंप्लेंट लेते हैं वो लोग?
1: बिल्कुल लेते हैं सर। अब हर जगह पर साइबर सेल बन गए हैं, तो वो जो साइबर सेल हैं उनके पास जाती हैं ये इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो कंप्लेंट्स हैं, और आप डायरेक्ट भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट ले ले जा सकते हैं। आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलता है, वो कंप्लेंट नंबर आप ले जाइए, और वहां से भी आप अपना मतलब इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो आप करवा सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया। आपने डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी टेक्नोलॉजीज पर भी काम किया है। आम यूजर्स अपने डेटा को ऑनलाइन कैसे सिक्योर कर सकता है, कैसे सुरक्षित रख सकता है, बताएंगे इसके बारे में?
1: देखिए, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो एक प्रॉपर फायरवॉल होना चाहिए, एक वायरस प्रोटेक्शन एप्लीकेशन होनी चाहिए। डेटा आपका इनक्रिप्टेड है, वैसे तो गवर्नमेंट भी कर रही है, बाकी आप भी ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं। अपनी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्लाउड स्पेस और ऐसे कई स्पेसेस हैं उन पे आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, अगर मोबाइल फोन की आप बात करें तो आप ऐसी कोई भी अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशंस डाउनलोड ना करें, जो कि हो सकता है कि वो कोई मैलवेयर लेकर आए और आपका फोन हैक हो जाए कंप्लीटली। तो एक फाइल मैनेजर नाम से एक फोल्डर आता है, फाइल
0: जी
1: मैनेजर आप
0: हाँ,
1: डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप रेगुलरली चेक करें कि आपके फोन में कोई एपी के फाइल तो नहीं है। एपी के
0: ओके
1: फाइल्स
0: okay.
1: जो होती हैं वो जनरली वायरस होती हैं, तो वो जैसे ही फाइल मैनेजर में ये डिटेक्ट हो जाए वो फाइल आप डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए वो फाइल, और अननेसेसरी एप्लीकेशंस फोन में रखिए ही मत, वो ही अच्छा है।
0: अच्छा, ये थोड़ा सा एपी के फाइल के बारे में बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते रहते हैं, ये
1: जी
0: क्या क्या ये डॉट एपी के नाम से इनका एक्सटेंशन होता है या क्या होता है, कुछ बताएंगी?
1: सर, ये डॉट एपी के फाइल्स जो होते हैं

0: ये आपके फोन को हैक करने के लिए ही भेजे जाते हैं। अगर मैं रीसेंट एग्जांपल दूं, मेरे एक रिलेटिव का फोन हैक हो गया था, क्योंकि उनका ट्यूरिंग जॉब है और वो कई जगह पे अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनको पता नहीं चला और उनका फोन हैक हो गया। फोन से मेरे पास और हमारी फैमिली में कई लोगों के पास में व्हाट्सएप से मैसेज गया और उन्होंने कुछ फोटो हमें भेजी, उसमें नीचे लिखा हुआ था .apk। वो फोटो मुझे दिख नहीं रही थी, वो एक फाइल जैसी थी, PDF जैसी थी। तो अगर जैसे आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं और मैं आपको कुछ भेजूंगी, तो आप सोचेंगे अच्छा विशु ने कुछ भेजा है, मैं देखता हूँ।
1: जी, बिल्कुल
0: बट
1: सही।
0: यहाँ हमें थोड़ा अवेयर रहना है, अगर कोई जानकार भी हमें कुछ भेज रहा है तो हम उसको कॉल करके पूछ लें कि आपने हमें कुछ भेजा है क्या। अगर वो कहे नहीं मैंने आपको कुछ नहीं भेजा, तो वो फाइल आप डाउनलोड मत करिए। क्योंकि जब मेरी उनसे बात हुई बाद में, तो उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट से 15,000 निकल गए और कुछ लोगों ने वो डाउनलोड कर ली होगी फाइल, तो उनका फोन भी हैक हो गया। तो ये डॉट
1: ये
0: एपीके फाइल्स जो होती हैं, ये बहुत खतरनाक होती
1: बहुत
0: हैं।
1: बहुत रिस्की है और डेंजरस है ज्यादा। अच्छा, तो ये तो बहुत हो रहा है आजकल। लोग कुछ इमरजेंसी बता के और फोन करते हैं, भाई वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे को पैसे भेज दो। अभी मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, 30,000 रुपये उसने भेज दिए ऐसे गलत किसी को। लेकिन जैसे आपने अभी मुझे बताया कि ये वहाँ साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट करो 1930 पे, उन्होंने 1930 पे भी की, लेकिन फिर उनसे कहा गया भाई आप थाने में भी जाके, जो लोकल थाना है वहां जाके भी आप FIR लॉन्च कर दो अपनी। तो खैर वो गए, कर दी उन्होंने, लेकिन पुलिस वाले भी 30-40 हज़ार के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, मुझे ऐसा लग रहा है जो
0: हाँ
1: वहां
0: सर,
1: थाने में हालात देखे मैंने।
0: एक्चुअली सर अभी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज आए नहीं है साइबर के, क्योंकि अभी ये कोडिफाई नहीं हुआ है प्रॉपरली। तो जैसे ही इसमें प्रोविजंस प्रॉपर आ जाएंगे, जैसे हमारा भारतीय न्याय संहिता कोडिफाइड है कि इस अपराध का ये पनिशमेंट है, इस अपराध का ये पनिशमेंट है, ऐसा कोई बुक हमारे पास है नहीं। जैसे ही वो हो जाएगा, तो ये सब चीजें भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी।
1: अच्छा, अब आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तरफ, कि सुरक्षा भी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया हो या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हो, इस बारे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि कई लोग मैंने देखा है, फिल्म स्टार्स वगैरह भी बहुत कहते हैं कि हमारा ये ब्रांड है, इसकी हम सुरक्षा करेंगे, ये करेंगे, ऐसी अखबारों में न्यूज़ आती रहती है। इसके बारे में कुछ बताएंगी, थोड़ा बहुत हमें समझाएंगी?
0: जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सर बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है अब। पहले ये ट्रेडमार्क और इन सब चीजों पर ही रहता था, पेटेंट पेटेंट ट्रेडमार्क इन सब पर ही रेस्ट्रिक्टेड था। लेकिन अब ये आइडेंटिटी, वॉइस क्वालिटी, किसी का एक तरीके का फैशन स्टाइल है, किसी के एक तरीके का बोलने का स्टाइल है, क्योंकि हम लोग वीडियोस और फोटोग्राफ्स के वर्ल्ड में इतना ज्यादा खो चुके हैं। हर कोई आजकल किसी ना किसी को मिमिक कर रहा है, सिर्फ कुछ व्यूज लेने के लिए, कुछ लाइक्स लेने के लिए, और उसके लिए वो भद्दे से भद्दा कंटेंट भी बना देते हैं। तो अगर मैं किसी बहुत नामी सेलिब्रिटी का यू को की आवाज को यूज कर रही हूँ, या उनके किसी पॉपुलर डायलॉग को यूज कर रही हूँ, या फिर मैं उन्हें उनकी तरह ही ड्रेसअप होकर के और कोई भद्दी चीज दिखा रही हूँ, तो ये डायरेक्ट उनकी पर्सनालिटी को हिट करता है। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बस उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक तो डिग्रेड कंटेंट ना बनाएं, दूसरा किसी भी कॉन्स्पिरसी के चीजों को लेकर के ना बनाएं। कई लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ एक छोटे से ऑडियंस को टारगेट करना है और हमें व्यूज मिल जाएंगे, बट वो बाद में जाके उनके जो रेपरकशंस होते हैं वो उनको झेलने पड़ते हैं। तो हाँ, सिंपल चीजें क्रिएट करें, वल्गर ना हो, अब्यूजिव ना हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफिक चीजें हैं, तो उससे रिलेटेड भी ऐसा कुछ ना वो क्रिएट करें कि वो आईपी में फंस जाए।
1: अभी शायद थोड़े दिन पहले अमिताभ बच्चन भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गए थे, उनका भी
0: जी
1: कोई ऐसा मुद्दा था।
0: उन्होंने अपनी आवाज को वो
1: आवाज
0: करवाया
1: को,
0: है, प्रोटेक्ट
1: आवाज को करा,
0: कर दिया
1: प्रोटेक्ट कराया उन्होंने।
0: जी।
1: हाँ, तो ये जितने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, इन सबको इस बारे में भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आवाज को किसी डिस्टॉर्टेड पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर ले कोई कॉपी करके उसको। ऑब्वियसली, तो आवाज की इस दुनिया की याद करते हुए हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक अच्छे से गाने की
0: जी
1: आवाज
0: सर,
1: सुनते हैं।

0: अच्छा विशु जी, आप 65B सर्टिफिकेट्स और ISO सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करती है। हमारे श्रोताओं को कुछ साधारण से शब्दों में बताइए कि 65B सर्टिफिकेट होता क्या है और क्यों जरूरी है।
1: 65B सर्टिफिकेट, अगर हम देखें कि कई बार डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में कंप्यूटर के थ्रू ही आते हैं,
0: अच्छा
1: या उस पे कुछ सील लगी हुई है या सील हमें लगानी है, वो डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में हमारे पास नहीं आते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट हैं, मतलब वो सही हैं। उसके लिए जो अप्रूवल है वो हमें एक सर्टिफाइंग ऑथोरिटी देती है। जो सर्टिफाइंग ऑथोरिटी होती है वो ये कहती है कि ये जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेट है, मतलब लीगल है। तो वो जो ऑथेंटिकेशन होता है उसी को 65B सर्टिफिकेट कहा जाता है।
0: ओके
1: इतना ज्यादा, जैसे आप देखेंगे पहले फैक्स था, पहले फैक्स बहुत ज्यादा चलता था, तो फैक्स से
0: बहुत
1: हम
0: चलता था।
1: जी डॉक्यूमेंट्स यहां से वहां पहुंच जाते थे और सिग्नेचर किया और आपने पहुंचा दिए डॉक्यूमेंट्स वहां पे। उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है डिजिटल डॉक्यूमेंट। डिजिटल डॉक्यूमेंट को लीगल करने के लिए 65B सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसको ऑथेंटिकेट बताने के लिए कि ये सही है।
0: तो विश्व जी मुझे ये बताइए, 65B सर्टिफिकेट इशू कौन करता है, कौन अथॉरिटी कौन है
1: ये
0: उसकी।
1: सर्टिफाइंग ऑथोरिटी होती है सर। सर्टिफाइंग ऑथोरिटी उसके पास ये ऑथोरिटी होती है कि वो ये 65B सर्टिफिकेट्स ले ले। राइट्स मिलते हैं उन्हें, और जैसे ही उनको अप्रूवल मिलता है गवर्नमेंट से, फिर वो ये सर्टिफिकेट्स देने के लिए ऑथोराइज्ड हो जाते हैं।
0: ओके, कुछ एग्जांपल देंगे आप मेरे को। मैं क्योंकि हमारे जमाने तो आप सही कह रही है फैक्स चला करता था, लेकिन ये
1: जी
0: 65B सर्टिफिकेट की जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो कौन है, कोई प्राइवेट संस्था है या कोई सरकारी संस्था है।
1: हाँ, वो नहीं कोई भी ले सकता है, थर्ड पार्टी होती है सर ये।
0: जी अच्छा,
1: जैसे कुछ एडवोकेट्स भी होते हैं जो अथॉरिटी ले लेते हैं, राइट्स ले लेते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। ज्यादातर 65B सर्टिफिकेट और ISO सर्टिफिकेट IT टीम जो होती हैं, जिनके IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो होते हैं, वो लोग देते हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी जानकारी भी होती है। तो एक प्रॉपर टीम होती है जिसमें IT बैकग्राउंड के लोग होते हैं और एडवोकेट्स होते हैं, वो मिलकर के एक टीम बनाते हैं, और वो लोग फिर 65B और ISO सर्टिफिकेट अप्रूव करवाते हैं।
0: ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है, आपने 65B के बारे में नई बात बताई। अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं विशु जी, हम इस लीगल उससे बाहर निकल के,
1: जी
0: आप जम्बूरी एजुकेशन में आइल्स और टॉफेल फैकल्टी भी रही हैं, लॉ
1: जी
0: से एजुकेशन तक ये ट्रांजिशन कैसे हुआ।
1: सर, सडनली ही हुआ, बिल्कुल प्लान नहीं था ये। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। वैसे मैं वॉक इन फैकल्टी हूँ, तो कभी किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में अगर जरूरत होती है तो एक दो सेशंस मेरे होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सर, तो मैंने ये ग्रैब करी। मतलब कोई प्लान नहीं था, एक अपॉर्चुनिटी आई और मुझे मिल गई।
0: तो आइल्स में तो क्या शायद अंग्रेजी पढ़ानी होती है, क्या करना पड़ता है।
1: जी सर, आयल्स और टोफल दोनों ही एग्जाम्स हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं सर ये।
0: अच्छा
1: जिनको भी बाहर इंटरनेशनली किसी कंट्री में जाना है एजुकेशन के लिए या फिर माइग्रेशन के लिए, वहां रहने के लिए, तो उनको वीजा लेने के लिए ये दोनों एग्जाम्स देने होते हैं। दोनों में से एक आप कोई सा भी दे सकते हैं।
0: अच्छा
1: तो बेसिकली ये आपके स्किल्स चेक करते हैं। रीडिंग से रिलेटेड स्किल्स होते हैं, लिसनिंग से रिलेटेड स्किल्स होते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग। आप इन चारों स्किल्स में कौन से लेवल पर हैं, और उस लेवल के हिसाब से क्या आप उस कंट्री में पढ़ने के या जॉब करने के लायक हैं, उसके हिसाब से वो आपको स्कोर्स देते हैं और फिर वीजा आपको मिलता है।
0: वेरी गुड। तो विश्व जी, आपने कई स्टूडेंट्स को टॉप स्कोर्स दिलाए हैं, टीचिंग ने आपके कम्युनिकेशन या कोर्ट रूम स्किल्स में कोई मदद की है। कि आप
1: बहुत
0: कोर्ट रूम में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर पाती हैं, इसके
1: बहुत
0: बारे
1: बहुत
0: में?
1: सर, सबसे
0: अच्छा,
1: ज्यादा तो स्टेज फ्राइट मेरी बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि जैसे ही हमें ये फील होता है ना कि कुछ आंखें हमें देख रही हैं, वही जबान लड़खड़ा जाती है. तो ये
0: जी
1: चीज मेरी क्लासरूम में खत्म हो गई, क्योंकि मेरी क्लास में 35 से 40 स्टूडेंट्स होते थे, और
0: ओके,
1: हर एज ग्रुप के होते थे, मतलब स्कूल, कॉलेज गोइंग, कुछ होम वर्किंग, मतलब जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, कभी कभी 50 साल के लोग होते थे, कभी 15 साल के लोग होते थे. तो इन सब के साथ में मैंने ये चीज तो खत्म कर दी कि मुझे स्टेज फ्राइट अब नहीं है. अगर मेरे पास अच्छी इंफॉर्मेशन है या मैं जानती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, तो मैं कोर्ट में जज साहब के साथ सामने भी प्रॉपरली अपनी बात को रख पाती हूँ, क्लियरली रख पाती हूँ. तो ये मुझे बहुत हेल्प मिली है.
0: अच्छा, मैं भाई जी वैसे ही पूछ रहा हूँ कि कोर्ट में ज्यादातर आप को हिंदी ही बोलनी पड़ती है लोअर कोर्ट्स में, या थोड़ा बहुत अंग्रेजी बीच में चल जाती है वहाँ?
1: नहीं सर, लोअर कोर्ट्स में हिंदी ही चलती है अभी हमारे यहाँ, और हाई कोर्ट में इंग्लिश कंपलसरी है, तो इंग्लिश में बोलना जरूरी होता है वहां
0: अच्छा, हाई कोर्ट में जितने ये सीनियर एडवोकेट्स हैं सब इंग्लिश के अंदर ही दलीलें देते हैं या प्लीट करते हैं? अच्छा, इज इट सो?
1: पे.
0: अच्छा,
1: जी.
0: चलिए, तो इस भाषा की बात पे हम रुक जाते हैं और एक गाना सुन लेते हैं।

0: जी, आपने कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी काम किया है, बॉश, जेटपैक, जियो फोर, कस्टमर जैसी कंपनियों में। उस अनुभव ने आपको आज की प्रोफेशनल लाइफ में कैसे मदद की है?
1: बहुत सारी चीजें हैं सर, जैसे मेंटेन द डेकोरम। सबसे पहले आप जहाँ हैं वहां का डेकोरम मेंटेन करना। मैंने वहां पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फिर एक अलग ही तरह की ऑडियंस से टैकल किया है, तो हर तरह के इंसान से अपने आप को बात करने के लिए मोल्ड कर लेना, अपने आप को अपडेटेड रखना कि अब आगे क्या है, आगे कैसे करना है या अगला स्टेप क्या होगा। दूसरा सर, डेटा सेविंग। हमने
0: अच्छा,
1: हमने बीपीओ सेक्टर में और अपने ट्रेनिंग जॉब में इतना रिपोर्ट्स बनाई हैं, डेली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, तो वो सर एक डेटा सेविंग की आदत मुझे बहुत लग गई है। हर चीज मैं लिख लेती हूँ अभी भी फोन में या और कहीं, रिकॉर्ड नहीं करती, बट मेरे पास एक नोटपैड रहता है, मैं उसमें हर चीज नोट डाउन करती हूँ।
0: वाह, ये बात जोरदार बताई आपने कि आप हर चीज का रिकॉर्ड रखती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इमेज फॉर्म में हो, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आपको कब किस चीज की कब जरूरत पड़ जाएगी ये बिल्कुल पता नहीं होता। और ये इवन फ्रॉड्स में एक आम आदमी के लिए भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किस वक्त कहाँ था, ये सब भी उसको पता होना चाहिए। बहुत सही
1: जी
0: बात। अच्छा विशु जी, ये साइबर फ्रॉड्स भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, रेडियो के जरिए आप हमारे लिस्टनर्स को क्या तीन क्विक टिप्स देना चाहेंगी ताकि वे डिजिटल फ्रॉड से बच सकें, ऐसा कुछ बता सकती हैं आप?
1: जी सर, सबसे पहला स्टेप जो चीज है, सबसे पहला टिप जो है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है।

0: कि आप अपनी प्रेजेंस वर्चुअली कम कर दें जितना, क्योंकि आप एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं. आज जितनी फोटोज खींचते हैं, अपलोड करते हैं, हो सकता है आपने फोन से डिलीट कर दी हो, बट वो डिजिटल वर्ल्ड में चली जाती है और वो इजीली रिट्रीवेबल है, चाहे आपके पास कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपके पास कोई सा भी फोन हो. दूसरा है कि हर फोटो या हर लिंक या हर मैसेज को ओपन करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत क्लोज किसी ने भी आपसे हेल्प मांगी है, तो अब आप ना शर्माएं उनसे डबल चेक करने में कि आपने क्या वाकई में मुझसे ये हेल्प मांगी है. फोन कर लें या पॉसिबल हो तो मिल लें. क्योंकि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि वीडियो कॉल को भी मॉर्फ करके पैसे एक्सटॉर्ट किए गए हैं. जैसे किसी ने अपने फादर को वीडियो कॉल किया कि पापा मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है. अब उनको अपना बेटा फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है और वो कह रहा है उसे 30,000 रुपए की जरूरत है. उन्होंने तुरंत उसके फोन पर 30,000 रुपए ट्रांजैक्ट कर दिए. फिर उन्होंने सोचा कि मैं पूछूं तो सही कि हुआ क्या है, क्या पता उसे कुछ और हेल्प की भी जरूरत हो. तो उन्होंने कॉल किया. जब उन्होंने कॉल किया तब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने उनको कॉल ही नहीं किया था, बल्कि वो एक साइबर फ्रॉड था और उसके फेस को मॉर्फ करके वो वीडियो कॉल बनाया गया था और उनसे 30,000 रुपए इस तरीके से एक्सट्रॉट किए गए. तो हर चीज जो दिख रही है वो सोना नहीं है, तो आप डबल चेक करें.
1: और कोई खास बात बताइए, बताने जा रही है तो बताइए.
0: हाँ, दूसरा सर साइबर फ्रॉड में यही है कि अपनी डेटा, अपनी जो बहुत ज्यादा प्राइवेट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, वो अपने फोन्स में भी सेव मत रखिए. या फिर फोन में आप सेव रख रहे हैं तो आप एक, जैसे मैं एक नोटपैड बना के रखती हूँ, वैसे आप एक नोटपैड भी बना के रखिए. क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये बहुत ईजिली रिट्रीवेबल है, कोई भी आपके फोन को हैक कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आजकल फोन नंबर भी याद नहीं रखते हैं, क्योंकि पहले तो सबके फोन नंबर याद रहते थे, अब नहीं रखते हैं. तो ये सब चीजें अपने फोन में आप कोई भी फोल्डर बना के सेव मत रखिए.
1: सही बात है, पासवर्ड भी सारे हमारे मोबाइल में ही होते हैं, हमें याद भी नहीं रहते हैं, वो भी सब गड़बड़ रहती है. डेटा प्राइवेसी या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते समय लोग किन चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, ये बताइए.
0: सर, जैसा मैंने मेंशन किया कि जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी देती है. जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, उनके सील और सिग्नेचर होते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, वो देख लें कि क्या ये लीगल डॉक्यूमेंट है. उसके बाद में ही उस पर अपने सिग्नेचर रखें और सोर्स एक बार पता कर लें कि ये कहाँ से आया है. उसके बाद में ही अपने सिग्नेचर उस पर प्लेस करें.
1: वेरी गुड. अच्छा, अब जो युवा वकील या लॉ स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो इस एरिया में, इस फील्ड में नए कदम रख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आपके तो काफी एक्सपीरियंस हो गया, आप 2015 से प्रैक्टिस कर रही हैं.
0: सर, मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगी, दिस इज नॉट अ फन जॉब, दिस इज अ सीरियस एंड वेरी स्ट्रिक्ट जॉब. क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहन के खुशी मिलती है और वो दो पल की होती है, बाद में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. क्योंकि इट्स अ मार्केट, आप जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे और जितनी आपकी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि जैसे मैंने कुछ पहले भी कहा कि आपकी एकेडमिक्स नॉलेज कितनी स्ट्रांग है और आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उन पर डिपेंड करता है. तो ये तीन चीजें हैं सर, एकेडमिक नॉलेज, आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी मार्केटिंग, आप कितना लोगों से मिलते हैं.
1: मेरे ख्याल में जो लास्ट पॉइंट आपने बोला है आजकल, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है. हालांकि लंबा डिस्कशन है, लंबा डिस्कशन है. विशु जी, अब करीब करीब हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं. आपने कॉर्पोरेट से लेकर कोर्ट रूम तक का बहुत लंबा सफर तय किया, इस जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको क्या नजर आता है?
0: सर, टर्निंग पॉइंट का सर मैं अभी ऑनेस्टली वेट कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीजें सडन हुई हैं. एफर्ट्स मैं किसी और डायरेक्शन में डाल रही थी, लेकिन कुछ और हो गया. तो अभी तो मैं यही कहूंगी कि ये सब शायद ऊपर वाले की इच्छा थी. टर्निंग पॉइंट का मैं वेट कर रही हूँ सर, जैसे ही वो आएगा तो मैं जरूर शेयर
1: आप
0: करूंगी।
1: इसको बिल्कुल ये बता दीजिएगा। मैं आप अभी तो जो कुछ चल रहा है डेस्टाइंड है डेस्टिनी है वैसा चलता है। अच्छा, लॉ प्रैक्टिस के अलावा कौन सी चीजें आपको रिलैक्स करती हैं? विशु को क्या शौक है? कोई किताबें, म्यूजिक या और कोई चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती हो?
0: हाँ सर, मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, अलग अलग डिशेस ट्राई करना पसंद है मुझे, डांसिंग पसंद है, म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली हॉलीवुड म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ, या फिर कुछ गजलें हैं और कुछ पुराना 80s 90s का म्यूजिक है बॉलीवुड का, वो अच्छा लगता है। और पढ़ने में मुझे फिक्शन पसंद है, तो फिक्शन स्टोरीज, थ्रिलर स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है।
1: अरे वाह वाह वाह, कोई चलिए अब हम ऐसे ही बात करते हैं। आपको कोई गजल कोई खास ऐसी पसंद हो तो कोई बताइए, कौन सी आपको खास पसंद है?
0: सर आपने पूछा और मैं भूल गई।
1: नहीं भाई, तलत महमूद पसंद है, जगजीत सिंह पसंद है, अनूप जलोटा साहब पसंद है, और कौन पसंद है आपको? जगजीत
0: नहीं,
1: सिंह की कोई
0: ऐसे
1: गजल
0: पर्टिकुलर
1: पसंद है?
0: सिंगर्स नहीं, बट
1: जी
0: जैसे ही वो मुझे लिरिक्स और उनका वो म्यूजिक वो अच्छे लगते हैं तो बस वो मैं सेव कर लेती हूँ।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, एक फीमेल सिंगर है जो कुछ दिन पहले मैं मम्मी को भी सुना रही थी, बट अब वो
1: कौन?
0: एकदम से उसके वर्ड्स निकल गए मेरे दिमाग से, मैं आपको शेयर
1: मम्मी को?
0: करूंगी।
1: कहीं मम्मी को फरीदा खानम तो नहीं सुना रही थी आप?
0: हो सकता है सर, मैं
1: आज जाने की
0: शेयर।
1: जिद। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, कोई किताब बता दीजिए, आपको कौन सी किताब पसंद है?
0: हाँ,
1: नॉवेल्स आप फिक्शन बहुत पढ़ती हैं।
0: एक तो सर चेजिंग टुमारो सिडनी शेल्डन की है वो एक। हाँ, एक वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो जो उसमें कैरेक्टर्स हैं दोनों मेल और फीमेल, वो दोनों ही कौन होते हैं, तो
1: अच्छा,
0: जी वो मतलब वो ठगते हैं, ठगी करते हैं वो लोगों को, और वो किस तरीके से एक ज्वेलरी का हीस्ट पुल अप करते हैं वो बहुत ही पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है वो।
1: गुड
0: और
1: गुड गुड गुड।
0: जी, बाकी मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ सर, इंग्लिश लिटरेचर रहा है मेरे पास में 11th 12th और ग्रेजुएशन में भी, तो लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है।
1: अरे भाई, ये पहले बताया होता अपन इंग्लिश लिटरेचर में भी बात करते, क्योंकि सिडनी शेल्डन मैंने भी काफी पढ़ा है। और ये जो आप कॉर्न वाली तो उनकी बहुत सारी हैं। जेम्स हेडली चेज भी एक ऐसी लिखा करता था, और सिडनी शेल्डन तो ऐसी बहुत सारी हैं। सिडनी शेल्डन की मैं भी
0: जी
1: पहले बहुत पढ़ा करता था किसी जमाने में, जब से मोबाइल और टीवी आ गए हैं सब बंद हो गया।
0: जी ये सब बंद हो गया
1: जिससे जेम्स हेडली चेज मैंने बहुत पढ़ी है, सारी सीरीज पढ़ रखी है। चलिए खैर, अगर इसके लिए तो फिर किसी कभी प्रोग्राम करना पड़ेगा किताबों के लिए।
0: जरूर।
1: चलिए, तो अंत में अगर आपको एक लाइन में अपनी पहचान बतानी हो तो आप क्या कहेंगी कि विशु ये है?
0: सर मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपको सुनता हो तो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी भी मैटर में, जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनमें मैं आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ, और दोस्त तो मैं कैसी हूँ मुझे नहीं पता। बाकी
1: वंडरफुल।
0: मैं एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन सकती हूँ।
1: चलिए, बहुत मजा आ गया आपकी ये आखिरी बात सुन के। वन स्टॉप सॉल्यूशन, लोग बाग तो प्रॉब्लम गिवर होते हैं और आप सॉल्यूशन हैं, इससे आप समाधान हैं, समस्या नहीं है, अगर इसको इस
0: जी
1: तरह से कहें तो। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए, हम हमारे श्रोताओं से कहेंगे भाई, आपको कोई दिक्कत हो तो आप विशु माथुर से बिल्कुल संपर्क कीजिए। और ये क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन है बहुत सारी चीजों, सही है, आप साइबर ये वो लीगल कॉरपोरेट सब, और अंग्रेजी बोलना और वो भी सिखा देती हैं, आप सब चीजें सिखा देती हैं। वेरी गुड, बहुत मजा आया। तो विशु जी, बस हम आखिरी पायदान पे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत एडवोकेट विशु माथुर के साथ, एक ऐसी वकील जो कानून की समझ को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे लोगों की जिंदगी से जोड़ती है, उन्हें डिजिटली और लीगली एम्पावर्ड बनाती है। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि चाहे कॉरपोरेट ऑफिस हो या कोर्ट रूम, प्रोफेशनलिज्म, एम्पैथी और निरंतर सीखने की चाह हमें आगे बढ़ाती है। धन्यवाद विशु जी, आज हमारे श्रोताओं से जुड़ने और इतने सरल शब्दों में इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझाने के लिए।
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए।
1: और दोस्तों, अगर आपको आज की बातचीत पसंद आई हो तो जरूर शेयर कीजिए, जागरूक रहिए और साइबर स्पेस में सावधान रहिए। मैं हूं आलोक कुमार, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे जल्दी एक और प्रेरक बातचीत के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग एंड कीप लिसनिंग टू दिस रेडियो। थैंक यू।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है। मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने अपने लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है

0: फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
1: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूं कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
0: सर अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे है।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

नहीं देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने तक तेरे लिए बचता रहेगा। कोई गा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जाए।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है।
2: सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।